मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 16वीं तिथि तदनुसार 6 मई सन 2026। सुबह के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

0: नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

मधुर सुरों में जब कान्हा मुरली बजाते हैं तो केवल वृंदावन ही नहीं भक्तों का मन भी झूम उठता है। उनकी बंसी की तान में ऐसा जादू है जो दुखों को भुलाकर प्रेम और भक्ति से हृदय भर देती है। राधा की श्याम, ग्वालों के प्यारे माखन चोर नंद लाला, जिनके नाम मात्र से मन पावन हो जाए। आइए सुनते हैं श्याम प्रेम में डूबा ये सुंदर भजन।

जब मन भक्ति रस में डूब जाता है तो फिर संसार की कोई चाह नहीं रहती, बस एक ही अभिलाषा रहती है, अपने प्रभु के दर्शन की। विरह में भी प्रेम होता है और प्रतीक्षा में भी भक्ति। ठीक वैसे ही जैसे मीरा की आंखें हर पल अपने गिरधर के दर्शन को तरसती थी, तो आइए उसी प्रेम, उसी तड़प और उसी अटूट श्रद्धा के साथ सुनते हैं ये भावपूर्ण भजन।

0: श्रोताओं, अभी आप भक्ति रचनाएं सुन रहे थे जिन्हें स्वर दिए थे साधना सरगम, सुरेश वाडेकर, MS सुब्बुलक्ष्मी और साथियों ने। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सादगी के विषय पर चिंतन।
1: विश्व में जितने महापुरुष, संत, महात्मा, सुधारक और युग निर्माता हुए हैं, उनका जीवन सादगी प्रधान रहा है। सादा जीवन और उच्च आदर्श सभ्य समाज के जीवन सूत्र समझे जाते हैं। सादगी से प्रायः तात्पर्य ऊपरी वेशभूषा और रहनी सहनी से होता है, परंतु ये ऊपरी स्वरूप तो आंतरिक सादगी के बिना संभव ही नहीं है। यदि भीतर और बाहर जीवन में सादगी नहीं है तो वो मिथ्याचार कहलाता है। सुख और संतोष प्राणी मात्र का लक्ष्य होता है, सादगी साधन है। हमारे युग में ही लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, न्यायमूर्ति रानाडे, महर्षि अरविंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि महान विभूतियाँ सरलता और सादगी के आधार थे। सच पूछिए तो सादगी और महानता पर्यायवाची शब्द हैं। महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना है। तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के अमेरिका स्थित राजदूत लॉर्ड लोथियन महात्मा गांधी से मिलने वर्धा आश्रम में पधारे। गांधी जी से भेंट के उपरांत पत्रकारों ने लॉर्ड लोथियन से उनके विचार गांधी जी के विषय में पूछे। उनका उत्तर था, महात्मा गांधी ने सादगी को गौरव प्रदान किया और गरीबी को सौंदर्य। प्रातः स्मरणीय अवतार और विभूतियां ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य आदि मनसा वाचा कर्मणा सरल थे और सरलता का उन्होंने विश्व को मंत्र दिया। प्रभु ईसा मसीह के वाक्य सदैव प्रेरणा के सूत्र रहे हैं। बच्चों को मेरे पास आने दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हृदय वालों के लिए प्रभु के साम्राज्य में स्थान है। सादगी से समाज में आदर सम्मान तो मिलता ही है, साथ ही सुख शांति और प्रभु प्राप्ति का भी ये अचूक साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार, सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूति, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूति। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने तो सादगी को ही सज्जनता कहे है। जानो सज्जन की यही एकमात्र पहचान, इनके होते तीन हैं मन वच कर्म समान। गुप्त जी की परिभाषा में तो सज्जनता का अर्थ ही है सादगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के द्वारा शबरी को दिए नवधा भक्ति संदेश में सरलता को उच्च श्रेणी की भक्ति बताया है। नवम सरल सबते छल हीना। भक्त भगवान को सरलता से ही प्राप्त करता है। यही नहीं, दुनिया भी सरलता से ही मिलती है, छल कपट से नहीं। छल कपट से प्राप्त दुनिया टिकाऊ नहीं रह सकती। अंत में विजय सत्य की ही होती है। प्रायः देखा जाता है कि वर्तमान भौतिकवादी युग में इंसान सरलता को छोड़ पेचीदा होता जा रहा है। परिणाम में सुख और संतोष दूर होते जा रहे हैं। कृत्रिम जीवन में मिल ही क्या सकता है सिवाय दुख, दर्द, क्लेश और चिंताओं के। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार जीवन में सुख और शांति संतोष की नाव द्वारा ही मिल सकती है। जीवन रूपी नाव को चलाने के लिए संतोष रूपी जल की आवश्यकता है।
0: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सादगी विषय पर चिंतन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:45 पर कार्यक्रम खेती की बातें में आप सुनेंगे डॉक्टर RP अग्रवाल की वार्ता जायद में खेती, खीरे की खेती विषय पर। प्रातः 7:10

पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनेगा एलर्जी कारण और बचाव विषय पर डॉक्टर अशोक गर्ग की वार्ता। प्रातः 7:31 पर सुना जा सकेगा स्थानीय गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम आसपास। लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर सुनेगा सरला शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर सुना जा सकेगा जगन्नाथ और साथियों का राग चंद्र प्रभा में शहनाई वादन। 11:00 कार्यक्रम आज के कलाकार में आज के कलाकार रहेंगी फिल्म अभिनेत्री अरुणा ईरानी। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर आज का विषय रहेगा जल है तो कल है। दोपहर 12:00 प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दोपहर 1:15 पर हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा नर्सिंग सिर्फ पेशा नहीं एक सेवा भावना। मेरी माटी मेरा देश सेगमेंट में आप सुनेंगे छत्रपति साहू जी महाराज के विषय में। इसके साथ सुनेगा डॉक्टर निशीद गौड़ से कहानी पुरस्कार। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर आप सुनेंगे पंकज उदास की गाई चंद गजलें। दोपहर 2:30 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा पंडित जगदीश प्रसाद का राग खमाज और पहाड़ी में गायन। श्रोताओ, हमारी सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होगी शाम 5:00, जिसमें 5:30 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज वार्ता का विषय रहेगा पुस्तकों से दोस्ती है आवश्यक और वार्ताकार रहेंगी चारू अग्रवाल। ग्राम्य लोक कार्यक्रम में शाम 6:00 आप सुन सकेंगे किसान उदय योजना विषय पर भेंट वार्ता, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की उपयोगिता। इस विषय पर सुनिएगा डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार करहाना से अनेंद्र सिंह की बातचीत। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 पर चर्चा का विषय रहेगा मोतीलाल नेहरू का प्रेरक व्यक्तित्व, और इसी के साथ आप सुन सकेंगे नीलम वैश्य से कहानी, जिसका शीर्षक रहेगा बाई जी। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर सुनिएगा वार्ता बच्चों के विकास के लिए जरूरी है सहज व्यवहार, और वार्ताकार रहेंगी अपूर्वा शर्मा। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस का आज का संगीतबद्ध प्रसंग। गायक कलाकार हैं शोभा जोशी और संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत, असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मां अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थी शोभा जोशी और संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए सुनते हैं जायद में खीरे की खेती विषय पर डॉक्टर आरपी अग्रवाल की वार्ता।
1: प्रिय किसान भाइयों, बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही जायद की सब्जियों को उगाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इस ऋतु में उन सब्जियों की बुवाई करते हैं जो प्राय बेल वाली होती हैं। इसमें मुख्य रूप से लौकी, तोरई, कद्दू, करेला व खीरा प्रमुख हैं। खीरा मुख्य रूप से सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। खीरा विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम व फॉस्फोरस जैसे लवणों का अच्छा स्रोत है, अतः इससे अधिक लाभ लेने की भी अधिक संभावनाएं हैं जो वैज्ञानिक विधियां अपना कर ही प्राप्त की जा सकती हैं। इस वार्ता के माध्यम से आज हम आपको जायद में खीरा की खेती कर अधिक लाभ प्राप्त करने की तकनीक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आशा है किसान भाई इसे सुनकर व अमल में लाकर अपना खीरा का उत्पादन बढ़ा सकेंगे। खीरा की बहुत सी प्रजातियां हैं। अच्छी व अधिक उपज देने वाली प्रजातियों में जापानीज लॉन्ग ग्रीन, कल्याणपुर ग्रीन, शीतल, खीरा पूना, बालम खीरा, पूसा अलंकार, स्वर्ण पूर्णा, स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण अगेती आदि प्रमुख हैं। खीरा की पूसा संयोग नाम से संकर प्रजाति भी निकाली गई है। आप अपनी आवश्यकता व उपलब्धता के आधार पर प्रजाति का चयन

कर सकते हैं। खीरा की सफल खेती के लिए क्षारीय या ऊसर भूमि को छोड़कर अच्छे जल निकास और वायु संचार वाली हल्की या बलुई भूमि उपयुक्त रहती है। खीरा के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस समय गर्मी का प्रभाव बढ़ जाने से फसल की पानी की मांग भी बढ़ जाती है। खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा दो तीन जुताइयां कल्टीवेटर से कर खेत तैयार कर लेना चाहिए। खीरा की बुवाई का उचित समय चल रहा है, अतः इस समय आप खीरा की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाई खीरा की बुवाई हल के पीछे कुओं या फिर क्यारियां बनाकर करते हैं। यदि आप वैज्ञानिक विधि से खीरा की बुवाई कर सकें तो उत्पादन लागत में भारी कमी आ सकती है। रबी की फसलों जैसे गोभी, सरसों या आलू की फसल के खेत खाली होते ही उन्हें जोत कर पाटा लगा देना चाहिए, खेत का पलेवा न करें, अन्यथा आप खीरा बोने में एक सप्ताह और लेट हो जाएंगे। पाटा लगे खेत में खीरा की बुवाई करने के लिए तीन तीन मीटर की दूरी पर एक मीटर चौड़ाई की नालियां बना लेनी चाहिए। ध्यान रहे कि नालियां पूर्व से पश्चिम की दिशा में ही बनाई जाएं। इन नालियों को बनाने से पहले खेत में निशान लगा लेने चाहिए। इन निशानों के बीच में ही 55 किलोग्राम डीएपी, 25 किलोग्राम यूरिया व 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टर की दर से डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद बीच की मिट्टी को मांझे की सहायता से किनारे लगाकर बरहे बनाने चाहिए। इस प्रकार नाली की मेड़ों यानी बरहों पर उर्वरक पहुंच जाएंगे। इन बरहों पर नाली की तरफ खेत के लेवल में एक फुट की दूरी पर बीजों की बुवाई करनी चाहिए। बीजों को कभी भी बरहे की चोटी पर न बोएं। इस समय एक विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि बीजों को बोने से पहले बावस्टीन या थायरम नामक फफूंद नाशक दवा से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना न भूलें। खीरा की बुवाई हेतु 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है। बीजों को बोने से 12 घंटे पहले पानी में भिगोने से जमाव अच्छा होता है। यदि सूखे खेत में खीरा की बुवाई की गई है तो बुवाई की तुरंत बाद केवल नालियों में ही सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई भी 4-5 दिन बाद करने से अंकुरण अच्छा व एक समान होता है। आगे फसल की मांग अनुसार समय समय से सिंचाई करते रहना चाहिए। बेल फैलने से पूर्व व सिंचाई के बाद पौधों की निराई करते समय 1 माह की फसल होने पर तथा फूल आते समय 60-60 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर देने से अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। अंकुरण होते ही पौधों पर लाल कद्दू कीट, जो एक लाल रंग का कीड़ा होता है, आक्रमण करता है। यह कीट पौधों की पत्तियों को खाकर उनमें सुराख करता है और कभी कभी तो पूरा पौधा ही चट कर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम दानेदार फ्यूराडान या कार्वाराइल प्रति हेक्टेयर की दर से नालियों में प्रयोग करना चाहिए। इस भुरकाव के 20 से 25 दिन बाद 1.25 लीटर सेविन नामक रसायन को 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने से अच्छा लाभ होता है। इसके साथ ही खीरा में फल मक्खी का भी प्रकोप होता है। यह मक्खी फूल के बढ़भार के समय फूल के अंदर अंडे देती है और फल बनने पर फल के अंदर वृद्धि करके अंदर से फल को गलाने का कार्य करती है। इसके अलावा माहू, जो पत्तियों का रस चूसकर व बालदार सूखी पत्तियों को खाकर नुकसान करती हैं। इन सभी कीटों की रोकथाम हेतु इंडोसल्फान 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करना चाहिए। इस तरह किसान भाई अगर आप खीरा की खेती करेंगे तो निश्चय ही आपको

0: अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकती है और आपका लागत लाभ अनुपात 1:3 तक हो सकता है। यदि इस संबंध में और अधिक जानकारी करनी हो तो कृपया आप कृषि विज्ञान केंद्र अभागढ़ एटा से संपर्क कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आप सुन रहे थे जायद में खीरे की खेती विषय पर डॉक्टर आरपी अग्रवाल की वार्ता। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700001-4242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001-4242।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: फॉर्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन इति 5F विषयैः सह संरेखितमस्ति। कर्पासस्य उत्पादकतां वर्धयितुं च केन्द्रितमस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन आपत्कालीन ऋण रेखा प्रत्याभूति योजना 0.85 अनुमोदिता। योजनायाः अन्तर्गतं MSME इत्येतेषां कृते 100% ऋण प्रत्याभूतिः प्रदीयते। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन भारत सेमीकंडक्टर मिशन इत्यस्यान्तर्गतं इतोपि 2 सेमीकंडक्टर परियोजने अनुमोदिते।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकेंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: एतेषु सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सौकर्येण सह गैलियम नाइट्राइड तंत्रज्ञानस्य आधारे देशस्य प्रथमा वाणिज्य लघु माइक्रो एलईडी प्रदर्शन सौविध्यम अंतर्भवति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 20-26 संसदि उपस्थापयितुं प्रस्तावोपि स्वीकृतः। श्री वैष्णवः अवदत् यत् एतत् विधेयकं सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या अधिनियमः 29-56 इत्यस्य संशोधनं कर्तुं प्रयतते।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पदात् स्वत्याग पत्र प्रदानाय निराकृतवती। तस्याः अनुसारं मतानि बलात् लुण्ठितानि, मतदान प्रक्रियायां च कपटम् अभवत्। पश्चिमबंगस्य निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इत्यस्याः व्याख्यायाः प्रतिक्रियारूपेण भाजपेति दलेन उक्तं यत् भारतं लोकतन्त्रमस्ति तथा च सर्वदा तस्य सम्मानं करणीयम्। श्री संबित पात्रा अवदत् यत् एतत् भाजपेति दलस्य उपरि आक्रमणं नास्ति, अपितु लोकतन्त्रस्य संविधानस्य च उपरि आक्रमणमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 8 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स दलयोः मध्ये हैदराबादे स्पर्धा भविष्यति। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में पढ़ने लिखने और गणना की बुनियादी क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास भेजे जाने के साथ ही औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता साफ

0: हो गया है। आयोग ने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है और इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। अधिसूचना से निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेरा फेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा विक्ट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया है। इस षड्यंत्र का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को रिसिन नामक घातक जैविक विष देना था। रिसिन अरंडी के बीजों से प्राप्त होता है और रासायनिक हथियार अनुसूची में ये सूचीबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations, as also on regional and global issues of mutual interest. The President of Vietnam arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. He was received by Minister of State for Home Affairs Nityananda Rai at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government of Vietnam. A strong business delegation is also accompanying the visiting dignitary. This is President Tho Lam's first state visit to India after being elected as the President of Vietnam in April this year. We have a report.
2: President of Vietnam Tho Lam will be accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. He will pay tributes to Mahatma Gandhi at the Rajghat. After the talks between Prime Minister Narendra Modi and the President of Vietnam, several MOUs will be signed and exchanged. President Draupadi Murmu will have a meeting with her Vietnamese counterpart at Rashtrapati Bhavan this evening. Lok Sabha Speaker Om Birla will call on the visiting dignitary. Mr. Tho Lam will also deliver the 56th Sapru House lecture today, organized by Indian Council of World Affairs. India and Vietnam share historical and civilizational ties which have steadily deepened over the years. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: The Election Commission, ECS, issued a notification for the Constitution.

0: is complete from the Commission's end. Meanwhile, the Election Commission of India has directed West Bengal Chief Secretary, Director General of Police and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards any incidents of post-poll violence. In a directive issued after reviewing the situation on the ground, the Commission stressed the need for strict and immediate action to maintain law and order following the Assembly election results. The BJP has said, India is a democracy and it must always be respected. Reacting to alleged remarks by outgoing West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee that she will not resign, BJP spokesperson Sambit Patra termed the comments anarchic and urged restraint in making such statements. Mr. Patra said that these remarks are concerning because in the country's democracy, transfer of power has always taken place in a peaceful manner. He added that this is not an attack on the BJP, but it is an attack on democracy and on the constitution. The BJP has appointed senior party leader and union minister Amit Shah as a central observer for the election of the leader of the legislative party in West Bengal. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has been appointed as a central co-observer in the state. Union Minister J.P. Nadda has been appointed as central observer for the election of the leader of the legislative party in Assam. Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has been appointed as a central co-observer in the state. These names were approved by the BJP Parliamentary Board for central observers. U.S. President Donald Trump has congratulated Prime Minister Narendra Modi after BJP's victory in the recent assembly elections. White House spokesperson Khush Desai said, President Trump has congratulated Prime Minister Modi on this recent historic and decisive election victory. BJP has won 206 seats in the 294-member Bengal Assembly, with Trinamool Congress led by Mamata Banerjee securing only 80 seats. In Assam, the party retained power for the third consecutive term, while in Puducherry, NDA secured 18 of the 30 seats, ensuring a clear majority. The United States and its Gulf allies have proposed a new United Nations resolution aimed at pressuring Iran to stop disrupting shipping in the Strait of Hormuz. The draft resolution warns that Iran could face sanctions or other actions if it continues attacking ships, placing sea mines, or charging illegal tolls in the vital waterway. It also calls on Iran to reveal mine locations and allow safe passage for goods. In IPL cricket, Chennai Super Kings defeated Delhi Capitals by 8 wickets at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. Today, Sunrisers Hyderabad and Punjab Kings will clash at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:10 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एलर्जी कारण और बचाव विषय पर डॉक्टर अशोक गर्ग की वार्ता।
2: मनुष्य के शरीर में अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है, जिससे वह हानिकारक तत्वों के संपर्क में आने पर उनका प्रतिरोध करता है और यह प्रयत्न करता है कि वे हानिकारक तत्व शरीर को हानि न पहुंचा सके। इसी क्रम में कभी कभी मानव शरीर ऐसे तत्वों का भी प्रतिरोध करने लगता है जो हानिकारक नहीं है। यह क्रिया ही एलर्जी कहलाती है। जो नॉर्मल तत्व होते हैं, जिनसे शरीर को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति वह एलर्जी शो करने लगता है। यह प्रतिरोध शरीर अपने इम्यून सिस्टम के द्वारा करता है। यह तत्व भोजन, औषधियां, पराग कण, विभिन्न प्रकार की धूल एवं धुआं इत्यादि हो सकते हैं, जिनसे नॉर्मल शरीर में कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं होती। भारत के लगभग 20-25% लोगों को एलर्जी जनित बीमारियां हैं। एलर्जी के कारण जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं और बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, धूल, आवश्यकता से अधिक स्वच्छता, इन्फेक्शंस, जो बीमारियां इन्फेक्शियस बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा होती हैं, फूलों के पराग कण होते हैं, फंगस की धूल होती है, खाने की चीजें जितनी भी हैं रसदार या बिना रस की, इनसे भी एलर्जी हो सकती है। गोबर वगैरह जानवरों का जो धूल में मिल जाता है, उससे भी एलर्जी हो सकती है और औषधियों से भी विशेषकर एलर्जी होती है। एलर्जी के लक्षण विशेष रूप से खांसी, जुकाम, सांस फूलना, गले में खराश, आंखों एवं नाक का लाल हो जाना, नाक एवं आंख से पानी आना, नाक बंद हो जाना, विभिन्न अंगों में खुजली होना, शरीर पर चकत्ते पड़ जाना, अत्यधिक छींकों का आना। बचाव, एलर्जी से बचाव करने के लिए यह मालूम होना आवश्यक है

0: एलर्जी हमें किन किन चीजों से है, यह दो प्रकार से पता लगाया जा सकता है। नंबर वन, क्लोज ऑब्जर्वेशन से कुछ हद तक यह पता लग सकता है कि हमारे शरीर को किस चीज़ से एलर्जी है। वैसे तो इसका उचित उपाय एलर्जी टेस्ट कराना ही है, जिससे एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्वों का मालूम लग जाता है। बचाव का सबसे अच्छा उपाय एलर्जी उत्पन्न करने वाली चीज़ों से बचना, खाने की चीज़ों एवं धूल इत्यादि से तो बचाव किया जा सकता है, परंतु कुछ प्रकार की धूल, परागकण, फंगस की धूल इत्यादि वातावरण में व्याप्त हो जाते हैं, जो मौसम के अनुसार अलग अलग भी हो सकते हैं। इसीलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को सर्दी के मौसम में एलर्जी ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को गर्मी के मौसम में और कुछ लोगों को बसंत ऋतु में। यह तत्व सांस के साथ अथवा हवा के रूप में शरीर के संपर्क में आते हैं, जिसे रोका नहीं जा सकता। अतः इसके लिए इम्यूनोथेरेपी नामक इलाज अब उपलब्ध है। औषधियों से एलर्जी होने पर उन औषधियों का प्रयोग करने से बचना होता है। अगर प्रयोग करना संभव ना हो तो उनके साथ एलर्जी रोकने की दवा देनी होती है। एलर्जी के उपचार के लिए एलर्जी टेस्ट में अथवा स्वयं ऑब्जर्वेशन में निश्चित एलर्जन पता लगना आवश्यक है, तब एक विशेष दवा तैयार कराई जाती है। इस दवा की सूक्ष्म मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते हुए निश्चित दिनों के अंतर से शरीर में दी जाती है। इससे मनु का शरीर धीरे धीरे उस तत्व का अभ्यस्त हो जाता है जिससे वह पहले एलर्जी मानता था, अतः वह एलर्जी समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को हाइपोसेंसिटाइजेशन अथवा इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। एलर्जी के क्षेत्र में विकास अभी थमा नहीं है। चिकित्सकीय वैज्ञानिक अभी भी निदान में उपचार के नए नए तरीकों की खोजों में निरंतर संलग्न हैं और टेस्टिंग के एवं उपचार के नए नए तरीके आ रहे हैं, और आशय नहीं कि निकट भविष्य में इस क्षेत्र में कोई नवीन उपलब्धि हो जाए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे एलर्जी कारण और बचाव विषय पर डॉक्टर अशोक गर्ग की वार्ता। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब सुनते हैं देशगान।

0: करोगे वो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने सपनों को पूर्णता जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड,
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन,
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या
2: गोरखपुर से बड़े समाचार आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। दरअसल
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। एक इंसान की दुनिया को बढ़ाते हैं, इसी सब जीवन में दिख सकती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थदर्शन किया जाता और इसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। ये देखिए अब्दुल कलाम का ध्यान रखें।
1: आकाशवाणी को उसे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वीर प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सत्र 2026-27 के लिए 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया गन्ना मूल्य, कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी सहित लिए गए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्य स्तरीय शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में लिया हिस्सा।

0: कहा शिक्षा मित्र को भी दिया जाएगा 5 लाख रुपए सालाना का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 612 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 77 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा तेजी से आगे बढ़ते देश प्रदेश के साथ गोरखपुर भी कर रहा है तीव्र गति और गरज चमक के साथ तेज हवा के बीच हुई बारिश ने दी गर्मी से राहत। कई जिलों में आज भी है बारिश की आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया
1: वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य भी 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
2: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव एफआरपी प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
2: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
1: मंत्रिमंडल ने नागदा मथुरा और बुढ़वल सीतापुर के बीच तीसरी तथा चौथी रेल लाइन को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के जनहित से जुड़े फैसलों का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गन्ना किसानों के लिए वर्ष 2026-27 चीनी उत्पादन सीजन के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना स्वागत योग्य कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में शिक्षा मित्रों को सम्मानित कर बढ़े हुए मानदेय के चेक दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों की हालत बदली है, जिसके कारण ड्रॉपआउट दर 19 से घटकर 3% पर आ गई है।
3: 99% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब इन विद्यालयों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं और परिणाम क्या है, ड्रॉप आउट रेट 19% से घटकर के 3% पे आया है। जो बच्चे और समय स्कूल छोड़ते थे, एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब केवल स्कूल नहीं छोड़ता, एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब राष्ट्रीय क्षति भी है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तय किया है कि शिक्षा मित्रों को भी 5 लाख रुपए का सालाना का कैशलेस स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा।
3: 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की किसी भी शिक्षा मित्र के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो बैंक उनको उतना बीमा कवर उपलब्ध करवा देगा। कैशलेस की 5 लाख की सुविधा और साथ साथ यह भी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है सोशल सिक्योरिटी की, तो वह कोई भी बैंक इसमें आपको इस सुरक्षा प्रदान करने को तैयार होगा।
1: प्रदेश के कई जिलों में भी कल शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में आगरा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा हमारी नींव है।
4: प्राइमरी एजुकेशन हमारी नींव है, अगर नींव कमजोर हो जाएगी तो उसके ऊपर महल नहीं बन पाएगा। अध्यापक राष्ट्र की संपत्ति के चतुर माली होते हैं और वो बच्चों के संस्कारों को

0: अपने श्रम से सींचकर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 612 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी कड़ी में गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर 14 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बने 2-लेन ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते देश प्रदेश के साथ ही गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है।
2: गोरखपुर का नाम सुनकर के लोग डरते थे, कोई निवेश नहीं करने आता था। यहाँ का नौजवान अपनी पहचान के लिए मोहताज था, नौकरी के लिए उसको देश के अंदर भटकना पड़ता था। आज उसको भटकना भी नहीं है, पहचान छुपाना भी नहीं है। 50,000 से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर में गीडा में जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों के माध्यम से नौकरी मिली है गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्राप्त हुआ है।
1: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कल प्रयागराज में चल रहे नॉर्थ टेक सिंपोजियम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे रक्षा उद्योगों के कारखानों में विकसित उपकरणों और हथियारों से भारतीय सेना की शक्ति बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश शासन से महायोजना 2031 को मंजूरी मिलने के बाद अयोध्या के व्यापक विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन ने बताया कि अब शहर को 766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसे नव्य अयोध्या का नाम दिया गया है।
3: यहाँ पर आवासीय, इंडस्ट्रियल, ग्रीन बेल्ट, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अलग अलग श्रेणी की भूमि आरक्षित करी गई है और सभी लोगों से उन्हें अनुरोध है कि महायोजना के अनुरूप एक सुनियोजित विकास में आप लोग अपनी सहभागिता दें।
1: प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा के बीच हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं जनजीवन को भी प्रभावित किया है। मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, मिर्जापुर और चित्रकूट में कल शाम तेज हवा के साथ हुई वर्षा से कुछ स्थानों पर पेड़ गिर गए तो कहीं कहीं विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आज भी तेज हवा के साथ गरज चमक के बीच वर्षा होने का पूर्वानुमान है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को क्षेत्र में रहकर राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी करने को कहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सत्र 2026-27 के लिए 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया गन्ना मूल्य, कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी सहित लिए गए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्य स्तरीय शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में लिया हिस्सा। कहा, शिक्षा मित्रों को भी दिया जाएगा 5 लाख रुपए सालाना का कैशलेस स्वास्थ्य कवर। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 612 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 71 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, तेजी से आगे बढ़ते देश प्रदेश के साथ गोरखपुर भी कर रहा है तीव्र प्रगति। और गरज चमक के साथ तेज हवा के बीच हुई बारिश ने दी गर्मी से राहत, कई जिलों में आज भी हैं बारिश के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता

0: और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है स्थानीय गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास का। कार्यक्रम आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार। एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा 11 जुलाई को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा तिथि बदल दी है। आयोग के अनुसार हिंदी, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत विषयों की मुख्य परीक्षा एक ही दिन 11 जुलाई को होगी। ये परीक्षाएं पहले अलग अलग तिथियों में होनी थी। इसी तरह से प्रवक्ता पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2025 भी अब 7 जून की जगह 14 जून यानी कि रविवार को होगी।

सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस के बीच सुपरफास्ट ट्रेन रेलवे पीआरओ ने बताया कि सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस सूबेदार से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी। वृद्धावस्था पेंशन में आधार से आयु प्रमाण पत्र मान्य नहीं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अब आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवेदन के लिए परिवार या कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। बायोमेट्रिक से सत्यापन के बाद ही विवाह पंजीकरण। विवाह पंजीकरण में अब वर वधु और उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार पर सत्यापन के बाद ही होगी। सभी उप निबंधक कार्यालयों को में ये लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय भी आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। मई में कई ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चल रही। उत्तर रेलवे में मेगा ब्लॉक के कारण ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। पीआरओ ने बताया कि गांधीधाम भागलपुर स्पेशल, भागलपुर गांधीधाम स्पेशल, गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, बनारस अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ अहमदाबाद मलहौर ऐशबाग और मानक नगर होकर संचालित होंगी। आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की है। पीआरओ ने बताया कि कानपुर सेंट्रल मदुरई स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल से 27 मई तक और मदुरई से 3 अप्रैल से 29 मई तक चलेगी। वहीं आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन भी संशोधित दिनों में संचालित होंगी।

सात जोन में होगा सुनियोजित विस्तार। शहर की बढ़ती आबादी और विस्तार को देखते हुए इसे सात अलग अलग जोन में बांटा गया है। इन सात जोन के लिए अलग अलग जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इन प्लान के लागू होने का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आम जनता को अपने भूखंड का लैंड यूज जानने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जोनल प्लान में एक एक इंच जमीन का उपयोग पहले ही निर्धारित होगा। इससे न केवल अवैध कॉलोनियों के बसने पर रोक लगेगी बल्कि बिल्डरों और आम नागरिकों को भी ये पता होगा कि किस क्षेत्र में किस तरह का निर्माण वैध है। हालांकि योजना में स्पष्ट किया गया है कि जो क्षेत्र पहले से बिल्डअप यानी कि पूरी तरह से बसे हुए हैं उनके लिए फिलहाल नया प्लान नहीं बनेगा। पूरा फोकस खाली पड़ी जमीनों और नए विस्तार क्षेत्रों पर होगा।

कोल कंपनी में 1055 पदों पर मौके। मिनी रत्न कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने माइनिंग सरदार डिप्टी सेवर और असिस्टेंट फोरमैन के 1055 पदों पर बंपर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 14 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। माइनिंग सरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी पद 587, योग्यता 10वीं पास हो या माइनिंग इंजीनियरिंग स्नातक डिग्री या 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हो। एमपी में 17 पदों पर जल्द करें आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 17 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां राज्य के गृह विभाग के लिए की जाएंगी। हर तरह के आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के सभी वर्गों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मई 2026 है। योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से LLB की डिग्री या समकक्ष योग्यता हो।

पॉलिटेक्निक के लिए 10 तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 10 मई तक आवेदन कर सकेंगे। पहले अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। परिषद ने वंचित अभ्यर्थियों को राहत देते हुए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया 9 से 11 मई तक चलेगी। ये राज्य स्तरीय परीक्षा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होती है।

मई में ओले, आंधी बारिश और तेज गर्मी से परेशानी बढ़ी। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। मई में प्री मानसून गतिविधियों के सक्रिय होने और पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तापमान 7.7 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे ठंडक बढ़ गई है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में ओले गिरे, आंधी आई और बारिश हुई। राजस्थान और महाराष्ट्र में पारा 42 के पार दर्ज किया गया। राजस्थान के फलौदी में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो सबसे ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यही उतार चढ़ाव जारी रहेगा, फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बुधवार को बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी है।

प्रदेश में अब पीसीएस जेप परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी HJS हायर एस ज्यूडिशियल सर्विस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए उन्हें नौकरी और वकालत करते हुए 7 वर्ष पूरे करने चाहिए। प्रमुख सचिव नियुक्त एवं कार्मिक ने बताया कि मंगलवार को इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 2026 जारी कर दी है। HJS की भर्तियां अब इसी के आधार पर होंगी।

7 मई से शुरू होगा। घर बैठे कोई भी नागरिक स्वगणना कर सकेगा। इसके लिए निर्धारित पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। संबंधित जानकारी भरने के बाद 11 अंकों की SEID मिलेगी। स्वगणना की अंतिम तारीख 21 मई है और 22 मई से 20 जून तक घर घर प्रगणक जाएंगे। प्रत्येक मकान की जियो टैगिंग करेंगे और 33 प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर आपको देने होंगे। पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। जनगणना पोर्टल से प्रगणक और सुपरवाइजर डाटा अन्य मोबाइल में ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। जनगणना 2027 के पहले चरण में जिले के 23 जोन में इन्हें बांटा गया है, जिसमें 4 जोन नगर निगम में हैं।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की अपने रेडियो साथी प्राची जैन को अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मि स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति

0: भवन में श्री तोलेम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तोलेम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री तोलेम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
2: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन

0: समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
1: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया।

0: हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
1: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो सीएनजी बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
0: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए दो धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जल मार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
2: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले

0: अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपए बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, नया पैतरा, भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है, हारे नहीं हराए गए, सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लॉम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Election Commission asks West Bengal Chief Secretary, DGP and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards post-poll violence. Election Commission issues notification for constitution of new assemblies in West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry following completion of electoral process. NIA charge sheets doctor, 2 others in ISIS linked bioterror plot to carry out mass poisoning. US President Donald Trump says Project Freedom to guide stranded vessels through Strait of Hormuz will be paused for a short period of time. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Delhi Capitals by 8 wickets. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations, as also on regional and global issues of mutual interest. The President of Vietnam arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. He was received by Minister of State for Home Affairs, Nithyanand Rai, at the airport. He is accompanied by a higher-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government of Vietnam. A strong business delegation is also accompanying the visiting dignitary. This is President Tho Lam's first state visit to India after being elected as the President of Vietnam in April this year. We have a report.
3: President of Vietnam Tho Lam will be accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. He will pay tributes to Mahatma Gandhi at the Rajghat. After the talks between Prime Minister Narendra Modi and the President of Vietnam, several MOUs will be signed and exchanged. President Draupadi Murmu will have a meeting with her Vietnamese counterpart at Rashtrapati Bhavan this evening. Lok Sabha Speaker Om Birla will call on the visiting dignitary. Mr. Tho Lam will also deliver the 56th Sapru House lecture today, organized by Indian Council of World Affairs. India and Vietnam share historical and civilizational ties which have steadily deepened over the years.

0: likely on May 9, speculates the Asian Age. The Asian Age writes that the power center of the West Bengal government is all set to return to the historic Writers Building in the heart of Kolkata from Novonno in Howrah, the offices of outgoing CM Mamata Banerjee government after the regime change in the state. The Tribune in its editorial piece says, post-poll rancor, defiant Mamata rejects Bengal verdict. The paper writes that the acrimony witnessed during the West Bengal Assembly elections has intensified following the declaration of results. The aftermath is not unfolding as a routine democratic transition. Outgoing Chief Minister Mamata Banerjee has refused to accept the verdict. Ruling out her resignation, it's apparent that Mamata's agitational politics will keep the new government on its toes right from the word go. Cabinet gives nod to make insult to Vande Mataram an offence, reports the Hindu. Uttar Pradesh's new cuisine map leaves meat off the menu, lists only veg iconic dishes across 75 districts, says Hindustan Times. India condemns UAE strike, calls it unacceptable, notes the Pioneer. And finally, Washington Post, New York Times among top winners of Pulitzer Prizes, reports Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Election Commission asks West Bengal Chief Secretary, DGP and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards post-poll violence. Election Commission issues notification for constitution of new assemblies in West Bengal, Assam, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry following completion of electoral process. NIA charge sheets doctor, two others in ISIS linked bio-terror plot to carry out mass poisoning. US President Donald Trump says Project Freedom to guide stranded vessels through Strait of Hormuz will be paused for short period of time. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Delhi Capitals by 8 wickets. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तो लाम के साथ बातचीत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों से कहा है कि वो चुनाव के बाद के तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त न करने का उसूल लागू करें। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई असेंबलियों की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एनआईए ने आईएसआईएस के राबते वाली बायो टेरर साजिश में एक डॉक्टर और दो दीगर को बड़े पैमाने पर लोगों को जहर देने के इल्जाम में माखूज किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तो लाम के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर वसी बातचीत करेंगे। वो बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी बातचीत करेंगे। वियतनाम के सदर कल भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने किया। उनके हमराह वियतनाम हुकूमत के बहुत से वजीरों और सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल आला सतही वफ्द भी आया है। उनके साथ सरकर्दा ताजिरों का एक वफ्द भी है। सदर तो लाम का इस साल अप्रैल में वियतनाम के सदर के तौर पर चुने जाने के बाद भारत का ये पहला सरकारी दौरा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: वियतनाम के सदर तो लाम को आज राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाजाब्ता रस्मी इस्तकबालिया दिया जाएगा। वो राजघाट में महात्मा गांधी को गुलाए अकीदत नजर करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर के दरमियान बातचीत के बाद कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे और उनका तबादला किया जाएगा। सदर जमहूरिया

0: द्रौपदी मुर्मू वियतनाम के अपने हम मनसब के साथ आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दौरे पर आए मेहमान से मिलने जाएंगे। वियतनाम के सदर आज इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के जेर एहतमाम 56वां सप्रू हाउस लेक्चर भी देंगे। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: भारत के इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस को इंतखाबात के बाद किसी भी किस्म के तशद्दुद को कतई बर्दाश्त न किए जाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। जमीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लिए जाने के बाद जारी किए गए एक हुक्मनामे में कमीशन ने सख्त और फौरी इकदाम की जरूरत पर जोर दिया ताकि असेंबली इंतखाबात के नतीजे के बाद अमन कानून को बरकरार रखा जाए। इंतखाबी कमीशन ने रियासती इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो इंतखाबी नतीजे के ताल्लुक से डराने धमकाने, बदले या टकराव की किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। कमीशन ने हुक्काम को यह भी हिदायत दी है कि वो तमाम शहरियों, खुसूसन कमजोर ग्रुपों और सियासी कारकुनान की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाएं और हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की नुमाया मौजूदगी को बरकरार रखें। सीनियर अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो चौकस रहें और रियासत में होने वाले किसी भी वाकये की इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करें। ये हिदायत तशद्दुद के उन अलग अलग वाकयात के बारे में तश्वीश के दौरान जारी की गई हैं जिनकी इत्तला नतायज के ऐलान के बाद दी गई थी, जो इंतखाबात के बाद रियासत के इलाकों में बार बार उभरने वाला मामला है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाने के बाद नई असेंबलियां तश्कील दिए जाने की गरज से नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ये नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी अमल के इख्तिताम पजीर होने और नई सरकारों की तश्कील के मकसद से रियासतों के गवर्नर्स और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान को भेजे गए हैं। इंतखाबी कमीशन के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि नोटिफिकेशन का इजरा चुनाव नतीज के ऐलान के बाद एक कलीदी आईनी कदम है और इसके साथ ही इंतखाबी कमीशन की जानिब से नई असम्बलियां तश्कील दिए जाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। अहदेदार ने यह भी कहा कि कमीशन ने असम्बली इंतखाबात के इनका के दौरान सभी जब्तों पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया है। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक पूरा अमल कानूनी फ्रेमवर्क के मुताबिक आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया है। नोटिफिकेशन से रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुंतखबा नुमाइंदों की हलफ बरदारी और नई सरकारों की तश्कील की राह हमवार हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि भारत एक जमहूरियत है और इसका हमेशा एहतराम किया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल की सुबुकदोश होने वाली वजीर आला ममता बनर्जी की मुबैना राय जनी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इस तबसरे को इंतशार पैदा करने वाला करार दिया और ममता बनर्जी पर जोर दिया कि वो इस किस्म के बयान देते हुए तहम्मुल का मुजाहरा करें। जनाब पात्रा ने कहा कि ये तबसरे तश्वीश का बायस हैं क्योंकि मुल्क की जमहूरियत में इक्तदार की मुंतकली हमेशा पुरम तरीके से हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई बीजेपी पर हमला नहीं है बल्कि ये जमहूरियत और मुल्क के आइन पर हमला है।
2: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
1: बीजेपी ने सीनियर पार्टी लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह को मगरबी बंगाल में लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के इंतखाब के लिए मरकजी मुशाहिद मुकर्रर किया है, जबकि ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी को रियासत में मरकजी मुआविन मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा को आसाम में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब करने के लिए मरकजी मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी को रियासत में मुआविन मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और पुदुचेरी में बीजेपी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना को पुदुचेरी में मरकजी मुशाहिदीन मुकर्रर किया गया है। बीजेपी के पार्लियामानी बोर्ड ने मरकजी मुशाहिदीन के लिए इन नामों की मंजूरी दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर मुबारकबाद दी है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कुश देसाई ने कहा कि सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी को हालिया तारीखी और फैसला कुन इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद दी है। बीजेपी ने 294 रुकनी बंगाल असेंबली में 206 सीटें जीती हैं, जबकि ममता बनर्जी की क्यादत वाली

तृणमूल कांग्रेस ने महज 80 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इधर आसाम में बीजेपी ने मुसलसल तीसरी मरतबा अपना इकतदार बरकरार रखा है, जबकि पुदुचेरी में एनडीए ने 30 से 18 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली है। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में एक वाहिद बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने वाली टीवीके रियासत में हुकूमत साजी का दावा पेश करेगी। पार्टी का कहना है कि उसके लीडर जोसेफ विजय आज गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात करके रियासत में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए पार्टी का दावा पेश करेंगे। टीवीके को रियासती असेंबली में अक्सरियत हासिल करने के लिए मजीद 10 अरकान असेंबली की हिमायत की जरूरत है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म अवामी मकामात पर लोगों को एक बायोलॉजिकल जहर देने की आईएसआईएस की एक साजिश में इन लोगों के मुलव्वस होने के सिलसिले में दाखिल की गई है। हैदराबाद में मुकीम डॉक्टर सैयद अहमद मुहीउद्दीन और उत्तर प्रदेश के साथी मुलजिम आजाद और मोहम्मद सुहेल को गुजरात के शहर अहमदाबाद में एनआईए की एक खसूसी अदालत के सामने ये फर्द जुर्म पेश की गई है। मुलजमीन ने दौलत इस्लामिया से वाबस्ता बैरून मुल्क मुकीम अपने आकाओं की हिदायत में काम करते हुए अपने आकाओं की तरफ से कमजोर नौजवानों को इंतहा पसंद बनाकर भर्ती करने के लिए उनसे मिलजुल कर काम किया था ताकि जिहाद में मदद दी जा सके और ममनुआ हथियारों नीज बायो टेररिज्म के जरिए दहशत फैलाई जा सके। उन्होंने एक इंतहाई जहरीले मादे रिसिन या अरन के इस्तेमाल की मनसूबाबंदी की थी, जिसे कीमियावी हथियारों के कन्वेंशन की पहली फहरिस्त में शामिल किया गया है। इन लोगों का मकसद आईएसआईएस के इन नफरत अंगेज एजेंडे को आगे बढ़ाना था। यह केस इब्तदाई तौर पर चीन के एक एमबीबीएस डॉक्टर मुहीउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने दर्ज किया था। मुहीउद्दीन गैर कानूनी हथियार एक टोल प्लाजा से गुजारते हुए पकड़ा गया था। उसके पास से नवम्बर 2025 को अरंड के 4 लीटर तेल पर मुश्तमिल एक बोतल और मुजरिमाना नौयत की कुछ दीगर चीजें बरामद की गई थीं। एटीएस ने तफ्तीश के बाद उसी दिन मजीद 2 मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया था। पंजाब में कल शाम जालंधर में सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स के सख्त हिफाजती इंतजाम वाले मरकजी दरवाजे के करीब एक धमाका होने से इलाके में खौफो हिरास और तश्वीश पैदा हो गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ऑनलाइन सामान डिलीवरी कंपनी में काम करने वाला एक डिलीवरी बॉय बीएसएफ एहलकारों को पार्सल पहुंचाने आया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों की रहनुमाई करने वाला एक मिशन है, कुछ वक्फे के लिए रोका जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि महाजराई को खत्म करने के लिए ईरान के नुमाइंदों के साथ एक जामे मुआहदा किए जाने की तरफ बड़ी पेशरफ हुई है। उन्होंने वजाहत की कि हालिया फौजी कार्रवाई और सिफारती बातचीत की पेशरफ की रोशनी में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत एक मुख्तसर वक्फे के लिए आबनाए हुरमुज में जहाजों की इस कार्रवाई को रोकने का एक बाहमी फैसला किया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस वक्फे से इस बात पर गौर वखोज करने का वक्त मिल जाएगा कि अमरीका और ईरान के दरमियान एक कतई मुआहदा किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने यह ऐलान वजीर खारजा मार्को रूबियो की तरफ से ये कहे जाने के बाद किया है कि ईरान में अमरीका इसराइल के इब्तदाई हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इस कार्रवाई के मकासद हासिल हो जाने के बाद खत्म कर दिए गए हैं। इतवार को ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया था। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक ने अमरीकी मदद के लिए दरख्वास्त की थी कि उनके जहाजों को लड़ाई में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकाल लिया जाए। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन के नॉट आउट 87 रन और कार्तिक शर्मा के 41 रन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए दरकार 156 रन के लिए खेलते हुए नई चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 ओवर्स और 3 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर जीत का हदफ हासिल कर लिया। संजू सैमसन को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज बिहार और मगरबी बंगाल के गंगा की तराई वाले इलाके में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि इन खित्तों में कल तक 60 किलोमीटर फी घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। महकमे ने यह भी बताया है कि आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय,
और सिक्किम में भी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दीवाना का ये गीत, जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में फिल्म राजा का ये गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को फिल्म बाबुल में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था आदेश श्रीवास्तव ने।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के स्वर में फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए बलरामपुर और देवरिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्र का।
2: जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन द्वारा योजनाओं का लगातार स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा है। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन द्वारा विकास खंड हरैया सतघरवा के ग्राम मुड़ेहवा एवं मोतीपुर खुर्द का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्कूल चलो अभियान, दस्तक अभियान, टीकाकरण, पेंशन योजनाओं से संतृप्तिकरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दिए जा रहे लाभ की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने ग्राम मुड़ेहवा एवं मोतीपुर खुर्द में घर घर जाकर ग्रामीणों से संवाद किया तथा अभिभावकों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों का विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे तथा अभियान के तहत प्रत्येक पात्र बच्चे का नामांकन अनिवार्य रूप से कराया जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित करें। जनपद बलरामपुर में विकास एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विधायक तुलसीपुर कैलाशनाथ शुक्ला द्वारा विकास खंड हरैया सतघरवा के ग्राम चौका कला एवं माधोपुर में राप्ती नदी के कटान से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित कटान निरोधक परियोजना का शुभारम्भ भूमि पूजन कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा तटवर्ती एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनपद में कटान एवं बाढ़ से बचाव हेतु कई प्रभावी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। जनपद बलरामपुर में महिलाओं द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन बिल के ना पास होने पर विरोध में महिला जन आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने संबोधित किया। महिलाओं द्वारा विरोध पग यात्रा निकाल कर किया गया एवं विपक्ष का पुतला भी फूंका गया। महिलाओं ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का जो लोग विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में महिलाएं उनको इसका करारा जवाब देंगी। 27 अप्रैल को सम्मेलन पूर्व आयोजित प्रेस वार्ता को कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने संबोधित करते हुए सपा एवं कांग्रेस को महिलाओं को आगे न बढ़ने देने की बात कही। उन्होंने कहा
3: ये लोग नहीं चाहते कि हमारी माँ बहने विधानसभा और लोकसभा में जा करके जो तमाम तरह के नियम कानून बनते हैं उनमें हिस्सेदारी महिलाओं को मिले।
2: जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में संचालित प्रमुख विकास परियोजनाओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा बलरामपुर बाईपास, तुलसीपुर में आरोग्य निर्माण, जिला चिकित्सालय में 100 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट, नगर पालिका में एसटीपी निर्माण

0: संचारी रोग नियंत्रण अभियान, प्रोजेक्ट संवर्धन, थारू गांव में विद्युतीकरण एवं संपर्क मार्ग, बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना तथा अन्य विभागों के क्षेत्र में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। जनपद बलरामपुर के समस्त विकास खंडों में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग, चिन्हांकन, शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार, दुकान संचालन योजना और शल्य चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मौके पर ही आवेदन और आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने अपील की है कि सभी पात्र दिव्यांगजन अपने साथ अनिवार्य दस्तावेज जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तथा नवीनतम फोटो लेकर शिविर में अवश्य पहुँचे। समस्त ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच सके। जनपद बलरामपुर पुलिस साइबर सेल CEIR टीम द्वारा 144 गुमशुदा स्मार्टफोन अनुमानित कीमत करीब 30 से 35 लाख रुपए बरामद किया गया। बरामद शुदा स्मार्टफोन को पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल लौटाए जाने के दौरान उपस्थित नागरिकों ने बलरामपुर पुलिस विशेषकर साइबर सेल थानों पर गठित की गई साइबर टीम की प्रशंसा की। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा,
1: ये सभी ऐसे मोबाइल हैं जो कि खो गए थे, जिनका गुमशुदगी CIR पोर्टल पे या थाने पर पंजीकृत कराया गया था, उसको पुलिस ने खोजा है। बलरामपुर पुलिस इस कार्य के माध्यम से ये सूचित करना चाहती है, बलरामपुर की पूरी जनता के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
0: जनपद बलरामपुर में पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के अंतर्गत देवीपाटन मंडल के जनपद बलरामपुर की विभिन्न विधानसभाओं में पर्यटन विकास की 7 परियोजनाओं के लिए 786 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से विभिन्न विधानसभाओं में धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं उनके आसपास बुनियादी सुविधाओं सुलभ कराई जाएगी। इस कार्य के लिए UPSTDDC को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्यों को गुणवत्ता और समय के साथ पूरा करें। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पज्ञात धार्मिक स्थलों में सुधार कर वहाँ बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराकर श्रद्धालुओं को आकर्षित करना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा श्रद्धालुओं को आस्था स्थल तक पहुँचने में आसानी होगी।
2: बलरामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश शर्मा का।
3: उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिला सशक्तिकरण एवं बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर साक्षी दुबे को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिलाओं व बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना हमारा उद्देश्य है, जिसके क्रम में साक्षी ने विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनके कार्यों की जानकारी भी प्राप्त किया।
4: मुझे बहुत गर्व हो रहा है बताते हुए कि केवल 10वीं की वो छात्रा है, उसने बहुत ही धैर्य से बहुत ही अच्छे से सब लोगों की सुनवाई करी और उसने अच्छे निर्णय भी लिए।
3: जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत जिले में 7 से 21 मई तक स्वगणना अभियान संचालित किया जाएगा। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक घर घर सर्वेक्षण का कार्य शुरू होगा। जिलाधिकारी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश देते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वगणना के तहत नागरिक ऑनलाइन पोर्टल या QR कोड के माध्यम से स्वयं अपने वो अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर पर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने उन मेधावियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आगामी समय में आने वाले बाढ़ की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की एक बैठक कर बाढ़ निरोधी कार्यों में किसी भी प्रकार की स्थिरता न बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आपदा राहत सहित अन्य सभी आवश्यक सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखें। उन्होंने बिजली, पेयजल, भूसा, चोकर, गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण, राहत सामग्री आदि के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए चेताया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने बाढ़ तटबंधों की सतत निगरानी रखने, नाव नाविक गोताखोरों का भी चिन्हांकन करने का निर्देश देते हुए कहा कि राहत शिविरों व बाढ़ नियंत्रण कक्षों को तत्काल प्रभाव से सक्रिय किया जाए। शासन के निर्देश पर सुरक्षित बचपन योजना के तहत जिला कारागार में गठित संयुक्त निगरानी समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला कारागार में महिला बंदियों के साथ निरुद्ध 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास व संरक्षण को सुनिश्चित किया गया। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी ने EBM वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने EBM व VVPAT को

0: सुरक्षित रखने से संबंधित सभी सुरक्षात्मक बिंदुओं की गहनता से पड़ताल किया। विगत दिनों जिले के पथरदेवा विकासखंड के मलगोट बिरेचा गांव में जिलाधिकारी द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना तथा उसका त्वरित निस्तारण करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया। ग्राम चौपाल के दौरान जिलाधिकारी ने गोद भराई व अन्न प्राशन संस्कार भी कराया। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश होमगार्ड एनरोलमेंट 2025 की लिखित परीक्षा का आयोजन जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। यह परीक्षा 2 पालियों में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर गुणवत्ता व पारदर्शी पूर्वक परीक्षा सम्पन्न कराने का निर्देश दिए। जिले में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अपर निदेशक गोरखपुर मंडल डॉक्टर जयंत कुमार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपर निदेशक ने कहा कि यह प्रचार वाहन गांव-गांव गली-गली जाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जागरूक करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी CHO ANM आशा वर्कर अपने अपने कार्य क्षेत्र के तहत आने वाले गाँव में शिविर लगाकर पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जिले के चौतरफा विकास की बात कही गई। साथ ही यह भी कहा गया कि जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें, जिससे कि जिले का चौतरफा विकास हो सके। बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने का भी स्पष्ट निर्देश दिया गया। बंगाल, असम व पांडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर जिले में भाजपाइयों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दिया। इस दौरान सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि बंगाल की जनता ने तुष्टिकरण को नकार कर विकास व राष्ट्रवाद को चुना है। यह जीत प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और उनके प्रति जनता के विश्वास की जीत है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अनपढ़ में राजा मेहदी अली खान की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था मदन मोहन ने। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म गाइड का ये गीत। गीत के बोल हैं एसडी शैलेंद्र के और संगीत है एसडी बर्मन का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोंसले के स्वर में फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत। एसएच बिहारी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले अमित कुमार के स्वर में फिल्म कस्मे वादे का ये गीत। गुलशन बावरा की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 9:45 हुए हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सरला शर्मा के गाए कुछ लोकगीत।

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सरला शर्मा के गाए कुछ लोकगीत, और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम का पहला गीत सांवरिया फिल्म से हमने लिया है, जिसे आवाज दी है कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल ने। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है मोंटी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह को फिल्म चलते चलते में। जावेद अख्तर की शब्द रचना को संगीत में ढाला था आदेश श्रीवास्तव ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म राज रिबूट का ये गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। गीत लिखा है रश्मि विराग ने और संगीत है जीत गांगुली का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह, मनी महादेवन, रवि मिश्रा, अर्षा के स्वर में फिल्म राजी का ये गीत। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे सोनू निगम के स्वर में हमने फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से लिया है। गीत लिखा है जयदीप साहनी ने और संगीत है सलीम सुलेमान का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जगन्नाथ और साथियों के बजाया शहनाई पर राग चंद्रप्रभा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जगन्नाथ और साथी का राग चंद्र प्रभा में शहनाई वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसे लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी बहुमुखी कलाकार की, जिन्होंने अपने अभिनय, नृत्य, जीवंत स्क्रीन प्रेजेंस और अलग अलग तरह के किरदारों से दर्शकों के दिलों पर राज किया। हम बात कर रहे हैं अरुणा ईरानी की। अरुणा ईरानी का जन्म 18 अगस्त 1946 को मुंबई, भारत में हुआ था। उनके पिता फरीदुन ईरानी ने नाटक मंडली चलाई और उनकी मां सगुना अभिनेत्री थी। वह 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं और उन्होंने 6ठी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सभी बच्चों को शिक्षित कर सकें। बचपन से अभिनय शुरू करने वाली अरुणा ईरानी ने शुरुआती दौर में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग जगह बना ली।

गंगा जमुना और अनपढ़ जैसी फिल्मों से शुरू हुआ अरुणा ईरानी का सफर, आगे चलकर कारवां, बॉम्बे टू गोवा, बॉबी, फकीरा, सरगम, रॉकी जैसी फिल्मों तक पहुंचा। खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ एक तरह की भूमिका तक खुद को सीमित नहीं रखा। कॉमिक, नकारात्मक, नृत्य प्रधान, चरित्र और मां के रोल, हर रूप में उन्होंने दर्शकों को प्रभावित किया।

दोस्तों, अगर करियर की उपलब्धियों की बात करें तो अरुणा ईरानी ने पेट प्यार और पाप और बेटा के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पुरस्कार जीते। इसके अलावा उन्हें इसी श्रेणी में रिकॉर्ड संख्या में नामांकन मिले और वर्ष 2012 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया। बाद के वर्षों में उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी अभिनय, निर्देशन और निर्माण के क्षेत्र में काम किया।

दोस्तों, अरुणा ईरानी का निजी जीवन भी हमेशा चर्चा में रहा। उन्होंने निर्देशक कोको कॉली से विवाह किया। उन्होंने कई साक्षात्कारों में अपने निजी निर्णयों, रिश्तों और जीवन के उतार चढ़ाव पर खुलकर बात की है। ये स्पष्ट है कि उन्होंने निजी जीवन की जटिलताओं के बावजूद अपने पेशेवर जीवन को मजबूती से आगे बढ़ाया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक में अरुणा ईरानी ने मातृत्व की भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया, विशेष रूप से बेटा, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता।

दोस्तों, अपने करियर के दौरान अरुणा ईरानी कई मराठी फिल्में भी कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े पर्दे के साथ छोटे पर्दे पर भी किस्मत आजमाई। 2000 में उन्होंने धारावाहिक जमाना बदल गया से छोटे पर्दे पर अभिनय की शुरुआत की। कहानी घर घर की, झांसी की रानी, देखा एक ख्वाब, परिचय, संस्कार, धरोहर अपनों की जैसे कई टीवी शोज में अरुणा ईरानी अहम किरदार निभा चुकी हैं। दोस्तों, इनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर प्रतिभा के साथ निरंतर मेहनत जुड़ जाए तो छोटे से आरंभ से भी एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। और अब मैं यानी आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक की लेती हूँ आपसे विदा और आपको छोड़े जाती हूँ अरुणा ईरानी के इस गीत के साथ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। समय है सूचना परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का, और आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ प्रकृति की बात नहीं करता, बल्कि हमारे आज, हमारे कल और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जल, जो सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की धड़कन है, धरती की हरियाली है, किसान की उम्मीद है और मनुष्य के अस्तित्व की सबसे पहली शर्त है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और बूंद बूंद बह जाए तो प्यास बढ़ती है। आज जब कई शहरों और गांव में पानी की कमी महसूस की जा रही है, तब ये बात और भी गहराई से समझ आती है कि अगर जल नहीं तो कल नहीं। तो आइए इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं।

दोस्तों, पानी का रंग भले ही ना दिखे, लेकिन उसकी अहमियत जिंदगी के हर रंग से कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, सुबह उठते ही अगर घर में पानी ना आए तो दिन की शुरुआत ही कितनी मुश्किल हो जाए। पीने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, साफ सफाई के लिए चाहिए, खेती के लिए चाहिए और सबसे बढ़कर जीवन के लिए चाहिए। जल का महत्व हम सब जानते हैं, लेकिन उसे बचाने की आदत अभी भी हम में उतनी मजबूती से नहीं आ पाई है। कभी नल खुला छोड़ देते हैं, कभी ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहा देते हैं और कभी ये सोच कर चुप रह जाते हैं कि मेरे अकेले से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि पानी की हर बूंद मायने रखती है।

नदी की बहती धारा हमें बहुत कुछ सिखाती है, चलते रहना, जीवन देना और बिना किसी भेदभाव के सबको अपने आंचल में समेट लेना। हमारी नदियां, तालाब, झीलें और कुएं सिर्फ जल स्रोत नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी विरासत है। लेकिन अफसोस, आज इन्हीं जल स्रोतों को हमने गंदगी, प्लास्टिक और लापरवाही से भर दिया है। दोस्तों, अगर हमें सचमुच पानी बचाना है तो सिर्फ घर के नल बंद करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने जल स्रोतों को भी स्वच्छ रखना होगा। याद रखिए, जहां जल स्वच्छ है वहीं जीवन सुरक्षित है।

दोस्तों, बारिश की हल्की हल्की फुहारें जब धरती पर गिरती हैं तो मन खिल उठता है। रिमझिम बारिश सिर्फ मौसम नहीं लाती, वह आशा, ताजगी और जीवन का नया संदेश भी लाती है। लेकिन एक सवाल भी छोड़ जाती है, क्या हम इस अनमोल वर्षा जल को सहेज पा रहे हैं? आज जरूरत है कि हर घर, हर इमारत, हर स्कूल और हर मोहल्ला वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाए। जो पानी आसमान से वरदान बनकर आता है उसे यूं ही बह जाने देना समझदारी नहीं है। बारिश की हर बूंद में आने वाले कल की प्यास बुझाने की ताकत छिपी होती है।

दोस्तों, अगर हम बात करें पानी को बचाने की, तो जल संरक्षण कोई बहुत बड़ा या कठिन काम नहीं है। बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी समझदारी चाहिए। जैसे ब्रश करते समय नल बंद रखें, बाल्टी से नहाने की आदत डालें, रसोई में बचा पानी पौधों में इस्तेमाल करें, टंकी को ओवरफ्लो ना होने दें, जहाँ लीकेज हो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये छोटे छोटे कदम सुनने में भले ही मामूली लगें, लेकिन जब करोड़ों लोग इन्हें अपनाएंगे तो यही कदम एक बड़े बदलाव का कारण बनेंगे। क्योंकि दोस्तों, जल संरक्षण केवल आदत नहीं, एक जिम्मेदारी भी है।

दोस्तों, जब बरसात आती है तो सूखी धरती भी मुस्कुरा उठती है, पेड़ पौधे झूमने लगते हैं, खेतों में हरियाली उतर आती है और मन में एक नई ताजगी भर जाती है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरी सीख छिपी है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बस हम उसे संभालना सीख लें। जल बचाना केवल अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने खेतों के लिए, अपने शहर और गांव के लिए और इस पूरी धरती के लिए ज़रूरी है। अगर आज हम लापरवाह रहे तो आने वाले समय में पानी सिर्फ ज़रूरत नहीं, संघर्ष बन जाएगा। इसलिए आइए हम संकल्प लें कि जल को व्यर्थ नहीं बहाएंगे, जल स्रोतों को गंदा नहीं करेंगे और दूसरों को भी पानी बचाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी उम्मीद और संदेश के साथ मैं, यानी आपकी रेडियो दोस्त करिमा शाक, के आपसे लेती हूँ विदा। अपना ख्याल रखिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए और पानी बचाने का संकल्प आज ही लीजिए। और अंत में एक ये गीत सुनते जाइए।

अभी आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 12 बजने को है, समय है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
3: और मैं हूं आपका साथी अजीत। नमस्कार। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा से अधिक शक्तिशाली कोई और माध्यम नहीं है जिसने मानवता और पूरे विश्व का उपकार किया है। अच्छी शिक्षा ही हमें सही अर्थों में मानवता सिखाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। श्रोताओं, इस संदर्भ में मुझे महान भौतिक विज्ञानी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रसिद्ध कथन याद आता है। उन्होंने कहा था,
2: शिक्षा केवल कुछ तथ्यों को याद करना नहीं है, लेकिन ये मन और मस्तिष्क को नवाचारी ढंग से सोचने के लिए विकसित करना है।
3: जी, तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
3: और संबलपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से भागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देश दीप दास।
2: गाँव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी एवं अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। 1 अप्रैल 2026 के कार्यक्रम में सुश्रुत के जीवन एवं उपलब्धियों के साथ साथ यमुना नदी के उद्गम और बकरवाल जनजाति के जीवन पर दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। भविष्य में भी ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की हमें आपसे अपेक्षा है।
2: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की।
2: कल हमने बुनियादी जानकारी ली थी सागर और महासागर की और इनके बीच के अंतर को जाना था। आज जानेंगे एक और रोचक बात। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को बताइए न कि वो रोचक बात क्या है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे।
3: विमलेश जी, बहुत पहले इसी कार्यक्रम में मैंने अपना संस्मरण बताया था, आपको याद होगा
2: जी।
3: और वो ये था कि जब मैं पहली बार चेन्नई के समुद्री तट मरीना बीच पर गया था तो समुद्र की विशालता को देखकर मैं चकित रह गया था। लेकिन आपको याद तो जरूर होगा कि मैंने वहाँ क्या किया था सबसे पहले।
2: अजीत जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने सबसे पहले समुद्र के पानी को चखा था।
3: जी, आपको बिल्कुल याद है। पाठ्य पुस्तकों में तो पढ़ा था कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया था।
2: तो फिर क्यों ना आज चर्चा की जाए कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है।
3: अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली विमलेश जी। तो फिर आइए सबसे पहले जाने की शुरुआत कहाँ से होती है।
2: शुरुआत होती है वर्षा से। वर्षा का पानी जब धरती पर गिरता है, ये पानी मिट्टी और चट्टानों के संपर्क में आता है
3: जी।
2: मिट्टी और चट्टानों में कई प्रकार के खनिज होते हैं जो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं। मुख्य खनिज है सोडियम क्लोराइड।
3: जी जी, नमक का रासायनिक नाम भी सोडियम क्लोराइड ही तो है।
2: बिल्कुल। फिर होता ये है कि वर्षा का जल या भूमिगत झरनों का जल बहता हुआ नदियों में मिल जाता है। नदियाँ इन घुले हुए खनिजों को बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं। सैकड़ों नदियाँ यदि अपवाद छोड़ दें तो समुद्र में ही मिलती हैं।
3: तो फिर इस तरह हर दिन, हर घंटे, हर मिनट थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक समुद्र में जमा होता रहता है।
2: बिल्कुल।
3: अब विमलेश जी, हम बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रक्रिया कोई एक दो दिनों की तो होती नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है ना।
2: जी जी जी, फिर तो जाहिर है कि लाखों करोड़ों वर्षों में नदियों ने कितना नमक समुद्र में जमा कर दिया होगा। चलिए अब एक दूसरे आयाम को समझते हैं। दूसरा आयाम है वाष्पीकरण।
3: तो दूसरे आयाम को जरा आप ही विस्तार से समझाइए।
2: जी जरूर। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक नहीं उड़ता, नमक वहीं रह जाता है। एक उदाहरण देती हूँ
3: जी।
2: यदि आप किसी बर्तन के पानी में नमक घोलकर उस पानी को गर्म करें तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन नमक वहीं रह जाएगा। यही प्रक्रिया समुद्र में भी होती है।
3: विमलेश जी, श्रोताओं को बता दें कि एक और भी बहुत बड़ा कारण है
2: जी
3: समुद्र के पानी के खारा होने का।
2: बताइए।
3: और वो ये है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और पानी के अन्य स्रोत भी तो होते हैं
2: जी,
3: जो पानी में

0: नमक मिलाते हैं, यानी नमक सिर्फ नदियों से ही नहीं लेकिन समुद्र के अंदर से भी आता है।
1: जी ये बात तो है, लेकिन अजीत जी मेरे मन में एक और प्रश्न है, वो ये है कि इस प्रकार तो नमक बढ़ता ही रहेगा, फिर पानी कहाँ बचेगा, वो तो नमक का गाढ़ा घोल बन जाएगा, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ।
0: वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने विमलेश जी, यही तो कमाल है प्रकृति का। दरअसल होता यह है कि कुछ नमक समुद्री जीव उपयोग कर लेते हैं, जैसे कोरल, और कुछ नमक समुद्र की तलहटी में ही रह जाता है।
1: जी
0: तभी तो समुद्र में नमक की मात्रा में संतुलन बना रहता है।
1: जी सचमुच अद्भुत है प्रकृति। इस संतुलन को आंकड़ों में ऐसे समझना चाहिए कि औसतन समुद्र के पानी में 3.5% नमक होता है, यानी 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम नमक।
0: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी।
1: जी
0: तो श्रोताओ, अब ये भी जानिए, श्रृंखला में आज की चर्चा हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है कि आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है द स्मार्ट मंकी।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से एक बंदर की मजेदार गतिविधियों के बारे में बताते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और विशेषकर कूड़े के समुचित निपटान की चर्चा की गई है।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. The monkey had a banana. He peeled the banana and ate it. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. They threw the packet down. Then they drank the juice and threw down the bottle. Just then, the monkey climbed down the tree with the banana peel. There was a dustbin nearby. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Farida and Anju saw this and felt ashamed. They picked up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin. Have you seen people throwing packets or bottles in the park or on the road? Talk about it. After having biscuits, what do you do with the wrapper? Is there a dustbin in your school? Do you know where it is?
0: The Smart Monkey. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Artist, Farhan Ali.

नकवी, रिकॉर्डेड बाय संगीत कुमार, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन जगबंधु जाना, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय अजीत होरो। डियर लिसनर्स, इफ यू वांट टू गिव योर फीडबैक ऑन आवर प्रोग्राम, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर IVRS नंबर 8800440559. We may be contacted as well on our email address. Our email address is audio@ciet.nic.in. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं चंचल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: राग देसी।
1: राग रस पर से श्रृंखला के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में राग देसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे राग देसी की व्युत्पत्ति, थाट, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में।

इसके आरोह में गंधार और धैवत यानी ग और ध ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर पंचम यानी प है और संवादी स्वर ऋषभ यानी रे है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग देसी के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए

राग देसी। राग देसी की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद अर्थात कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी कभी इसमें कोमल धैवत अर्थात कोमल ध का प्रयोग कर लिया जाता है।

राग देसी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग देसी की स्वर मालिका की स्थाई

अभी आपने राग देसी की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है आजादी का ध्वज लहराया। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: तो श्रोताओ, अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम नए तराने का।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म गजनी से श्रेया घोषाल और बेनी दयाल की आवाजों में। प्रसून जोशी की शब्द रचना थी, एआर रहमान की संगीत रचना। अगला गीत है सलीम मर्चेंट की आवाज में फिल्म लक से। सलीम सुलेमान की धुन पर बोल है शबीर अहमद के।

शफकत अमानत अली और अर्पिता चक्रवर्ती के युगल स्वरों में ये गीत था फिल्म सत्याग्रह से। प्रसून जोशी की रचना को संगीत से सवारा था सलीम सुलेमान ने। अगला गीत है फिल्म तुम मिले से के आवाज़ में। सईद कादरी के बोल हैं प्रीतम की धुन।

0: महालक्ष्मी अय्यर को आपने सुना फिल्म 1920 इविल रिटर्न्स में। शकील आजमी के शब्दों को संगीत में ढाला था चिरंतन भट्ट ने। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है फिल्म रॉकस्टार से मोहित चौहान और कार्तिक की आवाजों में एआर रहमान की धुन है।
1: प्लैटिनम रिकॉर्ड शहर टेक वन।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोडनकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। इससे पहले असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की आधिकारिक सूची सौंपी। हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीट जीतकर निर्णायक जनादेश प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार कराने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई है। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुइसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमेरिका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि पूरी दुनिया को

0: कहा कि पूरी दुनिया को एक खानदान के तौर पर जोड़ने का जज्बा हिंदुस्तानी सकाफत में शामिल है, लेकिन हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत किसी पर हमला करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजिक और अंदरूनी ताकत में इजाफा नहीं कर रहा, बल्कि तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि कोई हमारी सकाफत को मजबूरी न समझे।
1: आज हम अपनी सामरिक और आंतरिक शक्ति को इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें किसी पर आक्रमण करना, अपितु इसलिए कि हमारी उदारता को कोई हमारी व्यवस्था न समझे। राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह सामर्थ्य हमेशा अनिवार्य है। समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं आती, इसके लिए सुरक्षा, स्थिरता और सामर्थ्य का मजबूत आधार उतना ही आवश्यक भी होता है।
0: 4 मई को शुरू होने वाले इस प्रोग्राम का इफ्तिताह वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया था, जबकि कल इस प्रोग्राम में वजीर मुमलकत बराए दिफा संजय सेठ शामिल हुए। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का सेहरा दिफाई अफवाज की बेमिसाल हिम्मत और अज्म को करार दिया, जिसे मकामी तौर पर तैयार करदा जदीद तरीन हथियारों और निजामों से मजीद तकवीत मिली। इससे कबल वजीर आला अपने एक रोजा दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक निजी प्रोग्राम में शिरकत की और बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने कल मुफादे आमा में कई अहम फैसले लिए। काबीना ने मुल्क में कपास के शोबे में रुकावटों, गिरती हुई तरक्की और मियार के खदशात को दूर करने के लिए 5,600 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ कपास की पैदावारी मशीन को मंजूरी दी। नई दिल्ली में काबीना की मीटिंग के बाद इतलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने की मुनासिब और मुआवजा कीमत 365 फी क्विंटल मुकर्रर की गई है। काबीना ने इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के 5वें मरहले को भी मंजूरी दी। इस स्कीम के तहत छोटी, बहुत छोटी, दरमियाना सनतों को 100% लोन गारंटी फराहम की जाएगी, जबकि नॉन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजर और एयरलाइन सेक्टर को 90% गारंटी फराहम की जाएगी। इत्तलात और नशियात के वजीर जनाब वैष्णव ने बताया कि काबीना ने सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद तरमीमी बिल 2026 को पार्लियामेंट में पेश करने की तजवीज को भी मंजूरी दी है। काबीना ने नागदा मथुरा और बुड़वल सीतापुर के दरमियान तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को भी मंजूरी दी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी काबीना के मुफादे आमा के फैसलों का खैर मकदम किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दौरे के दूसरे दिन आज गोरखनाथ मंदिर मुनक्कदा जनता दर्शन के दौरान लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। जनता दर्शन में संगीन बीमारियों के इलाज पर भी बात की गई। उन्होंने जनता दर्शन में आने वाले लोगों से आयुष्मान कार्ड के बारे में संगीन बीमारियों के इलाज के लिए माली मदद की दरखास्त की और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत इलाज की फराहमी मुकम्मल तौर फराहम करेगी। वजीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर जरूरतमंद और अहल शख्स के पास आयुष्मान कार्ड मौजूद रहे, ताकि उन्हें इलाज कराने मुश्किल का सामना न करना पड़े। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के रियासती सतह के शिक्षा मित्र एजाज तकरीब में शिक्षा मित्रों को एजाज से नवाजा और उन्हें उनके बढ़े हुए एजाजिया के लिए चेक पेश किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प ने स्कूलों की हालत बदल दी है। स्कूल छोड़ने की शरह को 19 से कम करके 3% कर दिया। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने शिक्षा मित्रों को सालाना 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ कवर फराहम करने का फैसला किया है। रियासत के कई अजला में कल शिक्षा मित्र एजाज की तकरीब भी मुनक्कद की गई। आगरा मुनक्कद इसी तरह के एक प्रोग्राम में मरकजी वजीर मुमलकत प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्राइमरी तालीम हमारी बुनियाद है। गाजीपुर में कोडिंग खांसी के सीरे से मुतालिक मुंशियात की स्मगलिंग के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। गुज़िश्ता रोज 2 मुलजमान ने खुद को अदालत में पेश किया। एनडीपीएस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रत्नाकर दुबे ने तस्दीक की कि मुलजिम राहुल यादव और दयाराम सिंह ने अदालत में खुद सुपुर्दगी कर दी। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के संगीन दफात के तहत कार्रवाई की जा रही है और कुर्की का अमल भी शुरू हो चुका था। गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में तकरीबन 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। रियासत में 2027 की मरदमशुमारी कल से शुरू होगी। ये डिजिटल मरदमशुमारी जो पहली बार की जा रही है, लोगों को खुद गिनती करने की इजाजत देगी, जिससे वो घर बैठे मरदमशुमारी के फॉर्म भर सकेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के कई अजला में आज तेज बारिश, गरज चमक के साथ और तेज हवाएं चलने की पेशेंगोई की गई है। दरियास्ता वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को सख्त हिदायत जारी की है कि कुदरती आफात से मुतासिर अफराद को 24 घंटे के अंदर इमदादी रकम फराहम की जाए। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को फील्ड में रहने और राहत और बचाव कामों की मुसलसल निगरानी करने की हिदायत दी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 401.6
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ये

सुन रही मेरी सभी श्रोता बहनों को आपकी वाणी से ही शिवांगी दुबे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता बहनों, जीवन में कुछ पेशे ऐसे होते हैं जो केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और संवेदनाओं की मिसाल बन जाते हैं, और उन्हीं में से एक है नर्सिंग। तो चर्चा में आज हम बात करेंगे नर्सिंग सिर्फ पेशा नहीं, सेवा भावना। क्योंकि आज है बहनों राष्ट्रीय नर्स दिवस और राष्ट्रीय नर्स सप्ताह का पहला दिन। राष्ट्रीय नर्स सप्ताह 6 मई से शुरू होकर 12 मई तक समाप्त होता है, जो कि आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन भी है। बहनों, जब भी हम अस्पताल का नाम सुनते हैं ना, तो डॉक्टर के साथ साथ एक और चेहरा हमारी आंखों के सामने आता है, और वो होता है नर्स का चेहरा। सफेद आसमानी, नीली तो कहीं जामुनी पोशाक, चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान और हर पल मरीज की देखभाल के लिए। बहनों, नर्सिंग को आमतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण काम माना जाता है, लेकिन ये केवल काम नहीं, या ये सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं, या एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके काम में के साथ साथ धैर्य, समझदारी और इंसानियत की भावना का समावेश होता है। वे ना सिर्फ डॉक्टर की बताई बातों का ध्यान रखती हैं, बल्कि मरीज की हालत पर लगातार नजर भी रखती हैं। और मरीज को मानसिक रूप से मजबूत बने रहने का हौसला भी देती है। कई बार जब मरीज अपनी अपनों से दूर होता है, तब नर्स ही उनका सहारा बन

और मरीज को मानसिक रूप से मजबूत बने रहने का हौसला भी देता है। कई बार जब मरीज अपनों से दूर होता है तब नर्स ही उनका सहारा बन भावनात्मक तौर पर मरीज का ढांढस बंधाती है। इस तरह नर्सिंग सिर्फ एक काम नहीं, कोई साधारण पेशा नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का सच्चा रूप बन जाता है। बहनों, आज के दौर में जब स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बदल रही हैं, वहां नर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। तो आइए हम सभी नर्सों के सेवा भाव और समर्पण को दिल से सलाम करें, क्योंकि दिन की भीड़भाड़ या शोर से भरा अस्पताल हो या रात के सन्नाटे में पूरा अस्पताल शांत हो, तब भी एक नर्स जाग रही होती है किसी की देखभाल में, किसी की उम्मीद बनके। तो चलिए सभी नर्सेस को दिल से सलाम करते हैं। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

बहनों, घर संसार के इस विशेष सेगमेंट मेरी माटी मेरा देश में आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे महान जननायक को जिनकी आज पुण्यतिथि है और जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपने कर्मों से समाज में समानता, शिक्षा और न्याय की एक मजबूत नींव रखी। जी हाँ बहनों, वे महान जननायक थे छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज केवल कोल्हापुर रियासत के शासक ही नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी समाज सुधारक भी थे। उन्होंने उस समय समाज की सच्चाई को समझा जबकि लोग समझते भी नहीं थे, जब जाति और भेदभाव के कारण कई लोग अपने अधिकारों से वंचित थे। सोचिए, ऐसे समय में एक राजा खड़ा हुआ हो उन लोगों के लिए।

0: जिनके लिए कोई खड़ा न होना चाहता हो। ऐसे समय में साहू जी महाराज ने आगे बढ़कर कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने शिक्षा को हर व्यक्ति का अधिकार माना और इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। उन्होंने स्कूलों, छात्रावासों की व्यवस्था करवाई ताकि गरीब परिवार के बच्चे भी वहां रहकर पढ़ लिख सकें और अपना जीवन बेहतर बना सकें। इतना ही नहीं बहनों, उन्होंने उस दौर में वंचितों की दशा को समझते हुए समाज में बराबरी लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की, जो कि उस समय एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। उनका मानना था कि जब तक समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश की प्रगति अधूरी ही रहेगी। बहनों, छत्रपति साहू जी का जीवन ना सिर्फ हमें प्रेरणा देता है, बल्कि सिखाता है कि सच्ची महानता सिर्फ सत्ता में नहीं बल्कि सेवा में होती है। उन्होंने अपने पद और अधिकार का उपयोग हमेशा समाज के कमजोर लोगों के हित में किया और यही उन्हें सच्चा जननायक बनाता है। तो चलिए, आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरी माटी मेरा देश के महान जननायक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हैं। ये थी बात हमारे ऐसे महान जननायक की। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं और करते हैं थोड़ी और बातें, पर पहले हम एक कहानी सुनेंगे। बहनों, हर कहानी ना अपने भीतर एक सीख छुपाई होती है और कुछ कहानियां तो ऐसी होती हैं जो दिल को छू लेती हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी। पुरस्कार और कहानीकार हैं डॉक्टर निशीथ गौड़।
1: आज स्नेहा को संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था। संगीत की दुनिया में कितनी ऊंचाइयों को उसने छू लिया था। लोगों से घिरी हुई वह बधाइयां लेती जा रही थी, किंतु फिर भी मन ही मन अत्यंत तन्हा और दुखी महसूस कर रही थी। जो खुशी आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद होनी चाहिए, वह नहीं थी। इसका कारण था स्नेहा के पिता का उसके साथ न होना। अभी मात्र एक महीने पहले ही तो वह उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से दूर किसी दूसरी दुनिया में चले गए थे। मां का साया तो जब वह बहुत छोटी थी तभी उठ गया था। बस मां की कुछ धुंधली सी यादें यदा कदा दुख दे जाती थी, पर पिता के इतने अधिक प्यार ने उस दुख को भर दिया था। पिता ने बाल्यकाल से ही नृत्य और संगीत में स्नेहा की रुचि देखकर उसकी नृत्य की शिक्षा मात्र 5 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ कर दी थी। कुछ वर्षों के अभ्यास से ही वह नृत्य और संगीत में पारंगत हो गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार उसे मिलने लगे थे। कितना खुश रहती थी अपनी इस छोटी सी दुनिया में। 20 दिसंबर की ठिठुरन भरी रात वह कैसे भूल सकती है, जब पिता के साथ एक संगीत प्रतियोगिता में प्रतिभागिता हेतु जा रही थी। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। ट्रेन के आते ही भगदड़ सी मच गई। भीड़ की धक्का मुक्की में वह स्टेशन से नीचे ट्रेन की पटरियों पर गिर गई थी। जब उसे होश आया तो सामने पिता थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जीवन मृत्यु से जूझती उनकी बेटी ने मृत्यु को हरा दिया था और उसे एक नया जीवन मिला था। पिता ने स्नेहा को ढांढस बंधाया, पर यह क्या, जब उसने अपना दाहिना हाथ उठाना चाहा तो वह अवाक रह गई। उसका एक हाथ और एक पैर दोनों ही ट्रेन की गिरफ्त में आ जाने से कट चुके थे। वह फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा जीवन ईश्वर ने उसे क्यों दिया, उसे मृत्यु क्यों नहीं दी। वह पूरी तरह टूट गई थी, बस मरना चाहती थी।

अभी तो मात्र 19 वर्ष की थी। पूरा जीवन एक हाथ और एक पैर से कैसे कटेगा? किंतु पिता के हिम्मत भरे वचन और आशावादिता ने उसमें उत्साह का संचार किया। धीरे धीरे उसके जख्म भरने लगे। पिता ने स्नेहा को अपनी संगीत और नृत्य की साधना को बनाए रखने की कहा, पर यह कैसे संभव था? बेहद कष्टों वाला जीवन अब शुरू हो चुका था। वह किसी की सहानुभूति और दया का पात्र बनना नहीं चाहती थी। कितने वर्ष लगे उसे अपने पैरों पर खड़े होने में, खुद से लड़ने में। पग पग पर पिता का सहारा मिला। अब उसका दाहिना हाथ स्वयं उसके पिता थे, जिसने उसकी हिम्मत कभी न टूटने दी। पिता ने स्नेहा के सामने कभी स्वयं को कमजोर नहीं दिखाया। पिता की हौसला अफजाई से ही उसने नृत्य की शिक्षा पुनः प्रारंभ की, क्योंकि अभी जीवन का अंत कहां हुआ था, अभी तो बहुत लंबा जीवन था। कुछ वर्षों की साधना में ही वह पुनः नृत्य कला में दक्ष हो गई। कंठ तो सुरीला था ही, अब उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ नृत्य व संगीत था। जीवन के ये 11 वर्ष कड़ी मेहनत के बीते। उसने कभी भी स्वयं को कमजोर नहीं पड़ने दिया। इतने वर्षों की मेहनत रंग लाई और उसे संगीत प्रवक्ता के पद पर नौकरी मिली। पिता का सपना साकार हो गया था, परंतु स्नेहा के कदम अब रुकने वालों में नहीं थे। वह तो संघर्षों की अग्नि में तपकर कुंदन बन गई थी। उसे तो अभी बहुत आगे बढ़ना था। संगीत और पिता के अतिरिक्त उसके जीवन में कोई दूसरा न था। आसपास के क्षेत्रों में भी उसकी ख्याति फैलती जा रही थी। दिव्यांग होने के बावजूद उसकी गति निरंतर बढ़ती जा रही थी। लोग अब उसके प्रति दया नहीं, वरन उसकी मिसाल देते थे। दूसरों पर बोझ बनने की जगह वह अनाथ, बेसहारा और दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देती थी। उनकी आर्थिक रूप से सहायता भी करती थी और इन्हीं कार्यों में उसे बेहद खुशी मिलती थी। जहां लोग शरीर के समस्त अंग होने पर भी अपने जीवन को कोसते हैं, आलस्य में समय गंवाते हैं और जीवन से निराश हो आत्महत्या तक कर लेते हैं, वहीं अपने सद्गुणों के कारण स्नेहा सभी की प्रिय थी। पिता अब अस्वस्थ रहने लगे थे। उन्हें कैंसर हो गया था। वह चाहते थे कि स्नेहा का विवाह हो जाए, पर स्नेहा ने तो विवाह नहीं करने की कसम खाई थी। पिता को कष्टों में अकेला छोड़कर वह कहीं जाना नहीं चाहती थी। पिता के लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। और आज जैसे ही उसे पता चला कि संगीत अकादमी पुरस्कारों में उसके नाम का भी चयन हुआ है, वह कितनी खुश थी और अपनी यह खुशी सबसे पहले पिता के साथ बांटना चाहती थी। परंतु ज्यों ही वह घर पहुंची, घर के बाहर लगी भीड़ को देखकर वह डर सी गई। स्वयं को संभालती हुई जब अंदर पहुंची तो देखा पिता उसे अकेला छोड़ चले गए थे। इतने बड़े संसार में वह नितांत अकेली हो गई थी। पता नहीं विधाता उसकी इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहा था। अभी तो सुख के दिन शुरू ही हुए थे, कितनी खुशियां पिता के साथ बांटनी थी। परंतु विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। बीच मंझधार में अकेला छोड़ वह तो चिरनिद्रा में सो गए थे। पर अब तक स्नेहा को पिता ने साहसी बना दिया था। उसे अब किसी प्रकार की बैसाखियों की कोई

0: आवश्यकता नहीं थी। उसे अब दूसरों को सहारा देना था। समाज में ऐसे कितने असहाय, अनाथ, बेसहारा, गरीब लोग हैं जो दूसरों पर ही आश्रित होते हैं। उनकी सुनी आंखें सदैव मदद की बाट जोहती रहती हैं। आज पुरस्कार हाथ में लिए स्नेहा पिता को बहुत याद कर रही थी और साथ ही यह संकल्प ले चुकी थी कि अपना शेष जीवन इन समाज से तिरस्कृत लोगों की सेवा में लगा देगी और वही उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा।
1: तो बहनों, जब हमारे अपनों का साथ हो और अपने अंदर जज्बा हो तो संघर्ष चाहे जितने भी क्यों ना आए, इंसान अपनी राह बना ही लेता है। बस हमें साहस के साथ बढ़ना होगा, मेहनत पर यकीन रख निरंतर बढ़ना होगा, खुद पर यकीन रख अपनी मंजिल तक चलना होगा। तो ये थी बहुत ही साहस से भरी कहानी पुरस्कार। अब सुनते हैं ये गीत।

0: चलो बहनों, अब बात करते हैं बात पति की, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिन की जो हमें हमारे शरीर को समझने और स्वीकारने का संदेश देता है। इंटरनेशनल नो डाइट डे। आज 6 मई इंटरनेशनल नो डाइट डे, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि फिट रहना जरूरी है, लेकिन खुद को तकलीफ देकर नहीं। बहनों, आजकल हम सब फिट होने से ज्यादा फिट दिखने की दौड़ में कहीं ना कहीं उलझ गए हैं। सोशल मीडिया, विज्ञापन और दूसरों से तुलना, ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमें खास तरह का ही दिखना चाहिए। 0 से 9 तक की संख्याओं को लोग याद कर चुके हैं। 0 से 9 की संख्याओं को भूल लोग 0 फिगर की तरफ भागने लगे हैं, और इसी चक्कर में हम सख्त डाइटिंग शुरू कर देते हैं। खाना छोड़ना, बार बार खुद को रोकना, या बिना जरूरत के जबरन वजन घटाने की कोशिश करना। लेकिन सच ये है कि हर शरीर अलग होता है और हर किसी की ज़रूरत भी अलग होती है। ये दिन हमें सिखाता है कि सेहत का मतलब सिर्फ पतला होना नहीं है, सेहत का मतलब है संतुलित खाना, सही दिनचर्या और अपने शरीर के प्रति अच्छा नज़रिया। खुद को बार बार आंकने के बजाय खुद को अपनाना ज़्यादा ज़रूरी है बहनों। तो चलिए, डाइट के नाम पर खुद के साथ ज़्यादती के बजाय समझदारी से खाना और खुश रहना शुरू करते हैं। तो ये तो थी बात पते की, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। बहनों, कुछ तुम कहो कुछ हमें आज का विषय बहुत आम भी है और बहुत खास भी। हम सब दिन की शुरुआत और अंत मोबाइल से करते हैं, लेकिन एक सवाल मन में उठता है, क्या सोशल मीडिया हमें एक दूसरे के करीब ला रहा है या फिर धीरे धीरे हमें संवेदनहीन बना रहा है? इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रगति जी। मैम, आपकी नजर में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर क्या है, सकारात्मक या नकारात्मक?
1: दोनों ही है। सकारात्मक इसलिए कि आज की महिलाएं अपनी आवाज खुलकर रख पा रही हैं,
2: जी,
1: अपनी पहचान बना पा रही हैं। लेकिन नकारात्मक ये है कि हम रील्स में हंस तो लेते हैं, पर सामने बैठे इंसान के दर्द को महसूस करना भूलते जा रहे हैं।
2: जी,
1: लाइक्स और कमेंट्स की दौड़ में संवेदनाएं कहीं पीछे छूट रही हैं।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लाइक्स और कमेंट्स की दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपनी संवेदनाओं को भूलते जा रहे हैं। अच्छा मैम, कई बार देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन घर परिवार में चुप रहते हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
1: ये आज की सबसे बड़ी विडंबना है। हम स्टेटस में रिश्तों पर लंबी बातें लिख लेते,
2: जी,
1: पर असल रिश्तों से बात करने का वक्त नहीं निकालते। बच्चे माँ बाप के साथ बैठे हैं, लेकिन सबकी नज़र स्क्रीन पर है, यहीं से संवाद टूटता है और दूरी बढ़ती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्या समाधान ये है कि सोशल मीडिया से दूरी बना ली जाए?
1: दूरी नहीं, संतुलन जरूरी है। सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, हम उसके हाथ में नहीं होने चाहिए। अगर हम तय करेंगे कि कब फोन रखना है और कब अपनों को समय देना है, तो तकनीक भी हमारी साथी बन सकती है।
2: बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं की भूमिका को आप यहाँ कैसे देखती हैं?
1: महिलाएं घर की पहली गुरु होती
2: हैं।
1: अगर माँ खुद मोबाइल से ज्यादा बच्चों को अहमियत दे, अगर वो बच्चों को सिखाए कि सिर्फ पोस्ट नहीं, व्यवहार भी खूबसूरत होना चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी ज्यादा संवेदनशील होगी।
2: बिल्कुल, और बहुत ही सार्थक बात है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसमें खो जाना जरूर नुकसानदेह है। जरूरत है स्क्रीन से नजर हटाकर एक दूसरे की आंखों में देखने की। इसी संदेश के साथ आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं।
0: पर बहनों, मुझे कुछ कहना है। जी हाँ, मुझे कुछ कहना है कि आज के अंक में आज मैं आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात साझा करना चाहती हूँ, और वो बात कुछ यूं है कि दूसरों की भी सुने। बहनों, हम सब अपनी बात कहना तो जानते हैं, लेकिन क्या हम उतने ही ध्यान से दूसरों की बात सुन पाते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमारे सामने अपनी बात रख रहा होता है, तो हम सच में सुनने के बजाय अपना जवाब सोच रहे होते हैं, मगर धीरे धीरे ये आदत रिश्तों में दूरी पैदा कर लेती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उस

से समझा जाए, उसे सुना जाए। किसी को ध्यान से सुनना उसे सम्मान देने जैसा होता है। ये बताता है कि उसकी बात हमारे लिए कितनी मायने रखती है। कई बार केवल सुन लेने भर से ही समस्या का आधा हल निकल आता है, क्योंकि सामने वाला खुद को हल्का महसूस करता है और उसे ये एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। होता है ना, जब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई ऐसा हो जो हमें सिर्फ एक बार ढंग से सुन ले। कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई तो ऐसा दोस्त हो, कोई हमारे साथ हमारा परिवार का व्यक्ति हो जो हमारी बात सिर्फ सुन ले और हमारा मन हल्का हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों को भी सुने। जैसे हम चाहते हैं कि कोई हमें सुने, ऐसे ही हमें भी दूसरों को सुनना चाहिए। बहनों, अगर हम अपने घर परिवार में, दोस्तों के बीच या काम की जगह थोड़ा धैर्य रखकर एक दूसरे को सुनना शुरू कर दें, तो बहुत सी गलतफहमियां अपने आप खत्म हो सकती हैं। तो आज से एक छोटी सी कोशिश करते हैं, सिर्फ अपनी बात कहने की नहीं बल्कि दूसरों को भी पूरे मन से सुनने की। तो ये तो थी बातें आज की। मुझे भी आपसे कुछ कहना है, मैं इतनी ही। अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो बहनों, जैसा कि मैंने कहा कि अच्छे रिश्तों की शुरुआत अच्छी सुनने की आदत से ही होती है, तो सिर्फ अपनी बात कहने की नहीं बल्कि दूसरों की भी पूरे मन से सुनने की छोटी सी कोशिश हमें करनी ही है। चूंकि अब हमारी घड़ी में समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो मैं हूं आपकी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे, आपसे लेती हूं विदा। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। श्रोताओं, आप समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उधास की आवाज में कुछ गजलें। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

पंकज उदास की गाई इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, तत्पश्चात हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। यह हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
2: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्यागपत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद।

0: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
1: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
0: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेदरी कड़गम टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। यह निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियोर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिमोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
3: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लीपुरोती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर 2 विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया।

0: उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों स्थानों पर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था।
1: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आईएसआई की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। एक एफआईआर रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ, ते इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि यह पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमरीका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सा उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने त्यागपत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। समय है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जगदीश प्रसाद का राग पहाड़ी में ठुमरी गायन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित जगदीश प्रसाद का राग पहाड़ी में ठुमरी गायन। कार्यक्रम की अगले और अंतिम प्रस्तुति में आइए सुनते हैं पंडित जगदीश प्रसाद का राग खमाज में ठुमरी गायन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित जगदीश प्रसाद का राग खमाज में ठुमरी गायन। इसी के साथ कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना फिल्म आदमी से, संगीत नौशाद का था। अगला गीत है फिल्म आरती से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर है। रोशन की धुन पर बोल है मजरूह सुल्तानपुरी के।

लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत था फिल्म आंखें से। साहिर लुधियानवी की रचना को संगीतबद्ध किया था रवि ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम

0: सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम गीत गुंजन का।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म बेवफा से, अलका याग्निक, कुमार सानू और सपना मुखर्जी की आवाजें थीं। समीर के बोल थे नदीम श्रवण की धुन। अगला गीत है फिल्म जानशी से, अलका याग्निक और सोनू निगम की युगल स्वर है, प्रवीण भारद्वाज की शब्द रचना है, आनंद राज आनंद की संगीत रचना।

लता मंगेशकर और कुमार सानू के युगल स्वर थे, जतन ललित की धुन पर बोल थे आनंद बख्शी के। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। अगला गीत हमने लिया है फिल्म आंखें से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं। प्रवीण भारद्वाज के शब्दों को संगीत में ढाला है जतन ललित ने।

के की आवाज़ में ये गीत था फिल्म जिस्म से। एम करीम की धुन पर बोल थे सईद कादरी के। इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायकालीन सभा के प्रसारण के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

0: और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। उन्होंने कहा कि औषधि प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन के बाद वियतनाम में भारत की दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत की कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। जापान की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओनोडा केमी ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: और खेलों में, आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

यह होगा किसान उदय योजना। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार करहाना से अनिंद्र सिंह की बातचीत। भेंट वार्ता का विषय होगा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की उपयोगिता। लोकगीतों के साथ लीजिएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 5:05 हो चुके हैं। वक्त है आज के कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण का।

हमारे सभी श्रोता 5:10 पर आनंद ले सकेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का। 5:30 पर आप सुन पाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी चर्चा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA पर। साथ ही आप सुनेगा चारू अग्रवाल से वार्ता, पुस्तकों से दोस्ती है आवश्यक। शाम 6:00 हमारे किसान भाई सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्रामीण लोक, जिसमें चर्चा का विषय

साय 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा मोतीलाल नेहरू का प्रेरक व्यक्तित्व। साथ ही आप सुनेंगे साहिल तनेजा से वार्ता, स्क्रीन टाइम के बढ़ते दुष्प्रभाव। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे अपूर्वा शर्मा से बच्चों के विकास के लिए जरूरी है सहज व्यवहार पर वार्ता। शाम के 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

रात्रि 8 बजे आप सभी आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक और अनेक का। और 8:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात के 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रैन 10 बजे आकाशवाणी आगरा से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे राजेंद्र प्रसन्ना से राग मारवा में बांसुरी वादन।

श्रोताओं, अभी आपने आज की सायकालीन सभा के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुना। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। रेडियो की इस पावन तरंग पर आपका स्वागत है। श्रोताओं, आइए अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करते हुए ईश्वर के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करें। इसी भाव के साथ हम आरंभ कर रहे हैं आज का सुर संध्या कार्यक्रम, जहां संगीत, भक्ति और शांति एक साथ प्रवाहित होंगे।

गाना का नाम लेते ही हृदय में असीम शांति और शक्ति का संचार होता है। गाना की भक्ति में डूबा मन हर दुख और भय को भूल जाता है। आप सुन रहे थे फिल्म लगान से, ये भक्ति रचना लता मंगेशकर, उदित नारायण एवं साथियों की आवाजों में, जिसको लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीता ए आर रहमान का। आइए सुनते हैं अगली भक्ति रचना, जो कि है फिल्म स्वदेश से, मधुश्री विजय प्रकाश आशुतोष की आवाज में, जिसको लिखा है जावेद अख्तर ने, उसमें संगीत है ए आर रहमान का।

रघुराई के चरणों में जब मन लग जाता है तो जीवन की हर कठिनाई सहज हो जाती है। रघुराई की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली रचना, जो कि है फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। आवाजें हैं सोनू निगम और सुखविंदर सिंह की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार अनु मलिक।

इसी भक्ति रचना के साथ ये कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो चुके हैं श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम युववाणी का।

होस्ट स्वाति यादव। आगे बढ़ने से पहले है आपके लिए एक सवाल। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? इसका जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक थोड़ा सोचिए, समझिए और विचारिए आखिर क्या है इसका जवाब। दोस्तों, अक्सर हम अखबारों और न्यूज चैनलों पर एक शब्द सुनते हैं, UAPA। इसे गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम कहा जाता है। आज की इस छोटी सी महफिल में इसकी गहराइयों को समझेंगे, क्योंकि एक जागरूक नागरिक के लिए कानून की समझ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ये कानून कोई नया नहीं है। इसकी नींव 1966 में ही रखी गई थी। शुरुआती दौर में इसका मकसद सिर्फ उन गतिविधियों को रोकना था जो भारत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता को चुनौती देती। लेकिन जैसे जैसे आतंकवाद का चेहरा बदला, कानून को भी बदलना पड़ा। साल 2004, 2008, 2012 और हाल ही में 2019 में हुए संशोधनों ने इसे भारत का सबसे शक्तिशाली एंटी टेरर कानून बना दिया है। दोस्तों, UAPA को अन्य कानूनों से अलग इसकी कुछ धाराएं बनाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां सामान्य मामलों में पुलिस 90 दिनों की चार्जशीट दाखिल करनी होती है, वहीं UAPA के तहत जांच एजेंसियों को 180 दिनों तक का समय मिल सकता है। इसका मतलब है कि आरोपी को बिना चार्जशीट के लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। युवाओं, आपको यह जानना चाहिए कि 2019 से पहले सरकार सिर्फ संगठनों को ही आतंकी घोषित करती थी, लेकिन अब सरकार किसी एक व्यक्ति को भी आतंकी घोषित कर सकती है।

वह आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है या उनका प्रचार करता है। साथ ही NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी को यह पावर दी गई है कि वह राज्य पुलिस की अनुमति के बिना भी संदिग्ध संपत्तियों को जब्त कर सकती है। अब सवाल उठता है कि इस पर इतनी चर्चा क्यों होती है। दरअसल इस कानून के तहत बेल मिलना बहुत कठिन होता है। कोर्ट तब तक जमानत नहीं दे सकता जब तक उसे यह यकीन ना हो जाए कि आरोपी निर्दोष है। यही कारण है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे व्यक्तिगत आज़ादी के खिलाफ बताते हैं, जबकि सरकार का तर्क है कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए ऐसे जीरो टॉलरेंस वाले कानूनों की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो UAPA राष्ट्रीय सुरक्षा की वो ढाल है जिसे बेहद असाधारण स्थितियों के लिए बनाया गया है। इसी के साथ अब चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं एक गीत।

0: दोस्तों, किताबें बेहतरीन दोस्त, मार्गदर्शक और एक नया संसार होती हैं। किताबें महज कागज नहीं, ज्ञान का आधार होती हैं। जो थाम ले इनका दामन, वो कभी तन्हा नहीं होता, क्योंकि पुस्तकें हर मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा हथियार होती हैं। तो आइए सुनते हैं वार्ता पुस्तकों से दोस्ती है आवश्यक, वार्ताकार चारू अग्रवाल से।
1: पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र की तरह होती हैं। इनसे दोस्ती करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपका दोस्त आपका साथ छोड़ सकता है, पर पुस्तकें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, बल्कि हमारे दुख में, सुख में, हंसी खुशी सभी में पुस्तकें एक सच्चा मित्र बनकर हमारा साथ निभाती हैं। पुस्तकें ना हमसे कभी कुछ मांगती हैं और ना ही किसी बात की शिकायत करती हैं, बल्कि ये हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। वह हमेशा अच्छी बातें ही सिखाती हैं। पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। यूं तो जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें हमारे मार्ग से हटाने व हमारा रास्ता भटकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। जब भी हम रास्ता भटकते हैं तो ये हमें रास्ता दिखाती हैं व हमें सही रास्ते पर ले जाती हैं। पुराने मंदिर, पुराना इतिहास सभी नष्ट हो जाता है, पर पुस्तकें हमेशा जीवित रहती हैं। पुस्तकें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। यह हमें अच्छा इंसान तो बनाती हैं, साथ ही अच्छे संस्कार भी प्रदान करती हैं। हम इसी के ज्ञान से अच्छे बुरे की पहचान करना जानते हैं। पुस्तकें हमारी जिंदगी भर साथ निभाती हैं, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती हैं, हमें सपने दिखाती हैं, वह उन्हें पूरा करने में मदद करती हैं। वह ये हमारे सपने को पूरा करने के लिए मेहनत के अलावा हमसे कुछ नहीं मांगती हैं। इसलिए तो सही मायने में पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। अक्षरों के इस संसार में जीना कितना सहज व सरल है, पर दुखद है कि आज किताबें पढ़ने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। भागदौड़ भरे जीवन में लोग पुस्तकालय जाना तो दूर, घर में रखी किताबें भी पढ़ना नहीं चाहते। छोटे बड़े सभी इंटरनेट, कंप्यूटर व टेलीविजन में खोए रहते हैं। पहले बाजार में कोई नई पुस्तक आती थी तो उसे पढ़ने व खरीदने के लिए होड़ लगी रहती थी। पुस्तकालय में पुस्तकों

0: पढ़ने के लिए लोग इंतजार करते थे। आज पुस्तकालय में कोने वाली टेबल सूनी है। गिने चुने लोग ही हैं जो वहां जाकर किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। माता पिता भी पहले पुस्तकें पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करते थे, पर आज वे कंप्यूटर व इंटरनेट की जानकारी देना पसंद करते हैं। सूचना व नई तकनीक से खुद को जोड़ना गलत नहीं, पर पुस्तकों से नाता जुड़ा रहे यह भी जरूरी है। पहले तो लोग स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे थोड़ी किताबें पढ़ भी लेते थे, लेकिन कोरोना काल के चलते स्कूल कॉलेज बंद हो जाने व ऑनलाइन क्लासेस में लोगों ने उनको भी पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब वह जो भी पढ़ना लिखना चाहते हैं वह या तो बस उतना ही पढ़ना पसंद करते हैं जितना उन्हें क्लास में बोला जाता है, या इंटरनेट की सहायता से पढ़ना पसंद करते हैं। उसके अलावा वह किताबों को खोलना भी पसंद नहीं करते हैं। इस कारण धीरे धीरे किताबें पढ़ने की बिल्कुल आदत छूटती जा रही है, या ये कहें छूट ही गई है, वह अब लोगों का मन केवल मोबाइल में ही लगा रहता है। इस आदत को छुड़ाने के लिए धीरे धीरे हमें मोबाइल से दूरी बनाकर पुस्तकों से दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही पुस्तकें हमें मनोवैज्ञानिक संबंध से भी जोड़े रखती हैं। वह जब व्यक्ति अकेला व परेशान होता है उस समय यह अधिक सहायता करती है। वह व्यक्ति को चिंता, तनाव, अकेलेपन में सहायता करती हैं, जिस कारण व्यक्ति मानसिक व शारीरिक दोनों ही रूप में स्वस्थ व तनाव फ्री रहता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए पुस्तकें पढ़नी चाहिए व मनोविज्ञान को समझने के लिए भी मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय की अपनी अहमियत है। इनमें करीने से रखी पुस्तकें पाठकों से बहुत कुछ बांटना चाहती हैं। पुस्तकालय तो बहुत से संस्थानों पर खुले हैं, पर कहीं की हालत ठीक नहीं है। कई पुस्तकालयों में स्थान व रख रखाव के अभाव में किताबें खराब हो रही हैं। ज्ञान के इस अनमोल खजाने को सहेजने की जरूरत है। जीवन से बड़ी बड़ी उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने वाली किताबों से दोस्ती करने की जरूरत है। घर पर माता पिता व स्कूलों में अध्यापक बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें तो बात बने। पुस्तकालय की हालत को सुधारने व पुस्तकों को सहेजने के लिए सरकार की तरफ से भी प्रयास हो। लोगों को पुस्तकें पढ़ने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इसलिए हम सभी को अपनी रुचि के अनुसार अच्छी पुस्तकों का चयन करके उन्हें पढ़ना चाहिए। वर्षों पहले किताबों में सहेज कर रखे सूखे फूलों को बयां करती कोई दास्तां जो आप जीवन की भूल भुलैया में भूल चुके हैं आपको बहुत कुछ याद दिलाएगी। सच है कि किताबें बहुत कुछ कहना चाहती हैं। जरा ठहर कर सुनिए तो सही।
1: दोस्तों अभी आपने सुनी वार्ता पुस्तकों से दोस्ती है आवश्यक, वार्ताकार चारू अग्रवाल से। आइए चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं प्रकृति के उस रौद्र नृत्य की जिसे हम बवंडर या टॉर्नेडो कहते हैं। अगर विज्ञान की गहराइयों में उतरें तो बवंडर केवल तेज हवा नहीं है, बल्कि यह वायुमंडल के गुस्से का एक चरम रूप है। यह तब बनता है जब आसमान में सुपर सेल नामक विशाल गजरने वाले बादल तैयार होते हैं। जब धरती की सतह के करीब बहने वाली गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और ऊपर मौजूद ठंडी हवा के दबाव से टकराती है, तो एक अदृश्य चक्री जैसा भंवर बनने लगता है। जैसे ही यह भंवर वर्टिकल होकर जमीन को छूता है, इसकी रफ्तार 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जो कंक्रीट की इमारतों को भी ताश के पत्तों की तरह ढहाने की ताकत रखता है। दोस्तों, दुनिया के कई हिस्सों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में टोर्नेडो की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जहां टोर्नेडो एली क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। इसका एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन को भी माना जा रहा है, क्योंकि बदलते तापमान और मौसम के पैटर्न से ऐसे चरम मौसमीय घटनाओं की संभावना बढ़ रही है। भारत में टोर्नेडो अपेक्षाकृत कम आते हैं, लेकिन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम जैसे पूर्वी राज्यों में कभी कभी इनके हल्के या मध्यम रूप देखने को मिलते हैं, जिससे यह साफ है कि हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से यदि कभी टोर्नेडो की चेतावनी मिले तो तुरंत किसी मजबूत इमारत के अंदर चले जाना चाहिए, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहना चाहिए और अपने सिर को किसी मजबूत वस्तु से ढकना चाहिए। खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या वाहन में रुकना बेहद खतरनाक हो सकता है। और अंततः बवंडर हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति जितनी सुंदर और आकर्षक है, उतनी ही शक्तिशाली और अप्रत्याशित भी है। इसीलिए हमें वैज्ञानिक समझ के साथ साथ सतर्कता भी बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो प्रकृति से गहरा लगाव रखती हैं और अपनी जड़ों से जुड़ने का संदेश देने वाली जर्नी टू रूट्स की सक्रिय मेंबर भी हैं। मिलिए सोनी से, जो न केवल एक युवा आवाज है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रेरणा का स्रोत भी हैं।

0: तो चलिए उनके विचारों और अनुभवों की इस दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं।
1: सोनी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि जर्नी टू रूट से आपका इतना ज्यादा जुड़ाव कैसे हुआ?
2: नमस्कार, जैसा कि आपने सवाल पूछा तो मेरा जर्नी टू रूट से जुड़ाव इस प्रकार हुआ कि मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा थी जहाँ पे जर्नी टू रूट्स की फाउंडर आत्मीय इरम, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उस दौरान हमने अपने सिमिलर इंटरेस्ट के आधार पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का प्लान करा। तो उसके चलते आत्मीय इरम जी को मालूम पड़ा कि मेरा वाइल्ड एडिबल प्लांट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो हमने कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे जर्नी टू रूट्स के लिए और काफ़ी सक्सेसफुली वो प्रोग्राम्स हमने करवाए। तो इस तरह मेरा जुड़ाव हुआ जर्नी टू रूट्स से।
0: जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि प्रकृति के प्रति आपका यह लगाव कब और कैसे शुरू हुआ?
2: ख्याल है कि प्रकृति के प्रति प्रेम के बीज तो बचपन में ही बो दिए जाते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। क्योंकि मेरे घर वाले तो आर्मी बैकग्राउंड से रहे हैं, तो हम अक्सर बहुत ही हरे भरे वातावरण में हमारी परवरिश हुई। तो मेरे दादी दादाजी की जब पोस्टिंग्स हुआ करती थी अलग अलग जगह पर, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधों को देखकर मेरा रुझान प्रकृति की तरफ और परिपक्व हुआ। भी जब से हम आगरा में हैं तब भी आर्मी एरिया में ही रहे हैं, तो वहाँ से इतने आसपास आपके जब पेड़ पौधे होते हैं तो मेरे ख्याल है कि आपका रुझान हो ही जाता है उनकी तरफ।
0: तो सही कहा आपने सोनी, प्रकृति के प्रति रुझान के बीच तो बचपन में ही बो दिए जाते हैं। अब आपसे हमारा अगला सवाल यह है कि जर्नी टू रूट संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें आपकी भूमिका क्या है?
2: जर्नी टू रूट्स ऑर्गेनाइजेशन 5 पिलर्स पे काम करती है, जिनमें पहला है वेलबींग, दूसरा एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, आर्ट एंड हेरिटेज और इक्वालिटी। और मेरा जो काम है वो एनवायरनमेंट सेक्शन पे होता है इसके। तो हम एनवायरनमेंट से जुड़ी वॉक्स करवा के लोगों को अवेयर करवाते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के पेड़ पौधों की जानकारी उनके बीच खो रही है। आज की जनरेशन का रुझान ब्रांड्स की तरफ और कहिए चमक धमक की दुनिया की तरफ ज्यादा है और प्रकृति की तरफ कम। तो हमारा काम इसी पिलर पे रहता है एनवायरनमेंट के अंदर।
0: वाह सोनी, आप काफी अच्छा काम कर रही हैं इस फील्ड में। आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि इस पहल के दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी और आपने उसे कैसे पार किया?
2: जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, हमसे जो नई जनरेशन है हमारे बाद की, उनके मनों में प्रकृति की तरफ वो सॉफ्ट कॉर्नर अब नहीं रहा है जो कि हमसे बड़ी जनरेशन में काफी था। हमारे से पहले की जनरेशन को मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानकारी हुआ करती थी, आज के जनरेशन में वो चीज कहीं ना कहीं खोती जा रही है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारी वॉक्स में भी ज्यादातर लोग जो आते हैं वो एल्डरलीज होते हैं और बच्चे कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि शायद पेरेंट्स को लगता है कि एनवायरनमेंट के बारे में वो सीखकर क्या ही करेंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि सिर्फ रोट लर्निंग पे ज्यादा एम्फसाइज दिया जाता है और ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज को भी वैल्यू अब नहीं मिलती, तो वही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है।
0: आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी के साथ हम आपसे अपना आखिरी सवाल पूछते हैं। आज के युवाओं के लिए प्रकृति से जुड़ने का क्या महत्व है और आप हमारे युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि यदि हम प्रकृति के बारे में जानकारी ही प्राप्त नहीं करेंगे, उस जानकारी को सजोकर ही नहीं रखेंगे, तो प्राकृतिक संरक्षण की बात ही नहीं आएगी। क्योंकि जिन चीजों को आप मायने ही नहीं देंगे, जिन चीजों को आप समझेंगे ही नहीं, आप उनका संरक्षण करने के लिए आगे बढ़ेंगे ही क्यों? तो इसीलिए आज के लिए ये जरूरत है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को समझाएं कि प्रकृति की क्या मान्य है। आज के वक्त की जरूरत है कि युवा पीढ़ी प्राकृतिक संरक्षण के महत्व को समझे और प्रकृति के और ज्यादा करीब हो जाए। ये तभी संभव होगा जब वे प्रकृति की विशेषताओं को समझेंगे, अलग अलग पेड़ पौधे पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे और उन पर निरंतर मंडराते खतरे को समझेंगे, तभी शायद वे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अग्रसर होंगे।
0: सोनी, आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बातें हमें नई दिशा और प्रेरणा देती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।
3: दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि वक्त खराब है या रास्ते बंद हैं, लेकिन सच तो यह है कि रास्ते पैरों से नहीं बुलंद हौसलों से बनते हैं। इच्छा शक्ति का मतलब सिर्फ चाहना नहीं है, बल्कि तब तक डटे रहना है जब तक मंजिल आपके कदमों में ना आए। याद रखिए, कोयला जब असहनीय दबाव और तपन सहता है तभी वो हीरा बनता है। ठीक वैसे ही अब आपके हालात आपको तोड़ने की कोशिश करें तब आपकी विल पावर ही वो फौलाद है जो आपको निखरने का मौका देती है।

अभी आप सुन रहे थे स्वाति यादव से कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम ग्रामीण लोक का।

कार्यक्रम ग्राम्य लोक सुनने वाले सभी भैया बहनों को मुक्ता सिकरवार की राम राम। साथियों, किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं और आज आपके कार्यक्रम में हम आपके बारे में ही बात करने जा रहे हैं। वास्तव में किसानों का जीवन कितनी मेहनत से होकर के गुजरता है। वो हमारे देश की खाद्य सुरक्षा को निश्चित करते हैं और मौसम की मार, बाजार की अस्थिरता जैसी तमाम चुनौतियों का सामना करते हैं। वे सादा जीवन जीते हैं और अपनी जमीन से बहुत लगाव रखते हैं। हम जानते हैं कि हर मौसम में किसान भोर से देर रात तक खेतों में काम करते हैं। उनके लिए कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। हालांकि आधुनिक तकनीक के प्रयोग से खेती के तरीकों से उत्पादकता बढ़ रही है, लेकिन अभी भी सुधार की काफ़ी ज़रूरत है।

कहना उचित ही होगा कि किसान हमारे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारी ग्रामीण संस्कृति में खेती का बहुत महत्व है। हम देखते हैं कि किसान फसल को बच्चे की तरह पालते हैं, त्योहारों पर खुशियां मनाते हैं और एकजुटता से रहते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि किसानों की स्थिति में सुधार होना चाहिए, इस संबंध में सरकार किसानों की दशा सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्हीं में से एक योजना है किसान उदय योजना। तो दोस्तों, आज हम किसान उदय योजना पर आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। किसान उदय योजना राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए 5 से 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप मुफ्त प्रदान करने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को मुफ्त सोलर पंप दिए जाएंगे और इसका मुख्य उद्देश्य है कि डीजल पंपों पर जो निर्भरता है वो कम हो, बिजली की बचत हो और किसानों की आय बढ़े। इस योजना के तहत सोलर पंप के रख रखाव का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो 5 साल तक सरकार की होती है। सोलर पंप के उपयोग से डीजल और बिजली की खपत कम होगी, ये विचार तो है ही, जिससे कि लागत में कमी आएगी। साथ ही किसान समय पर सिंचाई कर सकेंगे और फसल की उत्पादकता बढ़ेगी। साथियों, किसान उदय योजना में वही किसान पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों और उनके पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि हो। उनका पंजीकरण उत्तर प्रदेश कृषि विभाग या नेडा की संबंधित योजनाओं में होना भी आवश्यक है। योग्य किसान उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नेडा के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी बात की कि सरकार 2 तरह के ऊर्जा कुशल पंप सेट वितरित करेगी जो 5 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर के होंगे। इसके साथ साथ सरकार स्मार्ट किट भी उपलब्ध कराएगी जिसकी मदद से किसान अपने फोन से इन पंपों को चालू और बंद कर सकेंगे। ये योजना किसानों की आय बढ़ाने में तो मददगार है ही, और जैसा कि हमने बात की थी पहले भी कि इससे बिजली की खपत भी घटेगी और ये योजना खेती की लागत को भी कम कर देगी। साथियों, एक और बात जिसको आपके जानने की आवश्यकता है वो ये है कि जिन किसानों के पास पहले से सोलर पंप मौजूद हैं वो किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। किसान उदय योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेती का खसरा और खतौनी, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य होना चाहिए। साथ ही उनको आवेदन में अपने मोबाइल नंबर को भी लिखना होगा। इस आवेदन को भरने के लिए आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं, और यदि आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप www.upagriculture.com पर जाएं और अपने मोबाइल नंबर से वहां रजिस्टर कर लें। आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जहां आपको अपने बारे में पूरी जानकारी विस्तार से सही सही भरनी होगी। अब आपको अपने जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन को पूरा करना है और फिर प्रिंट आउट निकलवा लेना है। साथियों, इस योजना का उपयोग करके किसान अपने खेतों में पानी की जो असुविधा होती है उससे छुटकारा पा सकते हैं और अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। वास्तव में किसान उदय योजना किसानों के जीवन स्तर में सुधार की योजना है। तो साथियों, ये तो की हमने चर्चा, और आइए चलते हैं लोकगीत की ओर और सुनते हैं डॉक्टर शशि तिवारी की मधुर आवाज में ये लोकगीत।

साथियों, किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्वों के साथ साथ उसे उचित मात्रा में पानी मिलना भी आवश्यक है। किसान सिंचाई द्वारा फसलों की पानी की कमी को पूरा करते हैं। आज की तकनीक के युग में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जिसे कि ड्रिप इरिगेशन भी कहा जाता है, के द्वारा कृषि क्षेत्र में नवाचार लाया गया है। वास्तव में ये कृषि में पानी की बचत और पैदावार बढ़ाने वाली एक आधुनिक तकनीक है।

0: जिसमें पौधों की जड़ों में सीधे टपक टपक कर पानी और पोषक तत्व पहुंचते हैं। तो आइए इस पद्धति के बारे में आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार करहाना को, जिनसे बातचीत कर रहे हैं अनिंद्र सिंह और विषय है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की उपयोगिता।
1: किसान भाइयों,

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार करहाना जी को आमंत्रित किया है। डॉक्टर पुष्पेंद्र जी आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
1: नमस्कार किसान भाइयों।
0: डॉक्टर साहब, सब्जी उत्पादन में बूंद बूंद सिंचाई कैसे कारगर हो सकती है?
1: किसान भाइयों, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति सिंचाई की एक उन्नत तकनीक है
0: जी,
1: जिसमें जल बूंद बूंद के रूप में पौधों की जड़ों के पास पहुंचाया जाता है। इस सिंचाई पद्धति में जल उपयोग क्षमता लगभग 90 से 95% तक बढ़ जाती है, क्योंकि ड्रिपल की मदद से पानी को बूंद बूंद के रूप में सीधा पौधों की जड़ों में दिया जाता है।
0: वैसे हम जो परंपरागत सिंचाई करते हैं उसमें हम नहरों से या ट्यूबवेल से या नलकूपों से जो सिंचाई करते हैं उसमें हम खेत में पानी ऐसे ही लगा देते हैं।
1: हम जो परंपरागत सिंचाई पद्धति को इस्तेमाल करते हैं उनके द्वारा काफी मात्रा में पानी का ह्रास होता है
0: जी,
1: काफी मात्रा में भूमि में पानी चला जाता है जिससे पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता।
0: इस क्षेत्र में पानी का स्तर लगातार दिनों दिन नीचे चला जाता रहा है, ये सब कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए बहुत मुश्किल जैसी स्थिति किसान के लिए हो गई है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए ये बूंद बूंद सिंचाई पद्धति बहुत कारगर साबित हो सकती है।
1: मैं किसान भाइयों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, हमारा भूतल में पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है
0: जी,
1: जिससे हमारे किसान भाई भी चिंतित हैं, हमारे वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। इसी के तहत पूरा तंत्र इस चीज में लगा हुआ है कि हमारे किसान भाई ऐसी पद्धति का इस्तेमाल करें जिससे कम से कम पानी का ह्रास हो और ज्यादा से ज्यादा हमारे पौधों को पानी की उपलब्धता हो सके। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पौधों की आवश्यकता के अनुसार हम पौधों की जड़ों के पास पानी की मात्रा प्रदान कर सकते हैं, जिससे हमारे सब्जियों का उत्पादन, फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा और कॉस्ट भी कम आएगी।
0: ये जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है और हमारी जो परंपरागत सिंचाई की पद्धति है उसमें और इसमें पानी का प्रयोग है उसमें कितना फर्क आ जाता है?
1: 40 से 50% सामान्यतः पानी की बचत होती है।
0: ये तो सिर्फ पानी की बचत हुई डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो जो हम साधन यूज करते हैं, हम नलकूप यूज करते हैं, हमारा डीजल यूज होता होगा, हमारे सेट यूज होते हैं, तो वो कॉस्ट भी कहीं ना कहीं हमारी कम होती है।
1: बिल्कुल, मैं किसान भाइयों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, जो हम परंपरागत सिंचाई की पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारी श्रम भी ज्यादा लगती है
0: जी,
1: उसमें हमारा जो लागत है वो भी ज्यादा आती है
0: जी।
1: बूंद बूंद सिंचाई का यदि हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं तो लागत थोड़ी सी ज्यादा आती है
0: जी,
1: वो प्राथमिक लागत है,
0: शुरुआत में लागत ज्यादा हमें
1: नजर आएगी
0: लेकिन बाद में जो है वो हमारी भरपाई जरूर कर देगी।
1: लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 40 से 60% लगभग पानी की बचत होगी, कुछ फसलों में तो 79% तक बचत देखी गई है,
0: 79%
1: तक देखी गई है।
0: अच्छा,
1: और इसी के तहत हम उर्वरक पौधों को देते हैं या शाकनाशी का हम इस्तेमाल करते हैं या हम विभिन्न हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी हम बचत कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक बता दूं, 40 से 45% तक हम उर्वरकों की सामान्यतः बचत कर सकते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को ये एक बेहतरीन फायदा होगा।
0: तो हम जो किसान भाई बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को यूज करते हैं उसमें पानी की सिंचाई के साथ साथ उर्वरकों का भी हम पानी के साथ प्रयोग करके दे सकते हैं अपने सब्जियों के खेत में?
1: हाँ बिल्कुल किसान भाइयों, इस तरीके को हम फर्टिगेशन कहते हैं। फर्टिगेशन वह शब्द है जिसके तहत हम जो पानी बूंद बूंद के रूप में दे रहे हैं उसी के साथ एक टंकी में हम उर्वरक की मात्रा को घोल बना लेते हैं और उसका मेन पाइप के साथ जोड़ देते हैं
0: जी,
1: जिससे कि उर्वरक भी पानी के साथ साथ पौधे की जड़ों तक उपयुक्त मात्रा में पहुंच पाता है।
0: वैसे हम जब उर्वरक देते हैं परंपरागत तरीके में उसको हम छिड़काव करते हैं, ऊपर से बुरकाव करते हैं, तो उसमें वेस्टेज जाता होगा। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति में अगर हम घोल के दे रहे हैं उर्वरक को तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पेड़ की जड़ तक उर्वरक की मात्रा जितनी चाहिए उसको पानी के साथ पहुंचा रहे हैं और हमारा जो वेस्टेज है वो नहीं हो रहा है।
1: देखिए किसान भाई, हमारे यूरिया है या डीएपी है या सिंगल सुपर फास्फेट है, उनको क्या करते हैं कि बिखराव बुरकाव विधि से इस्तेमाल करते हैं
0: जी,
1: जो कई बार पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो वेस्टेज या तो भूमि में चला जाता है या फिर इवेपोरेट हो जाता है, यानी वाष्पीकरण के रूप में उड़ जाता है
0: जी।
1: यदि हम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करते हैं और उसके तहत हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं घोल के रूप में, तो वो उर्वरक पौधे की जड़ों तक पौधों को प्राप्त होता है और उसका उपयुक्त इस्तेमाल होता है जिससे उपज बढ़ती है और वेस्टेज कम होता है।
0: अब सवाल डॉक्टर साहब ये उठता है कि हम किस किस जगह पे कौन कौन सी फसलों में अपने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करें?
1: हाँ, मैं उसी के तहत किसान भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विभिन्न फसलें हैं बागवानी जिनमें हम बूंद बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं
0: जी।
1: जैसे विभिन्न फल वाली फसल है, आम, सेब, केला, अंगूर, पपीता, अनार, लेमन, लीची, संतरा, नाशपाती, आलूचा इत्यादि फल वाली फसलें हैं
0: जिनमें हम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति
1: उपयोग में ला सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है
0: जी।
1: इसके अलावा सब्जी की विभिन्न फसलें जैसे बैंगन, खीरा, टमाटर, आलू, मिर्च, मटर, मेलन्स में खरबूजा, तरबूज, फूट इत्यादि बहुत लाभदायक विधि है। इस विधि का इस्तेमाल

0: ये हमारे किसान भाई करेंगे तो उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, उनको लाभ भी होगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि आजकल के किसान फूल वाली फसलें भी लेना शुरू कर दिए हैं। समय की मांग के हिसाब से बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने शुरुआत की है इनकी, तो क्या फूल वाली फसलों में भी ये बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कारगर है?
0: हाँ बिल्कुल, किसान भाई यदि फूल वाली फसलों की तरफ आकर्षित होते हैं ये तो उनके लिए एक वरदान है, बेहतरीन है,
1: जी
0: क्योंकि फूल वाली फसलों का समय अवधि कम होती है। इस
1: जी
0: अवधि
1: जी
0: में वो ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मतलब छोटे ड्यूरेशन के लिए वक्त देना होता है, उससे जो होने वाली आय है वो ज्यादा होती
0: वो
1: है,
0: ज्यादा
1: तो
0: होती है,
1: किसान भाई फूल उत्पादन वाली फसलों के ओर भी रुख कर सकते
0: रुक
1: हैं।
0: कर सकते। इसके तहत कार्नेशन, ग्लेडियोलस, गुलदावदी
1: जी
0: इत्यादि फूल वाली फसलें जो बहुत प्रसिद्ध फसल है उनको आसानी से उगाया जा सकता है और उनसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
1: जी
0: तो हमारे किसान भाई फूलों की खेती, फलों की खेती एवं सब्जियों में आसानी से बूंद बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: क्या और भी कोई फसलें हैं जिनमें बूंद बूंद पद्धति को यूज कर सकते हैं जो आपने अभी बताई हैं इनके अलावा?
0: इसके अलावा रोपण वाली फसलें जिनका आजकल काफी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे सुपारी है, काफी है,
1: जी जी
0: रबड़, चाय इत्यादि फसलों में भी आसानी से इस पद्धति का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सकता है।
1: हमारे किसान भाई अगर मोटा मोटा ये समझने की कोशिश करें कि जो परंपरागत सिंचाई की विधियां हैं और जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है जिसको आप किसानों को यूज करने के लिए बोल रहे हैं और जिस पर सरकार का भी जोर है, तो क्या कोई पैमाना है, क्या कोई आंकड़े हैं आपके पास जिनसे आप किसान भाइयों को ये मैसेज दे सकें कि कितने पानी की बचत आपको किस किस खेती में हो जाती है?
0: हाँ किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, कुछ फसलें हैं जो इस क्षेत्र में बहुत बहुतायत से उगाई जाती हैं।
1: जी
0: जैसे आलू की उपज को देख, यदि परंपरागत सिंचाई विधि हम इस्तेमाल करते हैं और इसके विपरीत में यदि बूंद बूंद सिंचाई विधि का इस्तेमाल किसान भाई करते हैं तो उसकी उपज में 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है
1: जी
0: और लगभग लगभग 40 से 50% पानी की बचत होती है
1: यानी कि
0: किसानों के
1: डबल
0: लिए।
1: फायदा है
0: डबल
1: हमारे किसान
0: फायदा है
1: भाइयों
0: हमारे
1: को।
0: किसान भाइयों को।
1: जी
0: टमाटर की खेती यदि किसान भाई करते हैं
1: जी
0: तो उसमें भी 25 से 50% की बढ़ोतरी उपज में होती है और लगभग 40 से 60% पानी की बचत किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा मिर्च की खेती बहुतायत से की जाती है जिसमें 10 से 40% के बीच में उपज में वृद्धि की जा सकती है एवं 60 से 70% पानी की बचत हमारे किसान भाई कर सकते हैं। यदि फूलगोभी में हमारे किसान भाई बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो 60 से 80% लगभग उपज में वृद्धि होगी एवं 30 से 40%
1: पानी की
0: पानी की
1: बचत भी हो
0: बचत
1: रही है।
0: होगी। यदि हम देखें फल वाली फसलें,
1: जी
0: जैसे मैंने बता चुका हूं कि आम, बेर इत्यादि फलों में इस्तेमाल की जाती है, तो
1: जी
0: बेर की फसल में यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो 15 से 20% उपज में बढ़ोतरी होती है एवं 20 से 30% पानी की बचत किसान भाई कर सकते हैं।
1: सिर्फ सब्जियों में ही नहीं, किसान भाई अगर फलों का उत्पादन भी लेना चाहेंगे तो उसमें भी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति बहुत कारगर है।
0: हाँ
1: डॉक्टर साहब, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से किसान भाइयों के लिए कोई सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है क्या?
0: हाँ किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों प्रयासरत हैं। एक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है,
1: जी
0: किसान भाई चाहें तो सब्सिडी का लाभ लेकर के बूंद बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करके अपने खेतों में सब्जियों, फलों, फूलों इत्यादि फसलों का उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं।
1: सरकार तो सिर्फ प्रयास कर सकती है, उस दिशा निर्देश दे सकती है, बाकी करना तो हम किसानों को ही होगा।
0: हाँ
1: क्षेत्र के किसान बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं, किस तरह ज्यादा से ज्यादा उपज ले सकते हैं कम पानी का प्रयोग करके और अपनी सिंचाई की लागत को कम करके, आपने किसान भाइयों को ये जानकारी दी। आपके इस प्रयास के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, अभी हमने ये भेंटवार्ता सुनी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की उपयोगिता। डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार कन्हाना से बातचीत कर रहे थे अनिंद्र सिंह। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भेंटवार्ता उपयोगी लगी होगी और आप इसका अवश्य लाभ लेंगे। साथियों, बात करते हैं नई किस्मों की, अनाजों, सब्जियों, फलियों के बीजों के विषय में जो नई किस्में हैं आ रही हैं उनके बारे में। भारत में वर्ष 2026 की शुरुआत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे कि हम ICAR भी कहते हैं, उसके द्वारा 25 फसलों की 184 नई और उन्नत किस्में जारी की गई जो अधिक पैदावार, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पोषण से भरपूर हैं। इन किस्मों का मुख्य उद्देश्य जलवायु अनुकूल खेतों और किसानों की आय में वृद्धि करना है। धान की नई 60 किस्में जारी की गई हैं जिसमें कि DRR राइस 100 कमला और पूसा DST राइस 1 प्रमुख हैं। ये किस्में खारे और क्षारीय पानी में भी अच्छा उत्पादन देती हैं।

इसके अलावा PV1718, PV1885, PV1692 और PR114 को भी वर्ष 2026 में उत्पादन के लिए अच्छा माना जा रहा है। और साथियों, अब समय है मंडी भाव की जानकारी देने का। चावल 3430 रुपये से 3410 रुपये प्रति कुंतल, गेहूं 2720 रुपये से 2750 रुपये प्रति कुंतल, मसूर दाल 7680 रुपये से 8032 रुपये प्रति कुंतल, साबुत चना दाल 8970 रुपये से 8950 रुपये प्रति कुंतल, अरहर दाल 9320 रुपये से 9600 रुपये प्रति कुंतल, उड़द दाल 9670 रुपये से 9880 रुपये प्रति कुंतल, मूंग दाल 9520 रुपये से 9750 रुपये प्रति कुंतल और सरसों 6970 रुपये से 7120 रुपये प्रति कुंतल। और अब आपको मौसम की जानकारी दे दें। आसमान साफ रहा, तेज धूप खिली रही, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आइए चलते हैं लोकगीतों की ओर, और कुलदीप शर्मा के स्वर में सुनते हैं ये लोकगीत।

और साथियों, कुलदीप शर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अनुमति दीजिए आप सभी को मुक्ता सिकरवार की राम राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीलोक। प्रस्तोता थी मुक्ता सेकरवार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हो चुके हैं। अब वक्त है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रमिक भाई और बहनों को आपकी रेडियो सखी छवि गर्ग का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। हाँ तो बताइए साथियों, कैसे हैं आप लोग? इन दिनों मौसम में जो उतार चढ़ाव है ना, इसकी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। और भाई गर्मियों का मौसम है तो जाहिर सी बात है हम सभी अपने अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ घूमने भी जाते हैं। और गर्मी से निजात पाने के लिए अधिकतर लोग पहाड़ों की सैर करते हैं। तो श्रोताओं, आपका आज का प्रश्न है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? नोट कर लीजिए और हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए। आपको अपने प्रश्न का उत्तर इसी कार्यक्रम में मिलेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे महान नेता की जिन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित किया। वो हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी का जन्म 6 मई 1861 को हुआ था। पेशे से वो एक प्रतिष्ठित वकील थे और इलाहाबाद में उनकी गिनती देश के सफल और सम्मानित वकीलों में होती थी। हालांकि उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन जब देश को उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। साथियों, एक ऐसा समय था जब मोतीलाल नेहरू अंग्रेजी जीवन शैली के समर्थक थे। वो महंगे कपड़े पहनते थे और आलीशान जीवन जीते थे। लेकिन जैसे ही देश में स्वतंत्रता की लहर तेज हुई, उनका मन भी देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। श्रोताओं, उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर विदेशी वस्त्रों का त्याग किया और खादी को अपनाया। और हाँ, ये बदलाव केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके विचारों और जीवन शैली में गहरा परिवर्तन था। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1919 में वो इसके अध्यक्ष बने और देश

के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। मोतीलाल नेहरू का व्यक्तित्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, वो एक आदर्श पिता भी थे। उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। साथियों, मोतीलाल नेहरू ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका त्याग, उनका समर्पण और उनकी दूरदर्शिता आज भी हमें प्रेरित करती है। एक व्यक्ति का सशक्त व्यक्तित्व केवल उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाता है और मोतीलाल नेहरू इसका जीवंत उदाहरण है। साथियों, वैसे आज का दिन बेहद खास है। जहां एक तरफ मोतीलाल नेहरू की जयंती है, वहीं छत्रपति शाहूजी महाराज की पुण्यतिथि। ये सामाजिक न्याय के महानायक और एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने समाज में समानता और न्याय की अलख जगाई। दोस्तों, छत्रपति शाहूजी महाराज को कोल्हापुर के शासक थे, लेकिन उनकी पहचान केवल एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक के रूप में रही। उनके समय समाज में ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव बहुत अधिक था, लेकिन शाहूजी महाराज ने इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। गरीबों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए स्कूल और छात्रावास खुलवाए। उनका मानना था, शिक्षा ही वो कुंजी है जो समाज में समानता का द्वार खोल सकती है। इसके अलावा श्रोताओं, शाहूजी महाराज ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। दोस्तों, शाहूजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए खड़ा हो और उनके अधिकारों की रक्षा करे। उनके कार्यों ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी। आज भी उनका योगदान हमें प्रेरित करता है कि हम एक समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करें। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है और छत्रपति शाहूजी महाराज इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों, चर्चा को क्षणिक विराम देते हुए आइए सुनते हैं ये प्रेरक गीत।

दोस्तों, ज्ञान सागर में हम आज आपको कराते हैं सैर और लिए चलते हैं भारत के खूबसूरत पर्यटन स्थल उत्तराखंड की गोद में बसे एक ऐसे हिल स्टेशन की ओर जिसे प्यार से कहा जाता है पहाड़ों की रानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी की। साथियों, समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मसूरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी जलवायु और मनमोहक दृश्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बादलों से ढकी घाटियाँ किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। श्रोताओं, मसूरी घूमने के लिए कई आकर्षक स्थल हैं, जैसे कैंपटी फॉल, जहाँ पानी की गिरती धाराएं मन को ताजगी से भर देती हैं, और गन हिल, जहाँ से आप पूरे शहर का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको शांति और प्रकृति का आनंद लेना है तो कैमल्स बैक रोड पर सैर जरूर करें। यहाँ का शांत वातावरण और सूर्य

सूर्योदय के साथ ही साथ सूर्यास्त का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। और हाँ, मसूरी केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि रोमांच का भी केंद्र है। यहाँ ट्रैकिंग केबल, कार राइड और शॉपिंग का भी भरपूर आनंद लिया जा सकता है। दोस्तों, गर्मियों में जहाँ ठंडी हवा सैलानियों को राहत देती है, वहीं सर्दियों में बर्फबारी इस जगह को और भी जादुई बना देती है, जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। मसूरी का हर कोना एक नई कहानी कहता है, प्रकृति की, शांति की और सुकून की। यही कारण है इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। श्रोताओं, अगर आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं तो मसूरी आपका इंतजार कर रही है। अरे भाई, फिर आप कब जा रहे हैं सैर के लिए मसूरी? जी हाँ, हमें पता है आप जरूर अपना कार्यक्रम बनाएंगे। अब साथियों, आगे हम आते हैं सेहत टिप्स में और आपके लिए लाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उपयोगी सुझाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन दिनों गर्मी का मौसम अपने चरम पर है। तेज धूप, लू और बढ़ता तापमान हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम कुछ आसान उपाय अपनाएं। सबसे पहले पानी ज्यादा पिए, दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर लें। इसके साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ का सेवन भी फायदेमंद है। अब दूसरी जरूरी बात, हल्का और पौष्टिक भोजन। गर्मी में तली भुनी और मसालेदार चीजों से बचें। तरबूज, खीरा, ककड़ी और दही जैसे ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें। तीसरा सुझाव, धूप से बचाव। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। अगर जाना जरूरी है तो छाता, टोपी या सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ सही कपड़ों का चुनाव भी बेहद जरूरी है। हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर ठंडा और आरामदायक महसूस करे। और हाँ, स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। गर्मी में बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं, इसलिए हाथ धोना और साफ पानी पीना बेहद जरूरी है। और अंत में जरूरी है व्यायाम और आराम का संतुलन। सुबह या शाम के समय हल्की एक्सरसाइज करें और पूरी नींद लें ताकि शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहे। श्रोताओं, गर्मी के मौसम में थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी बीमारियों से बचा सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें और सुनते रहें हमारा कार्यक्रम। आइए अब लेते हैं मनोरंजक विराम और सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: साथियों, हमें बच्चों को खेल कूद, पढ़ाई, इन सब के लिए उत्साहित करना चाहिए। लेकिन आजकल के समय में हमारे जो बच्चे हैं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्कूल से भी मोबाइल में ही वर्क आता है। इसके अलावा घर में बच्चे खेलते कूदते भी मोबाइल के ज़रिए हैं। आउटडोर खेलना तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। लेकिन अब देखिए, स्क्रीन टाइम के जो बढ़ रहा है, उसके दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हैं। आइए इसी विषय पर सुनते हैं वार्ता। स्क्रीन टाइम के बढ़ते दुष्प्रभाव, वार्ताकार हैं साहिल तनेजा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बढ़ता स्क्रीन टाइम। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन और टैबलेट जैसे उपकरणों ने हमारी दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। लेकिन जानकारी, मनोरंजन, शिक्षा, खेल एवं संचार, सब कुछ अब एक स्क्रीन के माध्यम से संभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सुविधा कहीं हमारे स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए एक चुनौती तो नहीं बन रही है? स्क्रीन टाइम के बढ़ते दुष्प्रभावों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले इसका दुष्प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। शारीरिक में भी विशेष रूप से हमारी आंखों पर इसका दुष्प्रभाव है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में स्क्रीन टाइम के बढ़ते दुष्प्रभावों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले इसका प्रभाव सर्वाधिक हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। शरीर के विभिन्न अंग विशेष रूप से हमारी आंखों पर पड़ता है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में सूखापन, जलन, धुंधलापन और थकान की समस्या होती है। जब हम मोबाइल या लैपटॉप देखते हैं तो हम सामान्य से

पलक झपकाते हैं। इससे आंखों की नमी कम हो जाती है और सूखापन, जलन होने लगती है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों की मांसपेशियां थक जाती हैं। इससे भारीपन, दर्द और ध्यान लगाने में दिक्कत होती है। दूसरी समस्या मोटापा है। स्क्रीन के सामने घंटों बैठे रहने से शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, जिससे बच्चों और वयस्कों में वजन बढ़ने का खतरा रहता है। इसी के साथ पीठ और गर्दन में दर्द की समस्या भी बढ़ जाती है। लगातार एक ही मुद्रा में बैठे रहने से गर्दन, कंधे और रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या आम हो गई है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से नींद में कमी, जिसको इंसोमनिया भी कहते हैं, वह देखने को मिल रहा है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दैनिक दिनचर्या को बाधित कर सकती है और नींद आने में कठिनाई उत्पन्न करती है। यदि आप देर रात तक सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं या सोने से पहले टेलीविजन देखते हैं, तो शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन प्रभावित होता है। यह हार्मोन हमारी नींद को नियंत्रित करता है और हमें गहरी व आरामदायक नींद लेने में सहायक होता है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद के हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन को रोकती है, जिससे नींद ना आने की समस्या होती है। इसी के साथ शरीर में विटामिन डी की कमी भी हो जाती है। हमारा शरीर विटामिन डी मुख्य रूप से सूरज की रोशनी से बनाता है। जब सूरज की पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेज त्वचा पर पड़ती हैं, तब शरीर विटामिन डी बनाता है। लेकिन जब हम घंटों मोबाइल, लैपटॉप या टीवी के सामने बैठे रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं, धूप में समय नहीं बिताते, तो शरीर का पर्याप्त धूप नहीं मिलती और धीरे धीरे विटामिन डी की कमी होने लगती है। बढ़ते स्क्रीन टाइम का दूसरा दुष्प्रभाव मानसिक और भावनात्मक प्रभाव है, तनाव और चिंता। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से लोगों में तुलना की भावना, तनाव, चिंता और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। खासकर युवाओं में यह समस्या अत्यधिक देखने को मिलती है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग और लगातार सूचनाओं के प्रभाव से तनाव, चिंता व अवसाद का खतरा बढ़ता है। इससे एकाग्रता में कमी आती है, दिमागी थकान रहती है। लगातार स्क्रीन देखने से मस्तिष्क थक जाता है, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं। साथ ही नींद में कमी, रात में नीली रोशनी नींद के हार्मोन को दबाती है, जिससे अगली सुबह ध्यान भटकता है। स्क्रीन पर हम मल्टीटास्किंग करते हैं। स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशन और एप्स बदलने से गहरी एकाग्रता की क्षमता कम हो जाती है। स्क्रीन पर लगातार बदलते दृश्यों के कारण ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी कम हो जाती है। बच्चों में व्यवहार संबंधी बदलाव देखे गए हैं। बच्चों में स्क्रीन की लत से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो गई है, जिससे स्क्रीन टाइम से जिद्दी बच्चे चिड़चिड़े और आक्रामक होते जा रहे हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने का सामाजिक और विकासात्मक दुष्प्रभाव भी है। इससे आमने सामने बातचीत में कमी आई है। जब हम ज्यादा समय मोबाइल या लैपटॉप पर बिताते हैं, तो परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर बात करने का समय कम हो जाता है। आमने सामने की बातचीत कम होने से सामाजिक कौशल प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे रियल लाइफ कन्वर्सेशन की जगह ऑनलाइन चैट ले लेती हैं, तो उतनी गहराई नहीं रह पाती। इसी के साथ अकेलेपन की आदत भी बनती जा रही है। लगातार स्क्रीन पर रहने से व्यक्ति अकेले रहने की आदि हो जाता है। उसे लोगों से मिलने जुलने की इच्छा कम होने लगती है, जिससे सोशल इंटरेक्शन घट जाता है। इससे भावनात्मक दूरी बढ़ने लगती है। ऑनलाइन बातचीत में हम आमने सामने वालों के हाव भाव एक्सप्रेशंस देख नहीं पाते, जिससे भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो जाता है। इससे रिश्तों में दूरी आने लगती है। जीवन में सोशल मीडिया से अनेक प्रकार के भ्रम भी उत्पन्न होते हैं। सोशल मीडिया पर सबकी परफेक्ट लाइफ देखकर लोग दूसरों को खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। इससे व्यक्ति इनसिक्योर और अलग थलग महसूस करता है। बढ़ते स्क्रीन टाइम के कारण हम समय का गलत उपयोग करने लगते हैं। जो समय हम दोस्तों, परिवार या समाज के साथ बिता सकते हैं, वह स्क्रीन पर खर्च हो जाता है। जैसे स्क्रीन पर रील्स देखना, वीडियोस देखना। इससे धीरे धीरे रियल लाइफ कनेक्शंस कमजोर पड़ जाते हैं। इसका अगला प्रभाव भाषा और सीखने में देरी होने लगती है। छोटे बच्चों में

0: आम तौर पर यह देखा गया है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बोलने में क्षमता में देरी हो सकती है। इसके अलावा भाषा और सीखने में देरी होने लगती है। छोटे बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बोलने की क्षमता और रचनात्मकता के विकास में देरी हो सकती है। आइए अगले विषय पर बात करते हैं, जो है इसके बचाव के प्रभावी उपाय। अब सवाल उठता है, इससे कैसे बचा जाए। सबसे पहले और महत्वपूर्ण कदम है अनुशासन। हमें अपने स्क्रीन टाइम को सीमित करना होगा।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता स्क्रीन टाइम के बढ़ते दुष्प्रभाव। वार्ताकार थे साहिल तनेजा। दोस्तों, घड़ी की सुई इशारा कर रही है कार्यक्रम से विदा लेने का। दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी छवि गर्ग को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल, प्रस्तुत करता थी छवि गर्ग। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसीलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवीके प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमा वलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है। इस पार्टी के 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हाउंग ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। नई दिल्ली में आज हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के

0: सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
1: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक समर्पित कार्यबल का गठन किया है। सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. In Tamil Nadu, TVK chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked claim to form the new government in the state. The 51-year-old leader met the governor along with senior leaders of the party, K. A. Sengotaya, N. Anand, CTR Nirmal Kumar, Arun Raj and Adhav Arjuna. TVK has secured 108 seats, falling short of the majority mark by 10 seats. Vijay, who contested from two constituencies, will have to vacate one seat. Earlier in the day, Congress leader Girish Torankar met Vijay and submitted a letter of support from five MLAs. In a related development, VCK chief T. Thirumavalan said that his party will soon decide on TVK's invitation to join its alliance. VCK, which currently has two MLAs, is part of the DMK-led front. The governor had earlier told the media that he would take the final decision to call TVK to form the government in a day or two. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. According to party sources, the event is expected to be attended by Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and several chief ministers from BJP-ruled states, making it a significant political gathering. More from our correspondent.
3: The constitutional process of government formation is moving swiftly. The Chief Electoral Officer of West Bengal, Manoj Kumar Agarwal, along with representatives of the Election Commission, today met the Governor with the gazette notification of the results of all 293 assembly constituencies in the state. The formal process of forming the new government begins only after the Governor receives the official election results. The Governor may also take a decision on how the interim administrative arrangement will function until the new government is formally sworn in. At the same time, the stand taken by outgoing Chief Minister Mamata Banerjee has added a layer of complexity to the situation. Mamata on Tuesday made it clear that she would not go to Raj Bhavan to resign. Against the backdrop of political confrontation, preparations for the administrative transition in Bengal have now entered a decisive phase. Sandeep Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: Meanwhile, Trinamool Congress leader Mamata Banerjee convened a meeting with the party's victorious candidates. The gathering took place at her residence in Kalighat, where 69 out of 80 winning candidates were present. In Assam, Chief Minister Dr. Hemant Biswa Sarma today tendered his resignation to Governor Lakshman Prasad Acharya at the Lok Bhavan in Guwahati following the completion of the assembly election process. The resignation has paved the way for the formation of a new government in the state after the declaration of results. Speaking to media later, Dr. Sarma said the governor has accepted the resignation of the Council of Ministers and dissolved the present Legislative Assembly.

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है विविधा कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं अपूर्वा शर्मा से वार्ता। बच्चों के विकास के लिए जरूरी है सहज व्यवहार।
1: सहजता अर्थात व्यवहार का वह गुण जो सफल कार्य निष्पादन की पृष्ठभूमि है। मानव की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है कि वह प्रत्येक कार्य को यदि चाहे तो बड़ी सहजता से पूर्ण कर सकता है। व्यवहार में सहजता का गुण एक व्यक्ति को धैर्यपूर्वक विचारने व कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं, अतः उनके व्यवहार को सही दिशा देना हमारा व आपका परम कर्तव्य है। परंतु आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में बालक का व्यक्तित्व अपने उत्तम स्वरूप की प्राप्ति से वंचित ही है। कारण बहुत साफ है। तनाव, होड़, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जल्दबाजी भरी जिंदगी, इन सभी में सर्वाधिक प्रबल कारण है बालकों का उनके माता पिता से उचित अंतर वैयक्तिक संबंधों का अभाव। पर सच पूछे तो इस समस्या से बचने का उपाय भी है, और वह है अभिभावकों का बच्चों के प्रति सकारात्मक व सहज व्यवहार। देश का सफल नागरिक बनने के लिए बालक में जिस परिपक्वता की आवश्यकता है उसकी पूर्ति तभी संभव है जब बालकों की वृद्धि व विकास के समय उनके हर पल बदलते व्यवहार को अभिभावक सहज रूप से न केवल स्वीकार करें वरन उन्हें व्यवहार का सही तरीका भी सिखाएं। वर्तमान समाज में व्याप्त फैशन की आग सबसे ज्यादा बालकों को जलाकर उन्हें पदभ्रष्ट कर रही है। परिणाम स्वरूप बालक ये भूल ही चुके हैं कि वे अभी बालक ही हैं। समय से पहले बड़े हो रहे बालकों को यदि कोई संभाल सकता है तो वे हैं आप। यदि आप अपने बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर दें व उनके व आपके मध्य सहज संबंधों का विस्तार हो तो बालक का व्यक्तित्व पुष्प की भांति संपूर्ण समाज रूपी उद्यान को सुगंधित करने में सक्षम हो सकता है। परंतु इसके लिए आवश्यकता है बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो व साथ ही

आपका पूर्ण सहयोग मिले। वर्तमान में समय मानो पैर में पहिए लगाकर भाग रहा है। बालक के व्यक्तित्व को निखारने में लगने वाला समय आजकल माता पिता दफ्तरों या पार्टियों को न्योछावर कर रहे हैं। ऐसे में बालक के व्यक्तित्व का हर पक्ष संतुलन की कसौटी पर फिट नहीं बैठ रहा। व्यक्तित्व में संतुलन से तात्पर्य है कि बालक शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक रूप से उचित व्यवहार को प्रदर्शित करे, परंतु ऐसा होना तभी संभव है जब आप उसके व्यवहार को सहज रूप से स्वीकारें, उसकी विलक्षणता को पहचाने व विसंगति का उसे ज्ञान भी कराएं। बालक के गलत व्यवहार

0: ज्ञान भी कराएं। बालक के गलत व्यवहार पर आपका उस पर क्रोधित होना आपका अधिकार हो सकता है, परंतु याद रखना चाहिए कि सख्ती आपको उनसे दूर न कर दे। अतः आवश्यकता है कि आप अपने बच्चे के मित्र बनकर उसके व्यवहार को सुंदर रूप दें, न कि माता पिता बनकर अपना आधिपत्य जताएं। जीवन में कभी कभी बालक को ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जब वह संवेगात्मक रूप से अस्थिरता का अनुभव करता है। ऐसे में आपका सहज व्यवहार उसे इस अस्थिरता से उबने में मदद करता है। मानसिक तनाव, चंचलता में आधिक्य, निर्णयात्मक शक्ति में अस्थिरता आदि अनेक समस्याएं हैं जो एक बालक को परेशान करती हैं। अतः ऐसे में आपका मित्रवत व्यवहार उसे निश्चित रूप से शांति प्रदान करेगा। माता पिता का सहयोग वह शक्ति है जो बालक के सर्वांगीण विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। अतः आपके बालक का भविष्य व उसके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास आपके व्यवहार पर ही निर्भर करता है। सच पूछिए तो सहज रहना अपने आप में एक गुण है जो अभिभावकों को वह विवेक प्रदान करता है जिससे आप अपने बच्चे में उच्च नैतिक व मानवीय गुणों का विकास भली प्रकार कर सकते हैं। अतः बालक को व्यक्तित्व संबंधी गुणों से अवगत कराने का दायित्व भी आप ही पर है। कहा जा सकता है कि अभिभावक अपने सहज व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से बालक को सही राह दिखा सकते हैं व उन्हें एक सच्चे नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति परसोना शब्द से हुई है जिसका अर्थ है वेशभूषा, परंतु व्यक्तित्व का यह संपूर्ण अर्थ नहीं है। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के प्रति उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तित्व में न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक गुणों का भी समावेश होता है। अतः व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अर्थ बालक के शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के संतुलित योग से है। बालक के व्यक्तित्व में यह संतुलन केवल अभिभावक के सहज व्यवहार पर ही निर्भर करता है। आप चाहे तो बालक में उस साहस व शक्ति का संचार कर सकते हैं जो उसे एक ऐसे प्राणी के रूप में प्रस्तुत करेगा जो जीवन की हर परिस्थिति का सामना पूरी ईमानदारी व आत्मविश्वास से कर सकता है। बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट माना गया है जिस पर जो भी उसकी प्रारंभिक अवस्था में अंकित किया जाता है वही चिरस्थायी हो जाता है। ऐसे में आपके द्वारा सिखाया गया प्रत्येक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यवहार उसके व्यक्तित्व विकास को प्रभावित कर सकता है।
1: विविध कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे अपूर्वा शर्मा की वार्ता। वार्ता का विषय था बच्चों के विकास के लिए जरूरी है सहज व्यवहार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह में हुए शामिल। कहा, प्रदेश के 6 रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हो रहे हैं साकार। प्रदेश में कल से शुरू होगी स्वगणना की सुविधा। जनगणना के प्रथम चरण मकान गणना से पहले 15 दिन खुद भर सकेंगे अपना डेटा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। राष्ट्रीय फल निर्यात सम्मेलन फ्रूट होराइजन 2026 को कल करेंगे संबोधित। और खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया हुई डिजिटल। राजस्व विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान कर मिलेगी सुविधा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम की थीम पर आधारित नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 6 रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव जमीन पर साकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा और एयरोस्पेस नीति के माध्यम से निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
2: अपने डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी के माध्यम से हर उस इन्वेस्टर को जो इस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक है, उसे हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेंटिव भी उपलब्ध करवा रहे हैं, पॉलिसी का लाभ दे रहे हैं, लैंड बैंक में पर्याप्त लैंड उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अलीगढ़ रोड में छोटे हथियारों और रक्षा उपकरणों तथा अन्य सैन्य सामग्रियों के निर्माण के रूप में यह केंद्र उभरा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि अब युद्ध सिर्फ जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन बन चुका है।
2: आज युद्ध सिर्फ जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रहा है, आज यह मल्टी डोमेन ऑपरेशन के युग में प्रवेश कर चुका है। हमने भी गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी देखा है। आधुनिक युद्ध जल, थल और वायु के साथ साथ साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आदि क्षेत्रों में एक साथ लड़ा जा रहा है। अब कीबोर्ड भी हथियार है। दुश्मन के पावर ग्रिड, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करना या अपने नेटवर्क को अवैध बनाना, यह भी एक नई सुरक्षा रेखा बनी है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 11 मई को चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत BEL इकाई के प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पहाड़ी स्थित परियोजना स्थल का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम स्थल पर बैरिकेडिंग, पिकेटिंग, यातायात प्रबंधन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अन्य आपात सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। इससे पहले कल से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा दी जाएगी। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि इन 15 दिनों में लोग अपना पूरा ब्यौरा खुद ही ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर लोगों को अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। जानकारी सबमिट करने पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा, जिसे प्रगना

0: के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। मुख्य प्रधान अधिकारी ने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
1: प्रथम फेज हमारा 22 मई से 20 जून के बीच होगा उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले 15 दिन स्वगणना की विंडो सभी लोगों के पास है कि वो खुद पोर्टल पर जाकर अपने सभी प्रश्नों का आंसर रिकॉर्ड कर सकें। तो अधिक से अधिक लोग स्वगणना करें, क्योंकि वो बहुत बार ये शिकायत करते हैं कि एन्यूमरेटर ने गलत डेटा रिकॉर्ड कर दिया, और आपकी जो भी स्वगणना आईडी है जब आपका प्रगणक आपके घर आता है उसके साथ साझा करें।
0: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। दौरे के पहले दिन केंद्रीय कृषि मंत्री अब से कुछ देर में लखनऊ में प्रगतिशील निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ संवाद करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रगतिशील निर्यातकों से संवाद में फल निर्यात बढ़ाने, बाजार की चुनौतियों को समझने और बेहतर रणनीति बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे देश के फल कारोबार को मजबूत करने और किसानों को बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में मदद मिलेगी। श्री चौहान कल केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ICAR में राष्ट्रीय फल निर्यात सम्मेलन फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद फल क्षेत्र में नई सोच, नई तकनीक और नए बाजार अवसरों के लिए रास्ते खोलना है। कार्यक्रम के दौरान किसानों, वैज्ञानिकों, निर्यातकों और अन्य संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर फल क्षेत्र को नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही और दिनेश प्रताप सिंह समेत कई वरिष्ठ वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देशभर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल नागदा, मथुरा और बुढ़वल सीतापुर के बीच तीसरी तथा चौथी रेल लाइन समेत अन्य रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के प्रस्ताव को भी पारित किया था। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के जनहित से जुड़े फैसलों का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा तिथि बदल दी है। आयोग के अनुसार हिंदी, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत विषयों की मुख्य परीक्षा एक ही दिन 11 जुलाई को होगी। ये परीक्षाएं पहले अलग अलग तिथियों में होनी थीं। इसी तरह से प्रवक्ता, पुरुष, महिला, राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2025 भी अब 7 जून की जगह 14 जून को होगी। राज्य सरकार ने आम नागरिकों को राहत देते हुए खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। राजस्व विभाग की इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद खतौनी की नकल विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद जनपद, तहसील और गाँव की जानकारी भरकर संबंधित गाटा संख्या चुननी होगी। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते ही खतौनी की प्रमाणित प्रति तुरंत डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी। प्रदेश भर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसी क्रम में महोबा में आज जिला जज रामनगीना यादव ने न्यायालय परिसर से जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मेरठ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह ने बताया कि लोक अदालत में लंबित मामलों को निस्तारित करने की कोशिश की जाएगी।
3: ऐसे मामले भी हम खत्म कराना चाहते हैं जिससे कि समझौता करके उसे खत्म कराया जाए, जिससे लोगों के खर्च कम हो। और हम इसका लोक अदालत का उद्देश्य भी सस्ता और सुलभ न्याय है, जिससे लोगों को आसानी से न्याय मिल सके।
0: आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम

0: 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। मैच से पूर्व आज दोनों टीमों ने मैदान में जमकर पसीना बहाया। मुकाबले को देखते हुए कल दोपहर 3 बजे से मैच की समाप्ति तक स्टेडियम के आसपास यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह में हुए शामिल। कहा, प्रदेश के 6 रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हो रहे हैं साकार। प्रदेश में कल से शुरू होगी स्वगणना की सुविधा। जनगणना के प्रथम चरण, मकान गणना से पहले 15 दिन खुद भर सकेंगे अपना डेटा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। राष्ट्रीय फल निर्यात सम्मेलन फ्रूट होराइजन 2026 को कल करेंगे संबोधित। और खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया हुई डिजिटल। राजस्व विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान कर मिलेगी सुविधा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार, तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार, युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
2: आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हो चुके हैं। अब समय है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। आप कर रहे हैं आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा से आज के प्रोग्राम का आगाज। सभी मेरे प्यारे और प्रिय श्रोताओं को आपके रेडियो होस्ट यानी कि मैं सागर जग्गी का प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। श्रोताओं, ये धरती केवल मिट्टी नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के त्याग, बलिदान और संघर्ष की गाथाओं से सजी एक पवित्र धरोहर है। इस माटी की खुशबू में हमारे वीर सपूतों के शौर्य गाथाएं समाई हुई हैं। तो वहीं इसके कण कण में हमारी संस्कृति, परंपरा और अस्मिता की झलक दिखाई देती है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम से हम हर दिन आपको मिलवाते हैं उन महान विभूतियों से जिन्होंने अपने साहस, समर्पण और देश प्रेम से भारत माता का मान बढ़ाया। साथ ही हम बात करते हैं उन ऐतिहासिक घटनाओं की जिन्होंने हमारे राष्ट्र की नींव को और भी मजबूत बनाया। तो आइए आज के इस विशेष सफर की शुरुआत करते हैं, और इस विशेष प्रसारण में हम याद करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महान सेनानी को जिनका योगदान भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, पंडित मोतीलाल नेहरू। 6 मई के इस खास दिन हम उनके जीवन को, उनके आदर्शों को नमन करते हैं।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ, जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

साथियों, पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 6 मई 1861 को आगरा में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित वकील, दूरदर्शी नेता और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने इलाहाबाद में वकालत की और अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत कम समय में ही देश के प्रमुख वकीलों में अपनी पहचान बना ली। श्रोताओं, लेकिन केवल व्यक्तिगत सफलता ही उनका लक्ष्य नहीं था। जैसे जैसे देश में आजादी की लहर तेज हुई, वैसे वैसे उनके भीतर भी देश सेवा का जज्बा जाग उठा। उन्होंने अपनी समृद्ध जीवन शैली को त्याग कर राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना। ये परिवर्तन ही उन्हें एक सफल वकील से महान स्वतंत्रता सेनानी बनने की ओर ले गया। श्रोताओं, मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1919 में और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो देश की आजादी की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए। श्रोताओं, जब देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही थी, तब पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी खुलकर संघर्ष में भाग लिया। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर ही उनके कानूनों का विरोध करना था।

आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी के बारे में। उनके बारे में बताते हैं हम कि उनका एक और ऐतिहासिक योगदान था, नेहरू रिपोर्ट, जिसे उन्होंने 1928 में तैयार किया। श्रोताओं, ये रिपोर्ट भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप थी, जिसमें स्वशासन की मांग को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था। यह पहली बार था जब भारतीयों ने स्वयं अपने देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, यानी ड्राफ्टिंग तैयार करी। इस रिपोर्ट ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई दिशा दी और देशवासी

देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया। साथियों, पंडित मोतीलाल नेहरू जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को त्याग कर राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई बल्कि अपने पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देश सेवा के लिए प्रेरित किया, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने।

पंडित मोतीलाल नेहरू का जीवन सादगी, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक था। श्रोता, उन्होंने अपने आलीशान जीवन को छोड़कर खादी को अपनाया और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई। श्रोताओं, ये परिवर्तन उनके भीतर की सच्ची देशभक्ति को दर्शाता है। उनकी देशभक्ति, त्याग और समर्पण की भावना आज भी हमें प्रेरित करती है।

उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक देश की सेवा की और 6 फरवरी 1931 को इस महान आत्मा ने अपने हमें अलविदा कह दिया। श्रोताओं, आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो ये हमारे उन महान नेताओं के संघर्ष और बलिदान का ही परिणाम है। पंडित मोतीलाल नेहरू जैसे महान व्यक्तित्व हमें यह याद दिलाते हैं कि देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में झलकता है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। तो आइए श्रोताओं, आज पंडित मोतीलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर हम सब मिलकर उन्हें नमन करें और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। अपने देश के प्रति प्रेम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसी भावना के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं कार्यक्रम संपन्न करने की। आप सुनते रहिए मेरी माटी मेरा देश। अपने देश, अपनी मिट्टी और अपने महान नायकों को समर्पित।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं। श्रोताओं, वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का, एक और अनेक का।

आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथोनी से, ये गीत आवाजें थी किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और मुकेश की। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म बरसात की रात से, जिसको गाया मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा एवं साथियों ने, और गीतकार हैं साहिर और संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में ये गीत आपने सुना फिल्म हकीकत से, मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, भूपेंद्र और मन्ना डे की आवाज़ों में, जिसको लिखा था कैफ़ी आज़मी ने और संगीता मदन मोहन का। आइए अब सुनते हैं अगला गीत, फिल्म परवरिश से आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित की आवाज़ों में, जिसको लिखा है मजरू ने और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

इसी के साथ आज का हमारा प्रिय कार्यक्रम एक और अनेक यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है आज के सुनहरे नगमे आपके दिलों को छू गए होंगे।

श्रोताओं, सुरों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर धुन कहती है चित्रपट संगीत सुनिए और दिल से मुस्कुराइए। तो चलिए शुरू करते हैं सफर और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में अन्विता दत्त गुप्ता के लिखे हुए गीत को आप सुन रहे थे फिल्म बचना है हसीनों से। आवाजें थी लकी अली और श्रेया घोषाल की। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का दूसरा गीत फिल्म रॉक ऑन से फरहान अख्तर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन है शंकर एहसान लॉय की।

आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म लखनऊ सेंट्रल से अमित मिश्रा और नीति मोहन की आवाजों में, जिसको लिखा है आदेश वर्मा ने और संगीत है रोचक कोहली का।

कुछ धुनें दिल को छू जाती हैं और कुछ यादों को जगा देती हैं। उम्मीद है ये गीत भी आपके दिल तक पहुंचा होगा। इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम चितपट संगीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमरीका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम की वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विद्युत हलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नाडियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कोई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
4: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नवगठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
5: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाया।

0: करने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेनदेन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। सीबीआई ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। सीबीआई ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पारागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर

0: भारत और वियतनाम ने तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम ने दोनों मुल्कों की मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ इकदाम का ऐलान किया है। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया है। मगरी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते के रोज होगी। अमरीका और ईरान जंग को खत्म करने और आबनाए हुरमुस के रास्ते बिला रुकावट नकलो हमल की खातिर एक माहदे के करीब हैं। और ताशकंद में 15 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 तमगे जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल टेक्नोलॉजी, नायाब मादनियात, तिब्बी साजो सामान, पब्लिक सेक्टर ऑडिट, डिजिटल अदायगी निजाम और सकाफत व सयाहत के शोबों में मुख्तलिफ मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम के दरमियान बातचीत के बाद इन माहदों पर दस्तखत किए गए। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात के अलावा बाहमी ताल्लुकात के वसीतर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। अपने प्रेस बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वियतनाम के सदर की जिम्मेदारी संभालने के एक महीने के अंदर सदर तोलाम का भारत का पहला सरकारी दौरा इस बात को जाहिर करता है कि वो भारत वियतनाम ताल्लुकात को कितनी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए भारत वियतनाम के कदीमी चंपा तहजीब के माई सन और नेहान ताओ मंदिरों का अहिया कर रहा है।
1: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
0: उन्होंने कहा कि मशरकी मुल्कों से राबते बढ़ाने की पॉलिसी और विजन सागर के तहत वियतनाम भारत के लिए एक अहम सुतून है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करने और दहशतगर्दी से निमटने के खातिर भारतीय अवाम के साथ यकजहती का इजहार के लिए वियतनाम का शुक्रगुजार है। वियतनाम के सदर तोलाम ने कहा कि वियतनाम 10 बरस की जामे कलीदी शराकत दारी समेत भारत के साथ 50 साल ताल्लुकात के नताइज को इंतहाई अहमियत की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि तरफेन दुनिया की मौजूदा बिगड़ती हुई सूरत हाल के अजाले की खातिर बेहतर नजरिए और तरक्याती हिकमत अमलियों के साथ करीबी राबते में रहेंगे। आज नई दिल्ली में बाद में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मशरक़ी उमूर के सेक्रेटरी पी कुमारन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तोलाम के दरमियान बातचीत में भारत और वियतनाम दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने के खातिर मुत्तफिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने अपने यहां ज़रई अशिया समेत बाजार तक रसाई में सहूलत पैदा करने के सिलसिले में भी इत्तेफाक किया है। अद्वियात की भारतीय सनत की तरक्की को तस्लीम करते हुए तरफेन ने 2027 से वियतनाम की अवामी सेहत देखभाल के खातिर भारतीय कंपनियों की शमूलियत के इम्कानात से भी इत्तेफाक किया। जनाब कुमारन ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने करीबी इदारा जाति राबतों की हौसला अफजाई के साथ साथ मालूमात, तहकीक और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले के फरोग पर भी रजामंदी जाहिर की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा जनरल फैन वैंग जियांग के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत वियतनाम के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को अहमियत देता है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमाओं की बातचीत में भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की गई। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि हालिया पेशरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्बत सूरतेहाल की अक्कासी होती है। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के मंतजर हैं। मगरी बंगाल में बीजेपी की नई हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। बीजेपी के रियासती सदर सामिक भट्टाचार्य ने नामानिगारों को बताया कि ये तकरीब सुबह 10 बजे शुरू होगी। पार्टी जराए के मुताबिक इसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के मुख्तलिफ

0: राय आला की शिरकत का इम्कान है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मकाम का इंतखाब अलामती है क्योंकि ये जगह बंगाल में अहम सियासी रैलियों और बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा का गहवारा रही है। इस तकरीब में मुल्क के आला रहनुमाओं की मौजूदगी से यह जाहिर होता है कि बीजेपी इकतदार की मुंतकली को इंतहाई अहमियत दे रही है। टीवी के सरबराह सी जोसेफ ने तमिलनाडु में सरकार तश्कील करने का दावा पेश किया और रियासत के गवर्नर विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। टीवी के ने दीगर पार्टियों से भी राबता किया क्योंकि उन्हें रियासत में सरकार की तश्कील के लिए मजीद हिमायत की जरूरत है। कांग्रेस ने अपने 5 एमएलए होने के नाते टीवी के की हिमायत का फैसला किया है। उसने आज नामजद वजीर आला विजय से मुलाकात की और उन्हें अपनी हिमायत का मकतूब पेश किया। कांग्रेस ने अपनी देरीना इत्तेहादी पार्टी डीएमके का साथ छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज रियासत में सियासी गहमागहमी का दिन था। मुख्तलिफ सियासी हलकों से तस्दीक और नई हुकूमत की तश्कील के तई पहले कदम का इंतजार जारी था। वाहिद सबसे ज्यादा अक्सरियत वाली पार्टी तमिलागा वैतरी कड़गम टीवीके ने 108 असेंबली सीटें हासिल की हैं और उसने कांग्रेस की 5 सीटों की हिमायत भी हासिल की है। टीवीके ने यूसीके और बाएं महाज की पार्टियों सीपीआई और सीपीआईएम को हिमायत की दावत दी है। एआईएडीएमके ने भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीसामी की क़यादत में आज शाम एक मीटिंग की। टीवी के सरबराह को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए पार्टियों की जानिब से हिमायत का मकतूब पेश करना होगा। उन्होंने अक्सरियत साबित करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ये आकाशवाणी है। हुकूमत ने मुत्तला किया है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की दस्तयाबी मामूल के मुताबिक है और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर इसके खत्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने मुत्तला किया कि मगरबी एशिया बहरान के दरमियान हुकूमत खाना पकाने के लिए एलपीजी के घरेलू सारिफिन को 100% और कमर्शियल सिलेंडर के सारिफिन को 70% तक फराहमी की खातिर सभी इकदाम कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 5 किलोग्राम के तकरीबन 1,20,000 एफटीएल सिलेंडर फरोख्त किए गए। उसने मजीद कहा है कि एलपीजी की जखीरांदोजी और कालाबाजारी की रोकथाम के लिए मुल्क भर में कार्रवाई का सिलसिला जारी है और कल इस सिलसिले में 2,100 से ज्यादा छापे मारे गए।
3: जो घरेलू कुकिंग एलपीजी सिलेंडर का प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ है। जो आपने इंक्रीज की बात की वो सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के लिए हुई है। मैं दोबारा से कहती हूँ कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर पर कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। इसी तरह जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइस में भी अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है।
0: बंदरगाहों जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत में डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने कहा है कि खित्ते में सभी भारतीय मल्लाह खैर वाफियत से हैं और गुज़िश्ता 48 घंटे में किसी भारतीय परजंबरदार जहाज के सिलसिले में किसी वाकये की कोई खबर नहीं मिली है। जनाब शर्मा ने मुत्तला किया कि जहाजरानी के डायरेक्टोरेट में कायम करदा कंट्रोल सेंटर्स ने अब तक 8,570 कॉल और 18,732 से ज्यादा ई मेल मौसूल किए हैं। वजारत खारजा में भी एक मुतल्लिका खसूसी कंट्रोल रूम काम कर रहा है जो भारतीय शहरियों और उनके कुनबों के सवालात का जवाब दे रहा है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि परवाजों के सिलसिले में मजमूई सूरत हाल बेहतर हो रही है और खित्ते से भारत के मुख्तलिफ मकामात के लिए इजाफी परवाजें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने जमीनी रास्तों से 2,520 भारतीय शहरियों के ईरान से निकलने में मदद फराहम की है। सालिसों के मुताबिक अमरीका और ईरान एक इब्तदाई माहदे के करीब है जो खलीज में जारी तनाजे के खात्मे का सबब बन सकता है। मुजाकरात से वाकिफ जराये के मुताबिक फरीकैन एक सफे पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहमतनामे पर काम कर रहे हैं। मुजवजा माहदे में ईरान की जानब से न्यूक्लियर अफजूदगी को रोकने पर इतफाक करना शामिल है जबकि अमरीका को पाबंदियों में नरमी करनी होगी। मुजवजा माहदे में मुंजमद ईरानी फंड में से अरबों डॉलर जारी करना भी शामिल है। तवक्को है कि दोनों फरीक आबनाए हुरमुस के

0: चर्चा का विषय है।
1: समय की धारा में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भूगोल की सीमाओं से नहीं बल्कि विश्वास, संघर्ष और साझा सपनों से तय होते हैं। भारत और वियतनाम, दो देश, दो संस्कृतियां, लेकिन एक समान धड़कन, स्वतंत्रता, संप्रभुता और शांति की। इतिहास गवाह है कि जब दो सभ्यताएं बुद्ध के शांति संदेश और साझी विरासत से जुड़ी हों, तो उनकी दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर खरी उतरती है। आज भारत और वियतनाम के संबंध कुछ इसी मोड़ पर हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं और ये यात्रा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि जज्बाती और रणनीतिक भी है। 1972 में स्थापित कूटनीतिक संबंध और 2016 में बनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी आज 2026 में ये एक नए पड़ाव पर खड़ी है। राष्ट्रपति तो लम की बोध गया की पवित्र धरती से शुरू हुई ये यात्रा अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नई इबारत लिख रही है। रक्षा सौदों से लेकर सेमीकंडक्टर तक और चंपा सभ्यता के मंदिरों के संरक्षण से लेकर डिजिटल पेमेंट की जुगलबंदी तक आज हम वियतनाम के साथ एक ऐसा भविष्य बुन रहे हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि का आधार बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आज का हमारा विषय है भारत और वियतनाम के मजबूत संबंध। हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत आसियान के गुरजीत सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद
1: गुरजीत जी। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो भारत और वियतनाम के रिश्ते हैं इनका बहुत समृद्ध इतिहास है, लेकिन राष्ट्रपति तो लम ने अपनी यात्रा की शुरुआत जो बोध गया से की, कूटनीतिक नजरिए से इस सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक जुड़ाव के क्या मायने हैं?
2: जैसे आप जानते हैं कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है और प्रेसिडेंट तो लम उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इसलिए जब एक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अपना विजिट एक सांस्कृतिक जगह से शुरू करते हैं
1: जी,
2: तो थोड़ा अचंबा होता है, लेकिन यही दिखाता है कि वियतनाम भी कितना बदल गया। पिछले दो साल में जब भारत से गौतम बुद्ध की कुछ रिलिक्स वहां भेजे गए थे तो जो पॉपुलैरिटी उनको वहां मिली वो देखने लायक थी। तो मेरे ख्याल अब वियतनाम के लीडर्स को भी ये पता चल गया है कि उनके देश में अभी तक बुद्धिज्म का प्रभाव काफी है, इसलिए जब बुद्धिज्म के जन्म स्थान भारत में आओ तो वहां पर ये बात जरूर करनी चाहिए। तो उन्होंने वहां से शुरू किया और अगर आप जो अग्रीमेंट्स हुई हैं वो देखें उसमें भी बुद्धिज्म के ऊपर नालंदा से और अक्सर कई और जगह से संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है।
1: जी बिल्कुल। भारत ने वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया और अब लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC पर बात हो रही है। वियतनाम के लिए भारत एक भरोसेमंद रक्षा भागीदार के रूप में कैसे उभर रहा है, थोड़े हमारे श्रोताओं के लिए आसान शब्दों में इसे आप बता पाए?
2: जो आसियान के देश है वो अक्सर भारत को चीन के मुकाबले में एक बैलेंसिंग देश की तरह देखते हैं। वियतनाम उन देशों में से है जिसकी चीन के साथ एक रंजिश रहती है, खासकर क्योंकि जब से चीन ने जो कई टापू होते हैं उनको अपने घेरे में ले लिया और वहां जहां पर वियतनाम की लोग थे या कोई ऑयल ड्रिलिंग थी या कोई सेना की टुकड़ी थी उनको भगा भेजा, जैसे वो अब फिलीपींस के साथ कर रहे हैं, उन्होंने पहले ये वियतनाम के साथ भी किया। तो वियतनाम की जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना है उसमें भारत एक अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत वियतनाम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके बाद 10 साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई और तब से ये जो सुरक्षा के संबंध हैं वो आगे बढ़े। 2023 में शायद एक इंडियो वियतनाम डिफेंस विजन डॉक्यूमेंट भी साइन किया गया। तो ये एक स्तंभ है भारत और वियतनाम के रिश्तों का जो बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी जिससे उन्होंने भारत

0: से छोटे पेट्रोल क्राफ्ट लिए भारत ने आईएनएस कृपाल उनको भेंट में दिया। और भारत अब प्रतीक्षा कर रहा है कि कई सालों से चली हुई बातचीत जो ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर है वो कब निर्णय दौर तक पहुंचेगी।
1: प्रोफेसर मिश्रा, वियतनाम ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का विकल्प बन रहा है। सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं?
2: देखिए, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वियतनाम ये चाहता है कि 2045 तक, और इस साल उनके दो इमो रिफॉर्म्स के 40 साल पूरे हो रहे हैं, जो एक व्यापक पैमाने पे आर्थिक रिफॉर्मेशन जो वियतनाम में हुआ 1986 से उसका नतीजा है। तो अब वियतनाम चाहता है कि वो आर्थिक विकास के सेकंड स्टेज में पहुंचे और एक विकसित देश बने 2045 तक। इसको मद्देनजर रखते हुए वियतनाम की अपनी सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम की जो नीतियां हैं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भारत से मेल खाती हैं। भारत और वियतनाम की आकांक्षाएं इन तमाम क्षेत्रों में मेल खाती हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम दोनों साझा प्रयास कर सकते हैं कि भारत और वियतनाम दोनों ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करें और दोनों ही देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में रीजनल हब्स बने, अपनी अपनी आवश्यकताओं और अपनी अपनी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। साथ ही साथ सोलर और बैटरीज का प्रोडक्शन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसमें लिथियम बैटरीज का बड़ा योगदान है, निकल की उसमें बहुत जरूरत है। इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदार हो सकता है। आसियान के बाकी देश भी हैं जिनके साथ भारत सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। इसमें सिंगापुर भी है और मलेशिया भी है। पूर्वी एशिया के देशों को हम देखें तो उसमें ताइवान भी आता है, जापान और साउथ कोरिया हैं जो बड़े महत्वपूर्ण देश हैं। तो वियतनाम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें भारत के साथ काम कर सकता है, चिप्स के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में भारत के साथ काम कर सकता है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है। हमारे पास वो चिप्स बनाने की क्षमताएं तो हैं, लेकिन हमें वो रिसोर्सेज के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी है उनके लिए जो रिसोर्स चाहिए, उनके लिए जो माल और मिनरल्स चाहिए, उसके लिए हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर भारत और वियतनाम मिलकर काम करते हैं तो शायद इन क्षेत्रों में ये कमी पूरी की जा सकती है, जहां भारत की तकनीकी क्षमता और वियतनाम एक बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन उनका मिनरल जो रिसोर्सेज हैं और मिनरल जो कैपेसिटीज हैं उनका हम फायदा उठा सकते हैं और दोनों देशों का इसमें लाभ होगा।
1: आज प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले समय में भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट यानी आईटिका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर सहमति भी बनाई जा रही है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: हमने भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट आईटिका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई। इससे भारत और आसियान के सभी देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और एनर्जी सहयोग में नई पहलों से हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस सुनिश्चित करेंगे।
1: गुरजीत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट जो आईटिका है, इसको अपडेट करने की बात चल रही है। इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि इससे दोनों देशों के बीच जो पहल है वो किस स्तर पर जाएगी, क्योंकि इसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, रेयर अर्थ भी है और एनर्जी सहयोग पर भी चर्चा हो रही है।
0: आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट ये 2009 में शुरू हुई थी और 2019 से इसका रिव्यू होना था, लेकिन आसियान के देशों ने उसका रिव्यू काफी डिले किया और ये रिव्यू जाके 2023 में फाइनली शुरू हुआ और उम्मीद ये थी कि एक या दो साल में हो जाएगा। हम तो चाहते थे कुछ महीने में हो जाए, लेकिन आसियान ने बोला 2025। आप देखिए, 2025 तो निकल गया और हम 2026 के बीच में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी वो रिव्यू कंप्लीट नहीं है। अब इस रिव्यू में अगर आप देखें तो वियतनाम जैसे देश जो भारत के इकोनॉमिक पार्टनर हैं उनको एक पॉजिटिव रोल करना चाहिए कि ये अग्रीमेंट जल्दी हो, लेकिन मेरे को लगता है कि सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस ऐसे देशों के अलावा जो बाकी भारत के पार्टनर्स हैं, खासकर इंडोनेशिया और वियतनाम जो बड़े पार्टनर, उनमें कोई दिलचस्पी कमजोर नजर आती है, तो वो डॉक्यूमेंट में तो डाल देते हैं कि हाँ इसे जल्दी होना चाहिए, लेकिन जब बातचीत होती है उस समय पीछे हट जाते हैं। सब जगह स्टेटमेंट में यही आता है कि वियतनाम भारत का बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है आसियान, लेकिन अगर आप देखें जो 16 बिलियन डॉलर की ट्रेड है

0: वियतनाम को पांचवें स्थान में रखती है आसियान के अंदर। भारत का आसियान का जो ट्रेड है 120 बिलियन डॉलर है, उसका 10% से थोड़ा ऊपर वियतनाम का है। सबसे बड़ा इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर, फिर थाईलैंड और मलेशिया, तो वियतनाम तो बीच में आता है। और वियतनाम अब कह रहा है कि हम अगले 4 साल में इसको शायद 30 बिलियन डॉलर तक ले जाए, हो सकता है। लेकिन जो ये ट्रेड बढ़ रही है, इसमें वियतनाम की एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़ रही हैं, भारत की एक्सपोर्ट्स कम बढ़ रही हैं, तो इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। अब वियतनाम की दिलचस्पी आईटी का में तब बढ़ेगी जब वो समझता है कि उसके एक्सपोर्ट भारत की मार्केट में ज्यादा आ सके। लेकिन वो जो अपनी मार्केट एक्सेस देना चाहिए, इंडोनेशिया और वियतनाम उन देशों में से हैं जो अपनी मार्केट एक्सेस भारत के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए, जो वियतनाम है ना, उसका जीडीपी पर कैपिटा भारत से दुगना है, तो वो कोई ऐसा डेवलपिंग कंट्री नहीं है कि जैसे कि म्यांमार हो या कंबोडिया हो, तो उसका भी दर्जा आगे बढ़ चुका है। और उसके देखिए क्या एफटीएस है यूरोप के साथ और जापान के साथ, और अब वो सीपीटीपीपी में भी शामिल है। तो वियतनाम एफटीए से डरता नहीं, वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसको हमेशा दिलचस्पी वही होती है कि बड़ी मार्केट्स में मेरे को मार्केट एक्सेस। और जापानीज और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल एरिया में, काफी मजबूत है, और उससे वो और देशों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहता
1: जी
0: है। भारत से वो क्या चाहता है? भारत से वो चाहता है, पहले बफलो मीट जाता था, वहीं जाती हैं, अब उसको चावल की जरूरत पड़ती है। पहले तो चावल वो अपने आप काफी मंगा, चावल की जरूरत पड़ गई है, कुछ और खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है। जो डिजिटल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए आसियान देशों के लिए भारत महत्वपूर्ण है, और वियतनाम के लिए भी।
1: जी बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत और वियतनाम के बीच व्यापार अब 16 बिलियन डॉलर को पार कर गया है और 2030 तक का जो लक्ष्य है वो 25 बिलियन डॉलर का है। ऐसे में आईटी का की समीक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है?
2: देखिए, भारत और वियतनाम के जो व्यापार संबंध हैं उनमें द्विपक्षीय जो आयाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और वियतनाम के व्यापार संबंध पहले से ही, जब ये इंडिया आसियान एफटीए नहीं साइन हुआ था उसके पहले से ही काफ़ी मजबूत है। उसकी अपनी अपनी सीमाएं जरूर थी, उसकी अपनी लिमिटेशन जरूर थी, लेकिन ये इवन कील पे चल रहा था, एक अपने एक अलग पायदान पे चल रहा था। भारत आसियान एफटीए का जहां तक सवाल है, ये भारत और आसियान के 10 देशों के साथ व्यापार संबंधों का एक प्लेटफॉर्म है। तो उस लिहाज से तमाम जो देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस आईटीगा से या भारत आसियान एफटीए से बहुत फायदा उठा रहे हैं, और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। वियतनाम उन देशों में नहीं है जिसके साथ भारत को इस व्यापार समझौते में दिक्कत है। समीक्षा होनी चाहिए उन क्षेत्रों में जहां भारत इन आसियान के देशों से इम्पोर्ट तो कर रहा है लेकिन उसे एक्सपोर्ट करने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही, पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे। वियतनाम के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, आज ही जो 13 MOU साइन हुए हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि क्रिटिकल मिनरल्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोलर टेक्नोलॉजी हो या ईवी व्हीकल्स हो, वियतनाम ईवी व्हीकल्स में बहुत एडवांस लेवल पे है। और अगर भारत चाहता है कि चीन के साथ हमारे ईवी व्हीकल्स को लेकर के एग्रीमेंट्स में जो समस्याएं आ रही हैं उसको कोई देश रिप्लेस करे, तो वियतनाम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो मुझे लगता है आईटीगा के संदर्भ में भारत की चिंताएं दूसरे देशों से ज्यादा हैं बनिस्पत वियतनाम के, और उन देशों में वो देश आते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भारत को ऐसे मौके नहीं दे रहे हैं जिससे भारत का व्यापार बढ़े। सर्विसेज सेक्टर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें तमाम देश, सिंगापुर को और मलेशिया को छोड़ दीजिए, तो तमाम देश सर्विसेज सेक्टर में भारत को ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं। और ये वो जिसमें फिलीपींस आता है, एक बड़े पैमाने पर एक देश आता है। एग्रीकल्चर फिशरीज एक्सपोर्ट्स में भारत आसियान क्षेत्र में जगह बनाना चाहता है। सर्विसेज सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा, उस क्षेत्र में भी समस्याएं हैं। तो आईटीगा का जो रीवैल्यूएशन होता है उसमें इन चिंताओं को दूर किया जाएगा, और भारत सरकार ने भी कहा है कि आईटीगा का जो फिर से मूल्यांकन होगा उसमें हम उन समस्याओं को रेखांकित करेंगे। आसियान एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म के तौर पे उस समस्याओं को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। वियतनाम के साथ संबंध आगे बढ़ाते हुए हम इस काम को कर सकते हैं, आसियान के साथ इन चिंताओं को आपस में डिस्कस करके रिजॉल्व करने की कोशिश के साथ।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस विषय पर, और प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि आज किन किन समझौते पर भारत और वियतनाम के बीच हस्ताक्षर हुए।
3: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में

0: डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा और हम वियतनाम के ड्रियन और पोमेलो का।
1: आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की भी बात उन्होंने कही कि बहुत जल्द ये जोड़ने की चर्चा चल रही है। आप कैसे देखते हैं कि इससे दोनों देशों के पर्यटन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे लाभ होगा?
2: पिछले 5 सालों में भारत से जो आउटबाउंड टूरिस्ट है, भारतीय सैलानी जो वियतनाम जाते हैं, उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जब एक भारतीय सैलानी वियतनाम जैसे देश में जाता है जहां उसे चीजों को समझने में और अपनी खरीदारी करने में, होटल्स में जाने में, जब उसे अपना यूपीआई सिस्टम और अपना जो डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है वो दिखता है, तो उसके लिए बड़ी आसानी होती है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही एक हिस्सा है, एक छोटे पैमाने पे जहां कंज्यूमर कस्टमर को की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इससे मुझे लगता है दोनों देशों के पर्यटन को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, वियतनाम की तरफ से भी, क्योंकि वियतनाम की करेंसी को अगर हम देखें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तो बहुत ही कमजोर है, लेकिन भारतीय रुपए के मुकाबले भी काफी वो कमजोर है। तो जब वियतनामी एक टूरिस्ट भारत आता है और खासतौर पर बोधगया जैसे जो हमारे बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं वहां जाता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना बहुत आसान होगा और इससे इन सैलानियों को भी ये समझ आएगा कि भारत में यात्रा करना काफी आसान हो गया है और उनके लिए इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगता है काफी सुगम होगा और काफी आसान होगा उनके लिए भारत में यात्रा करना या भारतीयों के लिए वियतनाम यात्रा करना।
1: और आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
0: पिछले वर्ष जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे।
1: गुरजीत जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है, जैसा कि प्रधानमंत्री भी अभी जिक्र कर रहे थे कि चंपा सभ्यता की पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मंदिरों के संरक्षण के प्रयासों में भारत सहयोग देगा। आप भारत की विरासत और विकास की नीति को कैसे देखते हैं?
3: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप वियतनाम की जो चंपा सिविलाइजेशन है उसके पुराने प्राचीन मंदिरों में जाएं, खासकर माइसॉन के ऊपर एक अग्रीमेंट भी इस बार ही साइन किया गया डिजिटाइजेशन। अब माइसॉन में शिव की जो मूर्तियां हैं और शिव के मंदिर हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहां देखा जाता है कि भारत का प्राचीन जो एक इन्फ्लुएंस था वो कहां चंपा तक पहुंच गया। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए भारत का सहयोग बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारे लिए वो केवल सहयोग नहीं, हमारी तो विरासत है
1: जी।
3: और हम वियतनाम के साथ उसको साझा करना चाहिए। यही अब और आप सांस्कृतिक प्रक्रियाएं अभी नए इस दौर में देखें तो आप देखेंगे जो पर्यटन है, टूरिज्म है, वो बहुत बढ़ गया। सबसे ज्यादा तो देखिए कि जो वियतनाम की एयरलाइंस है, वियतजेट और वियतनाम एयरलाइन, वो भारत बहुत आ रही है और उसके बाद भारत की एयरलाइन ने वहां जाना शुरू कर दिया डायरेक्ट। अब यहां से हर हफ्ते 90 फ्लाइट भारत के शहरों से वियतनाम के शहरों में जाते हैं और ये सब बड़े शहरों में से ना शुरू होती है ना खत्म होती है। वियतनाम के छोटे शहरों में भारत के टियर टू शहरों में जाते हैं। आजकल आम हिंदुस्तानी वियतनाम की छोटी छोटी जगहों का नाम जानता है क्योंकि बहुत सारे लोग वहां हो आए। तो पिछले साल तकरीबन 1 मिलियन टूरिस्ट भारत से वियतनाम गए। वियतनाम से यहाँ इतने को ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, इसलिए बुद्धिस्ट सर्किट को उचित रूप से आगे बढ़ाना अभी हमारा काम है। लेकिन ये वहां से भारत की ओर आने वाले जो लोग हैं वो केवल टूरिज्म के लिए नहीं आए, तो आज की जो अग्रीमेंट्स हैं उसमें एजुकेशन की बहुत बड़ी

0: महत्वपूर्ण रोल है, वो बढ़ाएगा पीपल टू पीपल करे और बिजनेस बढ़ाए। तो ये दो चीजें अगर आगे बढ़े तो मेरे को लगता है कि हमारी जो विरासत है उसका नया रूप भी आगे आएगा और वो वहां से आकर हमारी विरासत देख पाएंगे और हमारे लोग जाकर वहां पर चंपा की विरासत देख पाएंगे और देखेंगे उसमें भारत का कितना इन्फ्लुएंस है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं या फिर विजन सागर की बात करते हैं, तो वियतनाम भारत के लिए कितना अनिवार्य है?
2: बहुत सालों पहले जब भारत की लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति नहीं आई थी, तब भी भारत वियतनाम के साथ ऐसे ही मजबूती से खड़ा था जैसे आज है। जब उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में संघर्ष हो रहा था, तब भारत ने हो ची मिन्ह का साथ दिया। हो ची मिन्ह 1959 में भारत आए और तब से लेके 1972 में जब वियतनाम का एकीकरण हुआ, तब से भारत वियतनाम के साथ है। 1979 में भूतपूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी चीन की यात्रा बीच में रद्द करके इसलिए चले आए क्योंकि चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था। ये सब एक्ट ईस्ट नीति से पहले ही हुआ था। तो भारत और वियतनाम की जो दोस्ती है वो मुझे लगता है कि आसियान के कॉन्टेक्स्ट में या एक्ट ईस्ट नीति के कॉन्टेक्स्ट में एक सेंट्रल पिलर है, जिसमें भरोसा सिर्फ इस बात का नहीं है कि दोनों देशों का फायदा हो रहा है, भरोसा इन दोनों देशों के बीच में, जनता के बीच में है, नेताओं के बीच में है, पॉलिसी मेकर्स के बीच में है। और ये जो डीप ट्रस्ट है दोनों देशों के लोगों के बीच में, इनके पॉलिसी मेकर्स के बीच में, ये मुझे लगता है कि वियतनाम को एक्ट ईस्ट का सेंटर बनाता है। और भारत की जो सागर नीति थी अभी महासागर में परिवर्तित हो चुकी है, उसको हम देखें या इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव देखें या एक्ट ईस्ट को ही देखें, जिसमें सामरिक तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे हुए, 2026 में पूरे हो रहे हैं और अब हमने इसे एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया, जिसमें रक्षा का मामला हो या सामुद्रिक सुरक्षा का मामला हो, आर्थिक विकास हो या पर्यटन शिक्षा क्षेत्र हो या न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में वियतनाम के साथ भारत साथ काम करना चाहता है, मिलकर काम करना चाहता है और इस न सिर्फ इन द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है बल्कि साथ ही वो चाहता है कि वियतनाम की भी आसियान क्षेत्र में वियतनाम भारत के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद देश के तौर पे स्थापित रहे और इससे दूसरे देश भी सबक लें। जैसे भारत की रक्षा क्षेत्र में जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, इस बार भी हमने 500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की, जिससे भारत के जो रक्षा उपकरण है मेक इन इंडिया नीति के तहत जो भारत का रक्षा एक्सपोर्ट हो रहा है उससे वियतनाम फायदा उठा सके, क्योंकि वियतनाम की चिंताएं बहुत गहन है दक्षिण पूर्व चीन सागर में। चीन को लेकर के जो भी चीन की 9-लाइन है या दक्षिण पूर्व सागर में उसकी जो आक्रामक नीतियां हैं उससे निपटने के लिए भी वियतनाम को एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है जो रक्षा के एक्सपोर्ट में उससे फायदा ना उठाए। सो प्रॉफिट मेकिंग भारत की विदेश नीति में या भारत के रक्षा एक्सपोर्ट में नहीं, वियतनाम इसको समझता है, इसको अप्रिशिएट करता है और इसलिए भारत और वियतनाम के संबंधों में इतना ज्यादा ट्रस्ट लेवल है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप रक्षा क्षेत्र की बात करें, दोनों देश सैन्य अभ्यास भी करते हैं जिसे विन बैक्स के नाम से जाना जाता है, इसके थोड़े प्रभाव के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: दोनों ही देशों के बीच में तमाम मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, नेवी के बीच में हो रही है, एयरफोर्स के बीच में हो रही है। बीते दिनों में जंगल वॉरफेयर के क्षेत्र में दोनों देशों ने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की। ये जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं उसके कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें चार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, कि आप जिस सागर में, जो हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट आपको वियतनाम से जोड़ता है, उस क्षेत्र को समझना, जिसको हम कहते हैं कि सिचुएशनल अवेयरनेस करना, पहला उसका एस्पेक्ट है। दूसरा है थ्रेट अवेयरनेस, कि हम दोनों देशों के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में, दूसरे देशों से कोई हमें सामरिक चिंताएं हैं या मैरिटाइम पायरेसी है या गन रनिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, नार्कोटिक्स है, इन तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों की साझा चिंताएं क्या है, उनको हम दूर करें। और तीसरी चीज है, इन तमाम चिंताओं से निपटने के लिए हम इंटर ऑपरेबिलिटी की ओर आगे बढ़ें। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम दोनों ही देश ये जो कॉमन चैलेंजेस है, ये जो साझा खतरे और चिंताएं हैं, उनको साथ मिलकर के कैसे, कंधे से कंधा मिला के हम कैसे इन चिंताओं को दूर करें, तो ये प्रमुख तौर पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन साथ में ये भी होता है कि दोनों ही देशों की आर्म फोर्सेस, नेवी हो या एयरफोर्स हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्मी हो, ये तमाम जो भारत और वियतनाम की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे को समझें, कि इस तरह के आगे आने वाले समय में कभी ऐसी जरूरत पड़े कि भारत और वियतनाम को साथ मिलकर कोई युद्ध लड़ना हो या इस तरह की टेरेन में जाना हो, तो उनके लिए ये एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस ना हो। तो डोमेन अवेयरनेस जरूरी है, टेरेन अवेयरनेस जरूरी है और साथ में इंटर ऑपरेबिलिटी जरूरी है, कि दोनों देश मिलकर के कैसे एक साझा चिंता या चैलेंज

0: जी आप खतरे को से कैसे निपट सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि आने वाले समय में कई क्षेत्रों में भारत और वियतनाम आगे बढ़ने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे।
1: प्रोफेसर मिश्रा, युवा, तकनीक और स्किल डेवलपमेंट, क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये तीन मजबूत स्तंभ हो सकते हैं भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों के बीच? चूंकि आज जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें शिक्षा भी एक है।
0: जी बिल्कुल, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को हर जगह कहते हैं, दूसरे हमारे तमाम मित्र देशों के साथ जो भी हाल के दिनों में समझौते हुए हैं उसमें युवाओं को लेकर के हमेशा एक स्पेसिफिक फोकस रहा है, क्योंकि भारत की आधी जनता ये युवा वर्ग है और जिसके कंधों पर सारी जिम्मेदारी है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की। तो युवाओं को कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको कैसे रीस्किल किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे वो दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज के और शिक्षा संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सकें और उन्हें वापस आकर भारत के विकास में कैसे अपना योगदान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम देखते हैं कि हर मित्र देश के साथ एमओयू में ये शिक्षा का क्षेत्र या स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र दिखता है। नई जो तकनीक आ रही है ये युवाओं पर ही निर्भर है कि नई तकनीक को सीखा जाए, उसको विकास में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकलकेट किया जाए, उसको विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में कैसे जो नई स्किल्स को सीखा गया है उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और उसको कैसे भारत के आर्थिक विकास में और आर्थिक प्रगति में कैसे उसको जोड़ा जाए। तो ये हमेशा से ही मुझे लगता है कि एक प्रमुख फोकस का मुद्दा रहा है और इसीलिए ये एमओयूज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है।
1: गुरजीत जी, आपसे बहुत संक्षेप में ये समझना चाहेंगे कि भारत वियतनाम संबंधों को अगले एक दशक में आप कहां देखते हैं?
3: मैं समझता हूं भारत वियतनाम के जो संबंध है उनको चीन का प्रिज्म से हटा देना चाहिए। ना हमको समझना चाहिए कि वो चीन से कभी लड़ने को तैयार होंगे, वो नहीं होंगे, और ना उनको समझना चाहिए हम चीन के अगेंस्ट बैलेंसर। इसको अगर हमने हटा दिया तो फिर बराबरी के हिसाब से अगर देखें तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना चाहिए। भारत की तकरीबन $1 बिलियन का निवेश है वियतनाम में और वियतनाम का निवेश आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, अभी तो तकरीबन 60 मिलियन तक पहुंचा है, लेकिन उनके पास नई आधुनिक टेक्नोलॉजी है और उससे वो समझ लीजिए आजकल जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आजकल वियतनाम से भी इंडिया में बन रही है और बिक रही है। तो हमें ऐसी चीजों, हाई इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ, इन चीजों से मिलकर एक सप्लाई चेन बनानी चाहिए। हमारा फायदा है अगर हम आईटीगा के अंडर एक सप्लाई चेन बना ले वियतनाम के साथ, तो जो वियतनाम के इतने सारे एफटीज है उनका साझा करके भारत की कंपनियों को भी बहुत फायदा हो सकता है। मैं ये समझता हूँ हमारे आगे का दौर होना चाहिए।
1: गुरजीत जी, प्रोफेसर राहुल मिश्रा आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: भारत और वियतनाम, ये रिश्ता सिर्फ समझौतों और आंकड़ों का नहीं है, ये भरोसे, सम्मान और साझा मूल्यों का रिश्ता है। बोध गया की शांति से लेकर इंडो पैसिफिक की रणनीतिक गहराइयों तक दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आज जब दुनिया नए समीकरण गढ़ रही है तब भारत और वियतनाम एक स्थिर, संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी का उदाहरण बनकर उभर रहे हैं। राष्ट्रपति तो लम की ये यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है एक ऐसे भविष्य की जहां सहयोग, विकास और सुरक्षा तीनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा कहती है, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और दोनों मिलकर अंधकार को दूर करते हैं। भारत और वियतनाम के बारे में यही कहा जा सकता है, दो राष्ट्र, एक साझा रोशनी। ये कार्यक्रम आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
4: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम चर्चा का विषय है।

श्रोताओं, वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। पेश है हिंदी फिल्म जगत के वो अनमोल गीत जिन्होंने दशकों तक दिलों पर राज किया है। कभी रोमांस की मिठास, कभी जुदाई की कसक, तो कभी दोस्ती की मस्ती। हर एहसास को बखूबी बयां करते हैं गीत, आज फिर गूंजेंगे आपकी धड़कनों में।

तू मिले या ना मिले ये गम नहीं, तेरे गीत हर पल मेरे संग हैं, कहीं तेरी आवाज बन गई है मेरी सांसों की तान, जैसे हर धुन में बसा हो बस तेरा नाम। आप सुन रहे थे फिल्म कुछ कुछ होता है से, ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, गीतकार थे समीर और संगीतकार जतिन ललित।

कैसी लत लगी है तेरे दीदार की, कैसी लत लगी है तेरे दीदार की। बात करो तो दिल नहीं भरता, बात ना करो तो दिल नहीं लगता। आप सुन रहे थे जतिन ललित के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के लिखे हुए गीत को, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। आवाजें थी लता मंगेशकर और कुमार सानू की। आइए अब सुनते हैं अगला गीत, फिल्म दिल है तुम्हारा से अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाजों में, जिसको लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

कुछ सोचता हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलता हूँ तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूँ दिल की बात को, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है। आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

सुकून सिर्फ एक शब्द हुआ करता था, लेकिन तुमसे मिलके ऐसा लगा जैसे सुकून से रूबरू मुलाकात हो गई हो। आप सुन रहे थे फिल्म दिल तो पागल है से गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार उत्तम सिंह। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म कसूर से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में, गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

कुछ नगमे आवाज नहीं होते हैं, वो एहसास बनकर दिल में उतर जाते हैं और जब भी बजते हैं बीते लम्हों से फिर मुलाकात करा जाते हैं। इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं राजेंद्र प्रसन्ना से राग मारवा में बांसुरी वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे राजेंद्र प्रसन्ना से राग मारवा में बांसुरी वादन। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Folan conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही यह सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप

11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।